वासंजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, एक व्यक्ति का आंतरिक जीवन और बाहरी ब्रह्मांड के बीच कोई अलगाव नहीं है। मन एक दर्पण की तरह है, जो कुछ भी सामने आता है वह उसमें प्रतिबिंबित होता है। आप जिस किसी के बारे में सोचते हैं, उसकी भावनाएं और उसकी मनस्थिति आप पर टिकी रहती है। अगर आप खुश लोगों के बारे में सोचते रहते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। दुखी चीजों के बारे में सोचकर आप दुखी महसूस करते हैं। इसलिए साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस गीत को काजल फिल्म के लिए संगीतकार रवि ने स्वरबद्ध किया था और आशा भोसले जी ने अपने मधुर वाणी से इसे सजाया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मोनिका दश और अनुराधा वैद्यनाथन।

वाह मोनिका जी और अनुराधा जी, अति मधुर प्रस्तुति। हमारे अगले भक्ति गीत में कौशल्या मैया कागज से पूछती है, तुम सच बोलो और मुझे बताओ कि मेरे प्राणों से प्यारे वे लोग कब आएंगे। तुलसीदास जी की गीतावली से ये रचना बैठी सगुन मनावती माता, आइए सुनते हैं संजय हरने जी की आवाज में।

अति सुंदर प्रस्तुति संजय जी, आइए स्वागत करते हैं इस खूबसूरत शिव धुन के साथ। इस पारंपरिक धुन को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय हरने जी, संजय फड़के जी, अनूप शर्मा जी, जय कृष्णन जी, ललिता कृष्णमूर्ति, श्वेता, शोमा सी रॉय, प्रेरणा जकादार, मधुलिका शर्मा और स्वयं मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बेहद खूबसूरत प्रस्तुति, हम सचमुच मन विभोर हुए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम भजनों की सरिता। इस भक्तिमयी संगीतमयी साधना को प्रस्तुत कर रही थीं लक्ष्मी बालाचंद्रन। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज, आपकी पहचान।

0: आप सुन रहे थे बिंदु व्यास की आवाज में डिजिटल वॉइस वर्ड का, ये जयपुर रेडियो वर्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले।

0: दिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो आपका अपना रेडियो,
1: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
3: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
2: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
3: तुम मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
2: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
3: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: अच्छा,
3: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
2: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
3: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
2: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
3: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
2: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
3: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
4: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
5: नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम भजनों की सरिता में। लक्ष्मी का सादर प्रणाम। मित्रों, भक्ति गीत प्रार्थना की एक विशेष अंश है, भगवान के साथ एक मिलाप का समय है। प्रार्थना में हम अपने आप को एक ऐसी शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करते हैं

वाह संजीव जी, बहुत खूब। मित्रों, भारतीय परंपरा के कई महान संत थे, जैसे रामानुजाचार्य, संत रविदास, कबीर आदि, जिन्होंने हमें धार्मिकता का सही मार्ग दर्शाया। इनमें से एक थे गुरु अर्जन, जिन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ को संकलित किया, जिसमें पिछले कई गुरुओं के गुरुवाणी शामिल थे। गुरु ग्रंथ साहिब में आधे से अधिक शब्द गुरु अर्जन द्वारा रचित हैं। चलिए एक शब्द सुनते हैं ललिता कृष्णमूर्ति की मधुर वाणी में।

वाह ललिता जी, अति मधुर प्रस्तुति। मित्रों, भक्ति संगीत में ऐसी शक्ति है कि वह सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। संगीत ऐसा सात्विक आनंद है जो जाति, धर्म, लिंग, आयु, वर्ग सभी से परे है। संगीत सबके लिए है। संगीत को न सीमाओं से बांधा जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ये आबाद धारा सबके लिए सर्वत्र सुलभ है। हमारा अगला गीत फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए इंदी वर्जी ने लिखा था और इसे संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है और जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं विद्या शंकर जी।

वाह विद्या जी, इस सुमधुर प्रस्तुति से मन प्रफुल्ल हुआ। मित्रों, हमारे देश के संतों ने समय समय पर यह शिक्षा दी है कि वास्तव में भगवान और उनके नाम के बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम का नाम भगवान राम से भी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में ये कथा है कि कलयुग में श्री हरि के नाम के जाप से ही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सब में राम और राम में है सब। तुलसी का प्रभु भी वही, नानक का रब भी वही। नाम भजन में ज्योति असीमित। पेश है एक राम धुन जो मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है प्रसिद्ध एल्बम राम श्याम गुणगान में। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं स्वागता पॉल और संजय हर्ण।

संजय जी, हम मन विभोर हुए। मित्रों, भगवान राम एक अवतार पुरुष थे, असाधारण पुरुष थे, करुणा मूर्ति थे। ये सभी के प्रति स्नेह और अपनापन का सामान्य भाव रखते थे, चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन हो। वह तो ऐसे करुणा मूर्ति थे जो उनके शत्रु के प्रति भी स्नेही और दयालु थे। चलिए सुनते हैं एक भजन जो श्री अरबिंदो सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा रचाया गया है। इस भजन को स्वरबद्ध किया था जगजीत सिंह जी ने। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय फड़के जी और मैं लक्ष्मी बालचंद्र।

0: बेहद खूबसूरत संजय जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा साथ दिया। मित्रों, सुविचार, सत्संग और निरंतर भगवान के जाप से सकारात्मक ऊर्जा निर्मित होती है। हम आशा करते हैं आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से प्रकाशित हो।
1: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
0: मित्रों, ये एक सामान्य बात है कि संकट के समय हम भगवान की ओर रुख करते हैं। हम घोर विनम्रता और प्रत्याशा दोनों के दोहरे रवैया के साथ आते हैं। हम परमेश्वर को आदेश तो नहीं देते, लेकिन हम साहसपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उनके सिंहासन के सामने आते हैं, ये कहते हुए कि मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। नक्शलयालपुरी की ये पंक्तियाँ फिल्म राम नगरी के लिए लिखा गया था। इसे संगीत से सजाया था जयदेव जी ने। इस गीत को मूल रूप से हरिहरन जी और नीलम सानी जी ने गाया है। आपके लिए इस गीत को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय फड़के जी।

वासंदे जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, एक व्यक्ति का आंतरिक जीवन और बाहरी ब्रह्मांड के बीच कोई अलगाव नहीं है। मन एक दर्पण की तरह है, जो कुछ भी सामने आता है वह उसमें प्रतिबिंबित होता है। आप जिस किसी के बारे में सोचते हैं, उसकी भावनाएं और उसकी मनस्थिति आप पर टिकी रहती है। अगर आप खुश लोगों के बारे में सोचते रहते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। दुखी चीजों के बारे में सोचकर आप दुखी महसूस करते हैं। इसलिए साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस गीत को काजल फिल्म के लिए संगीतकार रवि ने स्वरबद्ध किया था और आशा भोसले जी ने अपने मधुर वाणी से इसे सजाया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मोनिका दश और अनुराधा वैद्यनाथन।

वाह मोनिका जी और अनुराधा जी, अति मधुर प्रस्तुति। हमारे अगले भक्ति गीत में कौशल्या मैया कागज से पूछती है, तुम सच बोलो और मुझे बताओ कि मेरे प्राणों से प्यारे वे लोग कब आएंगे। तुलसीदास जी की गीतावली से ये रचना बैठी सगुन मनावती माता, आइए सुनते हैं संजय हरने जी की आवाज में।

अति सुंदर प्रस्तुति संजय जी, आइए स्वागत करते हैं इस खूबसूरत शिव धुन के साथ। इस पारंपरिक धुन को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय हरने जी, संजय फड़के जी, अनूप शर्मा जी, जय कृष्णन जी, ललिता कृष्णमूर्ति, श्वेता, शोमा सी रॉय, प्रेरणा जकादार, मधुलिका शर्मा और स्वयं मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: आप सुन रहे थे बिंदु व्यास की आवाज में डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो आपका अपना रेडियो,
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चचा?

0: रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
1: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
0: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
1: अरे बेटा, कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
0: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा,
0: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
1: अच्छा, कौन सा ऐप है वो?
0: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
1: जयपुर रेडियो? पर बेटा, हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
0: चाचा, देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
1: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
0: लाइए, मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश आज की इस खूबसूरत शाम का आपका मेजबान, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जयपुर रेडियो की इस बेहद सुरीली गीतमाला में, जिसका शीर्षक है आओ झूमे गाए। आज की महफिल का आगाज करने से पहले चंद पंक्तियां पेश करना चाहूंगा। दोस्तों, वो दिन भी क्या दिन थे, जब तपती धूप में हमें खेलते देख सूरज भी हमसे जुड़ता था, जब तपती धूप में हमें खेलते देख सूरज भी हमसे जुड़ता था, और जिस राह पे मुड़ती थी अपनी साइकिल साथ में चांद भी मुड़ता था, जब बरगद की जटाएं भी हमी से झूला झूलती थी, जब बरगद की जटाएं भी हमी से झूला झूलती थी, आलम कुछ ऐसा था दोस्तों कि तितलियां भी हमसे खेलती थी, कागज की कश्ती की तरह अपने सपने भी डोलते थे, कागज की कश्ती की तरह अपने सपने भी डोलते थे, और ख्वाब भी इतने सतरंगी थे कि उनमें हम परियों से भी बोलते थे। सचमुच दोस्तों, न रोने की कोई वजह थी और न हंसने का कोई बहाना, न रोने की कोई वजह थी और ना ही हंसने का कोई बहाना, आज महसूस होता है कि कितना सुहाना था वो जमाना। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बचपन की, मां की लोरी से यादों की डोरी तक जो सफर हम सब ने तय किया है, आइए आज इसे फिर से दोहराते हैं इस खूबसूरत गीतमाला के साथ। तो कार्यक्रम की शुरुआत में चलिए सुनते हैं 1975 की फिल्म मिली का एक बेहद खूबसूरत गाना, जिसे लिखा है योगेश जी ने, संगीत दिया है सचिन देव बर्मन जी ने, और गाया है लता मंगेशकर जी ने। आज इस खूबसूरत गाने को आपके सामने प्रस्तुत कर रही है अपनी सुरीली आवाज में गिरिजा जी और तनुजा जी।

दोस्तों, इस सुरमई सफर में जो अगला गीत अब हम सुनेंगे उसका अंदाज ही कुछ निराला है। ये गाना है पापा और मम्मी के प्यार के बारे में। और वैसे भी दोस्तों, 1971 में प्रदर्शित फिल्म अंदाज का अंदाज भी कुछ निराला ही था। बतौर निर्देशक ये रमेश सिप्पी जी की पहली फिल्म थी। बतौर लेखक ये सलीम जावेद के हिट जोड़ी की पहली फिल्म थी। और दोस्तों, यही फिल्म बनी संगीतकार जय किशन जी के जिंदगी की आखिरी फिल्म। तो चलिए सुनते हैं हतरक जयपुरी द्वारा लिखित, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने गाया हुआ और शंकर जयकिशन जी ने संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत। प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी सुमधुर आवाज में किशोर जी और श्वेता जी।

दोस्तों चलो ये तो सुन ली हमने मम्मी और पापा के प्यार की कहानी, लेकिन कई बार मां बाप के आपसी रिश्ते बच्चों की मासूमियत पे एक गहरा घाव भर देते हैं। कुछ यही दिखाने की कोशिश की थी 1980 के दशक में आई हुई मूवी मासूम ने। निर्देशक शेखर कपूर की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो धूम मचा ही दी थी और कई सारे अवार्ड समेट लिए थे, लेकिन खास करके इसके गाने इतने मशहूर हुए कि आज भी हम उन्हें गुनगुनाते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं गीतकार गुलजार के शब्दों में आरडी बर्मन जी द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ एक ऐसा ही मासूमियत भरा गाना, जिसे आपके सामने प्रस्तुत कर रही है अपने सुमधुर आवाज में डॉली जी और हीना जी।

दोस्तों, अब मासूमियत की बात छिड़ ही चुकी है तो जरा सोचिए उस दौर में हम कितने मासूम हुआ करते थे कि चिड़िया, कौवा, हाथी, भालू, बंदर अपने दोस्त हुआ करते थे। ऐसी ही मासूमियत को छलकाया था 1957 की एक फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं ने, जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी की बेगुनाही साबित करने के लिए सीधा दिल्ली का रुख करता है ताकि वो प्रधानमंत्री से मिलके उन्हें अपने मन की बात सुना सके। तो चलिए संगीता जी और कविता जी की लुभावनी आवाज में हम भी खो जाते हैं चिड़िया, कौवे, भालू और बंदर की दुनिया में। आइए सुनते हैं अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म का एक गाना जिसके गीतकार है हसरत जयपुरी और संगीत से नवाजा है दत्ताराम वाडकर जी ने।

दोस्तों, जब हम भालू, बंदर, चिड़िया, कौवे जैसे अपने बचपन के दोस्तों से मिल चुके हैं, तो हम बचपन के उस एक दोस्त को भला कैसे भुला सकते हैं, जिसके बिना हमारी एक भी रात नहीं गुजरती थी, जिसकी कहानियां सुना के माँ हमें सुलाती थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चांद की। इतना गहरा था हमारा रिश्ता कि कई गानों ने तो उसे हमारा मामा बना दिया था। कभी हम उसके घर जाते और वहां अपनी दुनिया बसाते, तो कभी उसको धरती पे अपनी दुनिया में बुलाते। आज हमारे होनहार गायक नमित सिन्हा जी और धन्या संतोष जी ऐसी ही एक चांद के सफर पे आपको लेके जाएंगे। तो लीजिए, सुनते हैं उन्हीं की आवाज में फिल्म जख्मी का ये गाना। बोल है गौहर कानपुरी के और संगीत दिया है बप्पी लहरी जी ने।

दोस्तों, उन दिनों हमारे खेल भी बड़े अजीब हुआ करते थे। छोटी छोटी शरारतों से हमें बड़ी खुशियां मिलती थी, जैसे माँ को बिना बताए डिब्बे से लड्डू चुराना, गर्मियों की छुट्टियों में खेतों में टहलते टहलते पेड़ से आम या अमरूद चुराना, कागज का हवाई जहाज बना के चुपके से उसे क्लास में उड़ाना, या फिर जीप की अजीब सी पहेलियां बुझा के अपने दोस्तों का मजाक उड़ाना। क्या नहीं समझे? अरे समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ, समझ समझ के तुम नहीं समझे, मेरी समझ से तुम ना समझो। कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं आज के हमारे अगले गायक राजेंद्र जी और मनीषा जी फिल्म फना के इस गाने के साथ, जिसे लिखा है प्रसून जोशी जी ने और संगीत दिया है जतीन ललित जी ने।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंको, पिंको पकड़े पका पपीता। बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
2: कपड़ा।

दोस्तों, ऐसी पहेलियां बुझा के शरारत और मनोरंजन करने का सिलसिला सिर्फ आज के दौर का नहीं है और ना ही ये मनोरंजन या बच्चों तक सीमित है। अब यही देखिए ना, हमारे वेदों के ऋषियों ने भी नासदीय सूक्त जैसी काव्यात्मक पहेलियां बुझा के पूरे संसार की रचना का पाठ हमें पढ़ाया। खैर दोस्तों, इतना दूर नहीं जाते। अब यही देखिए, 1955 में कवि शैलेंद्र जी ने कुछ ऐसी ही पहेलियां लिखी। शंकर जयकिशन जी ने उसे संगीत दिया, लता जी और मुकेश जी ने उसे गाया और बस होना क्या था, बन गया एक सुपरहिट गाना जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि रशिया, चीन, इजराइल जैसे कई देशों में हिट हुआ। तो चलिए सुनते हैं फिल्म श्री 420 का यही गाना मनप्रीत जी और अनूप जी की मनमोहक आवाज में।

0: बोलो क्या
1: तुम?
0: हम
2: ऐसे बेहद लुभावने गीत सुनने के बाद दोस्तों दिल में एक ख्याल आता है कि आखिर बड़े होकर हमने क्या पाया, या फिर यूं कहिए कि जितना भी पाया शायद उससे कई ज्यादा खोया। किसी ने खूब कहा है दोस्तों, ऐ उम्र अगर है दम तो कर दे इतनी सी खता, ऐ उम्र अगर है दम तो कर दे इतनी सी खता, बचपन तो छीन लिया तूने बचपना छीन के बता। सचमुच दोस्तों वो दिन भुलाए नहीं भूलते, और भाई इतनी सुनहरी यादों को भुलाए भी क्यों। शायद यही कहना चाहते हैं हमारे अगले गीत के गायक MD त्यागी जी और गायत्री जी। तो लीजिए उन्हीं की आवाज में सुनते हैं शकील बदायूनी द्वारा लिखित और नौशाद जी ने संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म दीदार का ये गाना।

चलिए दोस्तों, बचपन का ये सुहाना सफर तय करते करते अब हम उम्र के उस पड़ाव पे आते हैं जहां थोड़ी बहुत जमाने की समझ हमें भी आती है और थोड़ी दुनियादारी भाई हम भी सीख लेते हैं। रोने और हंसने के अलावा अब हमें रूठना और अपनी बात मनवाना भी भले खूब आता है। ये उम्र का वो नाजुक पड़ाव है दोस्तों जो आपके भविष्य की नींव बनती है। यहां कोई अच्छा सलाहकार मिले तो आपकी जिंदगी बनती है या फिर बिगड़ती है। हमारे अगले गायक बिश्वजीत जी और विद्या जी भी शायद आपको यही बताना चाहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव को कैसे पार किया जाए। तो सुनते हैं उन्हीं की सुमधुर आवाज में फिल्म अपना देश का यह गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी जी ने और संगीत से नवाजा है आर डी बर्मन जी ने।

अब देखिए ना दोस्तों, बचपन की यादों की बौछारों में भीगते भीगते वक्त कैसे बीता इसका पता ही नहीं चला, और हम पहुंच गए हैं इस सुरीली महफिल के अंजाम तक। दोस्तों, कभी कभी तो मुझे लगता है कि जिंदगी की दौड़ में दौड़ते दौड़ते हम दौड़ना तो भली भांति सीख गए हैं, पर शायद जीने का मकसद कहीं छूट गया है। और शायद यही जिंदगी का फलसफा सिखाती है हमें यह गजल, जिससे आज हम अपनी सुरीली महफिल की समाप्ति करेंगे। सुदर्शन फाकीर की ये बेहद खूबसूरत पंक्तियां, जिन्हें संगीत और सुरों से नवाजा है जगजीत सिंह जी ने, आज आपके सामने पेश करेंगे हमारे दो सुरीले होनहार फनकार, बिमल जी और अपर्णा जी।

0: दोस्तों, वक्त का तकाजा यह कहता है कि अब आपसे अलविदा कहने का समय हो गया। मैं आशा करता हूं कि जितनी खुशियां इन गीतों को आप तक पहुंचाने में हमें मिली, उतनी ही खुशियां आपको भी इन्हें सुनने में आई होंगी और आप भी अपने बचपन की सुनहरी यादों में खो गए होंगे। किसी ने खूब कहा है दोस्तों, गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे किसी मुसाफिर की तरह, यादें वही खड़ी रह जाती है रुके हुए रास्ते की तरह। तो चलिए, इसी ख्याल के साथ मैं मंगेश आपकी आज की शाम का आपका मेजबान आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। फिर से एक बार आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सुनते रहिएगा जयपुर रेडियो, क्योंकि यही तो है आपकी आवाज, आपकी पहचान।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आज के इस खास प्रोग्राम

0: कहां है इसका छोर बताएंगी स्मृति अपने पापा के साथ।
1: नमस्कार दोस्तों, सियाटल से मैं समृद्धि आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं हमारे प्यारे से प्रोग्राम जिसका नाम है गीतों के सवाल और गीतों के जवाब की कड़ी नंबर 7 में, यानी कि एपिसोड नंबर 7। अरे वाह, देखते ही देखते हमारा सफर 1 महीने से ऊपर हो गया, पता भी नहीं चला। तो आज हम बात करेंगे रिश्तों की। अब तक हमने इस सफर में प्यार के कई रंग देखे हैं। कभी पूछा कि प्यार क्यों होता है, कभी किसी की आंखों में सवाल ढूंढे, तो कभी किसी की तारीफ की। लेकिन आज हम प्यार से थोड़ा आगे चलते हैं। आज बात होगी रिश्तों की, क्योंकि हर रिश्ता प्यार नहीं होता और हर प्यार को कोई नाम देना भी जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते खून के होते हैं, कुछ शादी से बनते हैं, कुछ दोस्ती से, और कुछ बस बन जाते हैं। ना कोई नाम, ना कोई वादा, ना कोई रिश्ता तय करने वाला कागज, बस एक अपनापन, एक समझ, जैसे कि हमारा और आपका रिश्ता है ना। एक ऐसा एहसास भी होता है जिसमें रिश्तों को नाम दे के बांधना उनकी उसमें नाइंसाफी होगी। कभी कभी लगता है कि एक बड़े ही प्यारे गीत के लाइंस बोल रही हूँ कि हाथ से छूकर कोई रिश्तों को इल्जाम ना दो। कुछ रिश्ते अनाम ही अच्छे लगते हैं, लेकिन रिश्ते हमेशा इतने सरल भी नहीं होते। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, कुछ दूर तक हमारे साथ चलते हैं, और फिर कभी किसी मोड़ पर रास्ते अलग भी हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिश्तों की इसी थोड़ी अजीब, थोड़ी खूबसूरत और कभी कभी थोड़ी स्वार्थी दुनिया से। आज के हमारे पहले गीत के बारे में आपको कुछ जानकारियां दे दूं। तो यह गीत है फिल्म पेज 3 का, जो कि वर्ष 2005 में रिलीज हुई थी। इसकी गायिका है लता मंगेशकर, गीतकार है संदीप नाथ और संगीत दिया है शमीर टंडन ने। इस गीत के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि लता मंगेशकर ने गाया है और संगीतकार शमीर टंडन के लिए लता जी के साथ काम करना अपने आप में एक सपने जैसा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने गीत जब लता जी को भेजा तो लता जी ने अपने परिवार वालों से चर्चा करने के बाद इस गीत को सहमति दी। और गीत रिश्तों की कोई मीठी तस्वीर नहीं बनाता, कहता है दो पल मिलते हैं साथ चलते हैं, जब मूड आए तो बच के निकलते हैं। कितनी सच्ची पर शायद कड़वी बात है यह। हम अक्सर रिश्तों को उनकी उम्र से मापते हैं, कितने साल से जानते हो, कितने साल के साथ रहे हो, लेकिन कभी कभी कोई इंसान कुछ ही समय के लिए आता है और फिर भी जिंदगी का कोई हिस्सा हमेशा के लिए बदल जाता है। शायद इसीलिए रिश्ते कितने लंबे थे इससे ज्यादा जरूरी यह है कि वह कितने सच्चे थे। तो आइए सुनते हैं

और अब रिश्तों की इस पूरी दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा है जिसमें शिकायत भी प्यार है और शरारत भी प्यार, तो वह रिश्ता है माँ और बच्चे का रिश्ता। माँ के लिए बच्चा कभी चांद होता है, कभी सूरज, और कभी इतना नटखट कि बस पूछिए ही मत। लेकिन यही तो उस रिश्ते की खूबसूरती है, जिससे हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, अक्सर वही हमारे दिल के सबसे करीब होता है। यह प्यारा सा गीत फिल्म अमर प्रेम का है, जो कि वर्ष 1972 में रिलीज हुई थी। गायिका लता मंगेशकर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीत आरडी बर्मन का। यशोदा की शिकायत सुनिए। कृष्ण की शरारतें खत्म ही नहीं होती, लेकिन शिकायत के पीछे भी जो प्यार है वो हर पंक्ति में झलकता है। उसे नजर से बचाना है, उसे अपने पास रखना है, उसकी हर शरारत पर नाराज भी होना है, और उसी शरारती बच्चे को देखकर मुस्कुराना भी है। शायद माँ बच्चे का रिश्ता यही है। तुम मुझे कितना भी सता लो, कितना भी परेशान कर लो, तुम मेरे ही हो। तो सुनते हैं

और माँ की तरह पिता का रिश्ता भी सिर्फ आज की कहानी नहीं होता। एक पिता जब अपने बच्चे को देखता है तो शायद उसे सिर्फ वो छोटा सा बच्चा दिखाई नहीं देता, उसे उसका आने वाला कल भी दिखाई देता है। आज उंगली पकड़कर चलवाना और शायद कल उसी बच्चे का हाथ पकड़कर अपनी राह तय करना, यानी रिश्ते सिर्फ हमें जोड़ते नहीं, वक्त के साथ अपनी भूमिकाएं भी बदलते हैं। हमारा अगला गीत फिल्म एक फूल दो माली का है, जो कि वर्ष 1969 में रिलीज हुई थी। इसके गायक हैं मन्ना डे, गीतकार प्रेम धवन और संगीत रवि ने दिया है। यह गीत सुनते हुए एक पिता की आंखों से अपने बच्चे को देखना बहुत खूबसूरत लगता है। बच्चा आज उसकी गोद में है, कल बड़ा होगा और एक दिन शायद वही बच्चा उस पिता का सहारा बनेगा। यानी रिश्ता सिर्फ यह नहीं कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बल्कि यह भी कि एक दिन तुम मेरा भी ख्याल रखोगे। और शायद यही परिवार की सबसे सुंदर परंपरा है, प्यार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। सुनते हैं पंकज चतुर्वेदी की आवाज में तुझे।

लेकिन हर रिश्ता हमें दिखाई दे जरूरी तो नहीं। कुछ रिश्तों को आंखों से नहीं बस महसूस किया जाता है, जैसे कि भगवान या ईश्वर और उनके दर्शन अभिलाषियों का। हम भगवान को देख तो नहीं सकते, पर हम उन्हें शायद महसूस कर सकते हैं। और कहते हैं ना, भगवान ने अपनी छवि में माँ को भेजा है इस धरती पे हमारा ख्याल रखने। हमारा अगला गीत जो है वह है पिक्चर दादी माँ का, जो कि वर्ष 1966 में रिलीज हुई थी। इसके गायक हैं मन्ना डे और महेंद्र कपूर, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत रोशन का है। जिसे देखा नहीं उसे जाने कैसे, इस गीत का जवाब किसी दर्शन की किताब में नहीं मिलता। और माँ का रिश्ता यहाँ सिर्फ माँ बेटे का रिश्ता नहीं रह जाता, वो बन जाता है ममता का प्रतीक, सुरक्षा का प्रतीक, उस अनदेखे भरोसे का प्रतीक जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन जिनके होने पर कभी शक भी नहीं होता। और शायद रिश्तों की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आइए सुनते हैं मेरे और मेरे पिताश्री की आवाजों में उससे

और अब माँ पिता बच्चा, हमने उन रिश्तों की बात तो कर ली जो कि जीवन हमें दे देता है, लेकिन जिंदगी एक सफर भी है और इस सफर में बहुत से लोग हमारे साथ चलते हैं, कोई कुछ दूर, कोई बहुत दूर और कोई शायद पूरी यात्रा। लेकिन क्या कोई सचमुच हमेशा हमारे साथ रहता है? यही सवाल हमें अगले गीत तक लेके आता है। हमारा आज का पांचवा गीत फिल्म गाइड का है, जो कि वर्ष 1965 में रिलीज हुई थी। गायक एसडी बर्मन, गीतकार शैलेंद्र और संगीत भी एसडी बर्मन ने दिया है। यह गीत रिश्तों को घर से निकालकर जिंदगी के बहुत बड़े कैनवस पर ले जाता है। हम कहते हैं मेरा परिवार, मेरा दोस्त, मेरे अपने, लेकिन जिंदगी का सफर हमें धीरे धीरे सिखाता है कि हर मुसाफिर की अपनी अलग मंजिल होती है। कुछ लोग साथ चलते हैं, कुछ रास्ते में बिछड़ जाते हैं, और फिर भी उनकी मौजूदगी हमारी कहानी का हिस्सा बन जाती है। एसडी बर्मन की अपनी आवाज में यह गीत किसी उपदेश जैसा लगता है, लेकिन लगता है जैसे कोई अनुभवी मुसाफिर चलते चलते बस इतना कह रहा हो, सोच जरा इस सफर में सचमुच तेरा कौन है। सुनते हैं पंकज जी की आवाज में।

और अब इतने सारे रिश्तों के बीच घूमते घूमते हम फिर उसी सवाल पर आ गए हैं कि आखिर रिश्ता क्या होता है। माँ, पिता, बच्चा, दो दोस्त, दो परिवार, दो अजनबी। अब जो मैं अगला गीत लेकर आई हूं उसके बोल हैं, यह रिश्ता क्या कहलाता है। आपने शायद इसी नाम का एक फिल्मी गीत भी सुना होगा जो कि मूवी मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज का है, लेकिन आज मैं वह गीत नहीं बजा रही हूं। मैं लेकर आई हूं एक धारावाहिक यानी कि टीवी सीरियल जिसका नाम है यह रिश्ता क्या कहलाता है का टाइटल सॉन्ग। इसे अलका याग्निक जी ने गाया है और इसके पीछे थोड़ी कहानी और थोड़ी फिलॉसफी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अब हम सब जुड़े हुए हैं जयपुर रेडियो से और ये जो धारावाहिक है उसकी कहानी शुरुआत हुई थी उदयपुर से, जो कि जयपुर के थोड़े पास ही है। अब हम थोड़े ग्लोबल हो गए हैं तो उदयपुर जयपुर तो खैर पास ही बोलेंगे। और खास बात यह है कि यह शो एक दशक से भी ज्यादा से चलता आ रहा है। माफ कीजिएगा, मैं उस शो को प्रमोट नहीं कर रही यहाँ पे, बट मैं उसके पीछे की कहानी से बता रही हूँ आपको कि वह शो जनवरी 2009 से शुरू हुआ था और अभी 2026 में भी जारी है और मेरी माताश्री उसको एक दशक से भी ज्यादा से देखती आ रही है। जरा सोचिए, जब उन्होंने इसे देखना शुरू किया था तो मैं अपनी जिंदगी के बिल्कुल अलग पड़ाव पर थी। मैं स्कूल या कॉलेज में थी और मैं उनको छेड़ती थी कि क्या ये सास बहू के सीरियल देखते रहती हो जो साल भर साल आगे ही नहीं बढ़ती कहानी, बस वही घूम रही है कहानी और अभी भी चल रहा है। लेकिन शायद यही रिश्तों की एक बहुत दिलचस्प किस्म है, दर्शक और कलाकारों का रिश्ता। हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, वे हमें नहीं जानते, फिर भी सालों तक हम उनके साथ हंसते हैं, रोते हैं, उनकी शादियां देखते हैं, उनके परिवार बढ़ते देखते हैं, उनके बच्चे बड़े होते देखते हैं और धीरे धीरे वे हमारे घर का हिस्सा बन जाते हैं। खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी एक अपनापन है। कुछ वैसा ही रिश्ता मैं जयपुर रेडियो और अपने लिसनर्स के बीच में महसूस करती हूँ। आप मुझे शायद व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, मैं आप सबको नहीं जानती, लेकिन जब आप बार बार लौट कर हमारे साथ ये गीत सुनते हैं, जब आप अपने फीडबैक देते हैं, किसी गीत की फरमाइश करते हैं या बस चुपचाप सुनते हैं, तो एक रिश्ता तो बन ही जाता है। और मेरा दिल इसी उम्मीद में है कि जिस तरह मेरी माँ और इस सीरियल का रिश्ता एक दशक से ज्यादा है, वैसे ही जयपुर रेडियो और हमारे लिसनर्स का रिश्ता भी साल दर साल और मजबूत होता जाए और इस रिश्ते को कोई नाम देने की कोशिश ना करे, बस महसूस कीजिए, क्योंकि शायद आज के पूरे सफर के लिए इससे बेहतर आखिरी सवाल हो ही नहीं सकता। ये

आप सुन रहे थे प्रोग्राम रिश्तों की डोर, और इस प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रही थी अमेरिका सियाटल से स्मृति चतुर्वेदी। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये सुरीला प्रोग्राम यहीं तक।

0: रेडियो
1: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: मौसीकी की दुनिया के दोस्तों, मैं गगन माथुर जयपुर रेडियो और आओ झूमे गाएं की ओर से आपका इस्तकबाल करता हूँ। आएगा

0: लता जी के इस खूबसूरत टाइमलेस गीत को शबाना आजमी के प्लेबैक के लिए रिकॉर्ड करके अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की एक ऐसी मुतरिबा ने जिनके गले में ही नहीं बल्कि नाम में भी सरस्वती का वास था। शारदा नाम की इस लड़की ने 46 भाषाओं में 50,000 से भी ऊपर गीत हमें दिए और आगे जाकर कविता कृष्णमूर्ति के नाम से जानी गई। तो आइए इस कार्यक्रम का शानदार आगाज करते हैं प्रेरणा और काकोली की मदद से, जो कविता जी का एक ऐसा गीत सुनाएंगी जिसने श्रीदेवी जैसी अदाकारा को हमेशा के लिए हवा हवाई ब्रांड दे दिया। इस गीत से श्रीदेवी की छवि ऐसी जुड़ी कि सिंगापुर के मैडम टुसॉड्स में भी श्रीदेवी जी का वही गेटअप रखा गया है जो कि इस गीत में था। प्रेरणा और काकोली।
1: हवा हवाई।

हवा हवाई कविता जी का पहला पहला हिट नहीं था। 1985 में जब उन्होंने एक बच्चे के माध्यम से मिथुन दास से कहा, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, उसी समय उनकी आवाज फिल्म के हीरो और पिक्चर हॉल में बैठे सभी ऑडियंस के दिलों को छू गई थी। पर क्योंकि इस गाने के डुएट वर्जन को लता जी ने गाया था, कविता जी का नाम कहीं पीछे गुम हो गया। मगर भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। 2 साल बाद आए हवा हवाई, जिसने श्रीदेवी और कविता कृष्णमूर्ति दोनों को ही अपनी अपनी जगह स्टार बना दिया। 1998 में एक डब्ड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड 14 करोड़ रुपए कमाए। उस फिल्म का नाम था बॉम्बे और उसकी पटकथा में जान डालने का काम किया था एक गीत ने, जिसे गाया था हरिहरन साहब और कविता जी ने। तो आइए इसी गीत से इस कार्यक्रम का दिल छूने के लिए बुलाते हैं धनश्री और अभिषेक को।

कविता जी सेंट जेवियर कॉलेज बॉम्बे से पढ़ी हैं और उसके म्यूजिकल फेस्टिवल मल्हार में उनकी मुलाकात हुई रानू मुखर्जी से। रानू ने मिलवाया अपने पिता लीजेंडरी हेमंत कुमार साहब से। हेमंत कुमार उनकी संगीत में पकड़ से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी लाइव परफॉर्मेंसेस के ट्रूप में शामिल कर लिया। यहाँ पे वो मन्ना डे साहब की नजर में भी आ गई और उन्होंने उन्हें एड जिंगल्स गाने का मौका दिया। शायद इसी प्रकार के विविध अनुभवों से आई वर्सेटैलिटी का उदाहरण है कविता जी का वो गीत जिसे रमेश सिप्पी साहब ने बनवाया था फिल्म राम की सीता श्याम की गीता के लिए, मगर मुकुल आनंद ने मांग लिया अग्निपथ के लिए और प्रयोग किया फिल्म हम में। इस गीत की प्रेरणा है एक जर्मन गीत ये के निमो ये के जिसपे बप्पी लहरी साहब भी एक गीत बना चुके थे, लिहाजा कॉन्ट्रोवर्सी हुई। मगर आज देखें तो लगता है कि अगर ये गीत रिलीज ना होता तो हिंदुस्तानी जनता एक यूनिक म्यूजिक एक्सपीरियंस से महरूम रह जाती। मगर ये गीत रिलीज हुआ और उसे यहाँ पेश करने आ रहे हैं प्रियंका और राजेंद्र।

0: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
1: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
0: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
1: तुम मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
0: अरे बेटा, कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ घूम।
1: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: अच्छा,
1: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
0: अच्छा, कौन सा ऐप है वो?
1: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
0: जयपुर रेडियो? पर बेटा, हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
1: चाचा, देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
0: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
1: लाइए, मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
4: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
3: आपकी आवाज।

0: का जादू कैसे रहे खुद पर काबू। जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
1: तवा बुधिरायो जयपुर रेडियो ते भक्ति आराधना।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं और उसका टाइटल है, उसका शीर्षक है सोच की दुनिया। जितना हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ वही दुनिया बच जाती है, यानी हमारे सोच का प्रतिरूप होती है हमारे आसपास की दुनिया। और ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके पीछे कौन से घटक होते हैं, कौन से कारण होते हैं, इन सब के लिए हमारे साथ एक स्पेशलिस्ट हैं। अहमदाबाद गुजरात की कृति मेहता हमारे साथ हैं इस खास प्रोग्राम में। कृति, वेलकम है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच की दुनिया। क्या कहेंगी, क्या सोचती हैं आप इस बारे में? पहले तो प्रोग्राम के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट है, आप हमारे लिसनर्स को इस कॉन्सेप्ट का जो डिस्क्रिप्शन है उसे अपने शब्दों में बयान करेंगी?
1: यस, ऑफ कोर्स सर। सबसे पहले नमस्ते, सारे जो भी मेरे श्रोतागण हैं उनको सबको भी नमस्ते। सोच की दुनिया, यही मेरा मेन सब्जेक्ट है। और नॉर्मली मैं सभी के माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम, पर्सनालिटी और जो भी वाइब्रेशन वाली जो दुनिया है उसे के ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ। तो सोच की दुनिया में मैं ऐसा मानती हूँ कि अभी की जो दुनिया है ना, वो हमारी ही बनाई गई एक दुनिया है और हमारा ही ये जो विश्व है, हमारे पास जो भी हमें जीवन मिला है, हमें जिन लोगों के साथ अभी रह रहे हैं, जिस तरह से रह रहे हैं, पैसा कितना है, हमारे आजू बाजू एटमोस्फियर कितना है, किस तरह के लोग हैं कि और किस तरह से हमें उनकी ओर से भी बिहेवियर मिलता है, किस तरह से हमारे रिश्ते हैं, ये सब हमारी सोच के ऊपर निर्भर होता है।
0: बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि जो हमारा सोच है, वो सोच जिसको हम यदि धार्मिक दृष्टि से कहेंगे तो कहा जाता है कि पहले हमने इच्छा की किसी चीज की, इच्छा के बाद में जो है कल्पना की, कल्पना के बाद में उसके लिए हमने क्रिया की और क्रिया से हमें ज्ञान का बोध हुआ। तो इसी तरह से सोच की जो दुनिया है कि आपने रात को सोचा कि कल सुबह मुझे क्या पहनना है, जीन्स पहननी है या टी शर्ट पहनना है या किस तरह का लिबास पहनना है, आज तो मैंने साड़ी पहनी थी, तो उस सोच को जब आप दूसरे दिन परिणति में, यथार्थ में ढालती हैं तो, और उसको उसी रूप से यदि वो सब कुछ हो जाता है तो हमें एक आत्मिक खुशी मिलती है, मन को एक शांति मिलती है कि जैसा मैंने सोचा वैसा किया। तो इस चीज को हम और व्यापक तरीके से, यानी जितना हमारा सोच होगा उसी तक उसकी सीमाएं होंगी, सरहदें होंगी, तो उस सोच को हम व्यापक कैसे बना सकते हैं?
1: ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा टॉपिक आपने कहा और यही टॉपिक मैं सबके लिए ही लाई हूँ। तो सबसे पहले हमें ये मान लेना चाहिए कि ये जो विश्व है ना, तो वो विश्व के पास अनंत शक्तियाँ पड़ी हुई है, अनंत शक्तियाँ। मैंने बहुत बार देखा हुआ है और काफी सारे धार्मिक ग्रंथ, सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट जो है भगवद गीता, तो उसी में जो कहते हैं कृष्णा यही कहते हैं कि ना ही मुझे जला सकता है, ना ही मुझे कोई डुबा सकता है, ना ही मुझे कोई काट सकता है, ना ही मेरे को कोई, मतलब किसी तरह से मुझे परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मन का स्वामी मैं खुद हूँ, मैं खुद एक पावरफुल सोल हूँ। ठीक है, तो अगर कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति मतलब इस तरह से मान ले कि मुझे पहले, सबसे पहले उसको पर्पस नक्की करना है कि मुझे क्या करना है अपनी जिंदगी में और मैं किस हद तक जाने वाला हूँ। जैसे नॉर्मल कोई भी बच्चा है, हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, सर जी को ले ले, तो उनको देखिए कि कहाँ मामूली इंसान से वो इतने बड़े साइंटिस्ट, फिर हमारे राष्ट्रपति बन गए और आज भी उनका नाम एक रिस्पेक्ट के साथ हम लेते हैं कि उन्होंने अपनी सोच, जैसे स्वामी विवेकानंद है, गांधी जी है, तो उन लोगों ने डिसाइड किया था कि मुझे कहाँ तक जाना है। तो जो मन हमारा होता है ना, तो जब ये सब मैं बहुत बार पढ़ती हूँ ना, तो मुझे एक बात बहुत गौर की है तो जो हमारा मन है ना वो हमारा पिता है और जो हमारा बॉडी है वो हमारी माता है।
0: जी नॉर्मली मतलब ये है कि मन की ऊर्जा जो है वो तन की ऊर्जा के साथ मिले, उनका सामंजस्य हो और तालमेल रहे, यानी ऐसा नहीं हो कि हमारा तन तो कहीं और देख रहा है और मन कहीं और घूम रहा है, तो उन दोनों में संतुलन होने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात कही कि मन हमारा पिता है और बॉडी जो है हमारी मदर है।
1: तो नॉर्मली हम बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग जिस तरह से हम माहौल में रहते हैं इस तरह से तो मानते हैं, मैं इतना श्योरली मानती हूँ, मैं क्योंकि सब सबके पर्सनालिटी पे मैं काम करती हूँ तो बहुत ऐसा देखती हूँ कि मैक्सिमम 7 इयर्स तक सारी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। 7 इयर्स के बाद तो जो सोसाइटी होती है, जो हमारा एटमोस्फियर, जो हमारा परिवार और हमारे दोस्त, टीचर्स, कॉलेज, फ्रेंड्स सभी हमको ड्राइव करते रहते। एक्चुअली हम फिर डेटा ही कैरी करते रहते, हमारा डेटा हम इनपुट ही करते रहते हैं, आउटवर्ड हमारा कुछ होता ही नहीं है। तो इस तरह से हमारी पूरी दुनिया हमारी
0: हम इस बात को एक बार फिर और स्पष्ट करना चाहेंगे और आप ये कहना चाह रही हैं या ये कह रही हैं कि जो बच्चा होता है तो उसकी 7 वर्ष की उम्र तक ही जो है दिमाग की जो प्रोग्रामिंग होती है वो सेट हो चुकी होती है, उसके बाद हम जो है उसको यूज करते हैं, मतलब
1: तो नॉर्मली जब बच्चा छोटा होता है तो उसको ऐसा हम बार बार ना शब्द का यूज बहुत करते हैं कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। आगे जाके वो लड़का या लड़की कुछ भी करने से उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कभी कोई बच्चा छोटा है उसको बोल दिया गया कि तू छोटा है रहने दे हम कर लेंगे, वो बच्चा 80 साल का भी हो जाएगा, मतलब वो खुद भी दादा बन जाएगा या दादी बन जाएगी, वो ऐसा ही मानता रहेगा, वो जिम्मेदारी से भागता रहेगा।
0: हमने कई बार ऐसा देखा है कि जब ना उसको कहा जाता है तो किसी यश चीज के लिए कि आपको ये चीज खानी है या पीनी है, तब वो पहले ना कहेगा और फिर कहेगा यस जी मैं ये काम करूंगा, तो उसमें जो नेगेटिविटी है वो पहले ही हम आरोपित कर देते हैं। आपके कहने का तात्पर्य मेरे ख्याल में यही है। जी
1: यस तो वो नेगेटिविटी इतनी होती है ना कि फिर वो जो जब रियल लाइफ में आता है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं बहुत सारा पैम्परिंग वाला एटमोस्फियर दे देते हैं, या तो इतना वो मतलब इस तरह से एटमोस्फियर दे देते हैं जैसे तू कुछ वैलिड ही नहीं है, मतलब दो देते हैं, मतलब पैम्परिंग ही चाहिए और इस तरह से उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, तो उस तरह से हम नहीं देते हैं। हम या तो पैम्परिंग ही बहुत ज्यादा दे देते हैं या उसको कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल छोटी उम्र से भी बना देते हैं। अभी यहाँ पे दो स्टेज आएंगे, सोच की दुनिया में मैं बहुत ज्यादा देती हूँ प्रोग्रामिंग के ऊपर पार, क्योंकि मुझे इतना पता है कि ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे कलयुग में एक गिफ्ट बहुत अच्छी दी है और ये गिफ्ट ये है कि अगर हम प्रोग्रामिंग हुआ है ना तो रीप्रोग्रामिंग भी हो सकता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से मानती हूँ। और मैंने
0: वो किस तरह से हो सकता है, वो किस तरह से हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड करते हैं जब जिस एटमोसफेयर में हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम पलते बढ़ते हैं, तो रीप्रोग्रामिंग आप किस तरह से करेंगी। जैसे कंप्यूटर है तो उसमें कंप्यूटर की सारी चीजें जो थी वो हमारे मस्तिष्क में थी वो हमने निकाल के बाहर डाल दी। जैसे अपना मोबाइल है वो सारी चीजें हमने हमारे दिमाग में थी पर हमने उसको इस तरह से उसके सॉफ्टवेयर को डेवलप किया और वो सारी चीजें ना उस कागज पे उतारने की जगह हमने इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया कि वो हमारे लिए उपयोगी हो सके। तो आपने रीप्रोग्रामिंग की बात की, वो कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको करने से तो बड़ी क्रांति आ सकती है और बहुत सारी चीजें जो है वो हम जैसा चाहें वैसा हो सकती है, तो किस तरह से हो सकती है?
1: क्योंकि ये जो रीप्रोग्रामिंग जो होगा ना, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी तक जो इमोशनल फूल बनकर हम लोग जी रहे हैं ना, इसके ज्यादा हम प्रैक्टिकल कूल बनकर जी सकते हैं और लाइफ बहुत ईजी बन जाए, बहुत ईजी। और जितना पैसा चाहो, जितने रिलेशनशिप इश्यू है वो सोल्व हो सकते हैं, बॉडी एकदम से हेल्दी हो सकती है, पूरा रिग्रेट चला जाता है इंसान को। मतलब मेरे पास इतनी वो कहते हैं ना संजीवनी जड़ी बूटी है कि इंसान हर एक मोमेंट पे, मतलब हर एक मोमेंट पे वो खुश रह सकता है और जितना भी आयुष्य लेना चाहे इतना आयुष्य एकदम हेल्दी लाइफ जी सकता है,
0: यानी दुखी रहने का कोई कारण बचता ही नहीं।
1: यस, दुख का कोई कारण नहीं रहेगा, क्योंकि यही एक चीज है। और मैं बहुत अच्छे तरीके से ये मानती हूँ कि लाइव इन प्रेजेंस, अभी अभी का जो इरा चल रहा है या अभी कोई भी लोग होंगे ना, तो उनको आप गौर से देखिएगा, वो हो गए 24-25 साल के, लेकिन 15 साल का वक्त जो डेटा है या पिछले 2 साल का भी जो डेटा है ना, वो और अभी के प्रेजेंट सिचुएशन को मर्ज करके चलते हैं। पिछला जो डेटा, रॉन्ग एक्सपीरियंस, रॉन्ग डेटा, रॉन्ग पर्सन मिल गए ना, तो अभी कोई भी एक्सपीरियंस नया करने से सबसे पहले डरते हैं। अगर किसी ने धोखा दे दिया तो नए इंसानों पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर कहीं पे मनी इश्यू आ गए तो वो ज्यादा मनी लेने से भी डरते हैं, देने से भी डरते हैं कि कहीं फंस गए तो। अपने को तो जो भी सही है बिजनेस,
0: बिल्कुल सही, इसी में जीते हैं, इसी जीवन में। हाँ, इसी वह पोह जिसको कहें, असमंजस की स्थिति हो जाती है ऐसे में। बहुत सही कह रही हैं आप।
1: दूसरा क्या होता है कि समाज में ऐसी बता दी गई है कि देखो इतने इतने फैक्टर है, इतने इतने में, जैसे बच्चा बड़ा हुआ, जॉब लगी, शादी की, उनके बच्चे आए, अच्छी तरह से कर रहे हैं, साल में 2-4 बार ट्रिप लेके आते हैं, अच्छे होटल में खाना खाते हैं, बस यही इनकी लाइफ। समाज को कुछ नहीं देते, और समाज को अगर दे भी देते हैं तो इस तरह से देते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक्सेस था इसलिए मैंने दिया, ये मेरा पार्ट है, मुझे करना चाहिए, मैं समाज से इतना ले रहा हूँ और यही समाज में मैं जीने वाला हूँ, मेरी साथ पीढ़ियां भी यहाँ पे आने वाली है। तो इस तरह से नहीं होता है। जैसे दान पुण्य हमेशा फियर में होता है, जिसका फियर सबसे ज्यादा होगा उसका डोनेशन सबसे ज्यादा है, ये चीज मैंने बहुत अच्छे तरीके से देख ली है।
0: बहुत सही कहा आपने। हम उस बात को और स्पष्ट करना चाहेंगे, जैसे इमोशनल फूल और कूल वाली बात आपने कही, उसको आप जरा और व्यापक विस्तार से कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, समझाने वाली बात में, यानी हर आदमी उसको समझ सके।
1: यस, इमोशनली फूल में कैसा होता है कि नॉर्मली हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स देखते हैं, ठीक है। दूसरा है कि कहाँ पे हाँ बोलना है, कहाँ पे ना बोलना है, वो हमें नहीं पता है होता है। तो कहीं पे हम ऐसे फंस जाते हैं ना, तो वो सिचुएशन ले तो लेते हैं लेकिन उसको न्यायपूर्वक अच्छे तरीके से निभा नहीं सकते। तीसरी बात होती है कि कोई भी आकर हमारे बारे में कोई भी स्टेटमेंट बोल के जाता है, वो चीज अपन मतलब इतना गांठ बांध के रख लेते हैं ना, अरे ये कैसे बोल गया, उन्होंने, मेरे कोई गलती नहीं थी, मेरा कसूर नहीं था, मैंने तो अच्छा करने गया, ये सब कुछ।
0: अगर उस वक्त इसने इस तरह से कहा या ये बात कही, उस चीज को प्रिजर्व करके अपने दिमाग में प्रिजर्व करके उसको जो है वो रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर में हम सेव करते हैं, उसी तरह उस बात को सेव कर लेते हैं। तो वो
1: वो होते नहीं है, जैसे बोलते हैं कि अरे यार तेरे के ऊपर ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, अरे ये तेरे बाल कितने बेकार है। अगर वो इंसान प्रैक्टिकल कूल होगा, वो अपना सेल्फ लव करता होगा ना, उसके बाल कैसे भी है, उसने किसने भी वो शर्ट पे, वो इतना अपने आजू बाजू है ना एक प्रोटेक्टिव शील्ड रखेगा, तुमको जो बोलना है, तुमको जो एक्शन लेना है, मेरे मन की स्थिति मेरे काबू में है, मुझे कितना सुखी होना है, कितना दुखी होना है, वो सिर्फ मैं ही तैयार करूंगा।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत ही बेहतरीन बात, बहुत बेहतरीन बात। कई बार बहुत अच्छा लग रहा होता है तो लोग जलते हुए भी ऐसे कह देते हैं कि अरे तुम कैसे लग रहे हो, अजीब से कपड़े पहने हैं, क्या है, जबकि वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और वो कहने वाले को अच्छा नहीं लग रहा होता है, जो कह रहा है उसको अच्छा नहीं लग रहा है, और वो जो है वो संवेदना ट्रांसफर करता है, अपनी जो नेगेटिविटी है वो उसको सामने वाले को ट्रांसफर करता है। और ऐसी स्थिति में
1: इंसान का
0: बिल्कुल
1: इंसान का एक स्वभाव ऐसा है, अगर मैं आपके बारे में 2 शब्द अच्छा बोलूंगी ना तो आप जल्दी बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं कहूंगी अरे भैया वो जो शर्मा जी थे ना, उन्होंने आपके बारे में ये बोला, शर्मा जी ने बोला होगा या नहीं बोला होगा,
0: आप किस वे में बोला होगा, किस वे में बोला होगा, किस परिस्थिति में बोला होगा, उन सब चीजों को नकार दिया जाएगा और उस बात को कि अरे मेरे बारे में ये बोला उसने और हमने उसके साथ दूरी बना ली, डिस्टेंस बना ली। तो ये इमोशनल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात।
1: दूसरा एक साइंटिफिक वे में आपको बता देती हूँ, साइंटिफिक वे में ये आप बहुत अच्छे तरीके से डीपली समझ पाओगे। आप कोई भी विचार आता है आपका, 17 सेकंड तक आप होल्ड करो, कि जैसे मुझे विचार आया कि आज मैं है ना, तो आज मैं खुश रहूंगा, ठीक है। तो खुश रहने के लिए आपको कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज की जरूरत नहीं है, खुशी हमारे अंदर होती है। जैसे आज आप और मैं ऐसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, मेरे नीचे मैं देख रही हूँ बालकनों में कुछ बच्चे खेल रहे हैं इतनी धूप में भी, तो वो भी आराम से खेल रहे हैं। तो सुकून जो होता है ना, सुकून होता है या जो शांति होती है, या जो ओरिजिनल पी, मतलब किस तरह से कहे कि जो हमारा
0: ओरिजिनल पीस, मन की शांति जो, जी
1: ओरिजिनल, यस यस, तो वो जो होता है वो डिपेंड हमारे मन के ऊपर करता है। तो कोई भी थॉट को आपने पकड़ लिया, अभी वो 17 सेकंड तक होल्ड कर लेते हैं ना, तो वो ही थॉट हमारा 100% आगे बढ़ता है, और फिर 1000% बढ़ता है, फिर 10000% बढ़ता है। तो इस तरह से हमारे आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। अभी आप कभी भी देखना कि आप बहुत ही अच्छे कोई साधु संत है, भगवंत है, उनके पास जाओगे, या कभी मंदिर मस्जिद कहीं पे भी गुरुद्वारे में आप जाओगे, तो वहां का ओरा कैसा होता है कि वहां पे सब एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव। जैसे हम कहते हैं ना कि घर में तो मंदिर में पूजा करके मजा नहीं आता है, मैं इस मंदिर में जाती हूँ या जाता हूँ ना तो मुझे सुकून लगता है
0: जी।
1: तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ, मतलब अभी आप है, आप अपने बेटे को ऐसा बोल दो कि बेटा तू बहुत अच्छा बेटा है, आपके घर वाले बोल दे, 3, 4, 5, 10 लोग बोल दे, तो समझो कि ये विचारों का समूह बन जाएगा, और जो समूह बनेगा तो आपको पता ही है कि ये बच्चा अगर नॉटी बॉय भी है ना, वो भी गुड बॉय में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये वाइब्रेशन और ये थॉट प्रोसेस जो होती है ना, उसका एक जादू होता है।
0: बहुत ही जादू मंत्र आपने बताया है, बेहतरीन मंत्र है। और हम श्रोताओं को बता दें कि हमारे साथ हैं माइंड थेरेपिस्ट और विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट, मन के विज्ञान की स्पेशलिस्ट कृति मेहता, अहमदाबाद गुजरात से वेलकम कर रहे हैं आपकी बातों का और जीवन के दर्शन का प्रोग्राम सोच की दुनिया में। जी कृति, वेलकम है फिर से।
1: यस, नमस्ते। सोच की दुनिया, सोच की दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि जहाँ पे हम लिमिटलेस हैप्पीनेस, लिमिटलेस पीस, लिमिटलेस गुड हेल्थ, सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें इतना सोचना है कि हम कहाँ तक सोच सकते हैं, हमारी जिंदगी हम कितनी व्यापक बनाकर उनको रियल लाइफ, मतलब हमारे पास एक ही जीवन अगर मिला हुआ है मनुष्य योनि में, तो उनको किस अच्छी तरीके से जिए कि लास्ट में हम भी अगर जब जाए ना इस दुनिया से, तो इतना पता चले कि यार मजा आ गया, सच में मैंने एक अच्छी हीरो या अच्छी हीरोइन की तरह मैंने जिंदगी जी। तो ये है हमारी सोच की दुनिया।
0: बिल्कुल, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। और हमने हमने उड़ने का मन बनाया तभी जो है हवाई जहाज बने, एरोप्लेन्स बने, रॉकेट्स बने, और जिसने इस लोक से दूसरे लोक चंद्रलोक जाने का सोचा तो वो चंद्रलोक पहुंचे, मंगल लोक पहुंचे, और न जाने किन किन लोगों में जाने की अभी भी अपनी सोच को जारी रखे हुए, अपनी इच्छा को, अपनी क्रिया को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारा सोच जो है, हमारा जो सोचने का दृष्टिकोण है वो व्यापक होना चाहिए, और उसी से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्या हम सही कह रहे हैं?
1: यस यस, एब्सोल्युटली। सोच की जो हमारी व्यापकता है, जो यहाँ पे मैं साइंटिफिकली, क्योंकि मैं बेसिकली जो माइंड थेरापिस्ट हूँ, तो मैं लोगों की पर्सनालिटी, लोगों की बिलीफ सिस्टम और उन लोगों की जो भी अभी तक की जर्नी रही है, तो उसमें मैं लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग का काम करती हूँ। और जो भी अभी तक आप लोगों ने जितनी भी जिंदगी जी, चलो सही बात है, अच्छी जी बुरी जी जो भी है, लेकिन आगे अगर आप अच्छी और पीसफुल लाइफ चाहते हो, तो मैं इतना ही कहूंगी कि ऑलवेज अपने विचारों पे काबू रखो, और अपने विचारों को, अपनी जो भी सोच है ना, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल बने। कभी भी कोई भी सोच आ जाए और हम उसको स्वीकार कर ले, और वही स्वीकार करके, वही अगर वो नेगेटिव सोच है, तो नेगेटिव सोच को हम बार बार रिपीट रिपीट रिपीट करते रहेंगे, तो ऑफकोर्स हमारी लाइफ भी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन हमारे कंफर्ट जोन से आगे निकलकर हम सोचते हैं कि नहीं, आज तो मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं आज अपने बारे में या किसी और के बारे में मैं एक भी सोच नेगेटिव नहीं लाऊंगा। अगर कोई आता है तो उनको मैं कहूंगा कि यस, आज मैंने अपने आप से ये वादा किया हुआ है, तो मैं आज कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा या गलत सोचूंगा नहीं, तो आज के दिन के लिए मुझे माफ करें।
0: बहुत सही बात है कि खुद से प्रॉमिस करना एक ये एक बहुत बड़ी चीज है इस जो आपने बताई है, इस बात से निकल के आई कि आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि मैं आज ये कुछ भी नेगेटिव सोचूंगा नहीं, ना करूंगा। करने की तो बात ही दूर है, सोचूंगा ही नहीं, तो सोचूंगा नहीं तो मैं करूंगा नहीं। बट क्योंकि हमने ऐसा भी व्यावहारिक दृष्टि में हम देखते हैं, देखने को मिलता है कि कुछ लोगों की सोच बहुत लिमिटेड होती है और कुछ की बहुत व्यापक होती है। तो अधिकतर लोगों की जो लिमिटेड सोच होती है वही क्यों होती है घर में, परिवार में, अपने आसपास के जो लोग हैं, अपने बच्चों में, या उससे आगे बढ़ के कुछ नहीं होता। बहुत सारे कम लोग होते हैं जो पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो भी बोलते हैं वो सबके लिए बोलते हैं कि ये सबके लिए यूनिवर्सल बात है। तो इस तरह की जो ये चीज क्यों नहीं है, ये हमें कई बार हमारे दिमाग में आती है कि ऐसा क्यों नहीं है कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही ये क्यों नहीं सोच रहा। ये सिर्फ अपने तक सीमित है, कुछ लोग सिर्फ अपने तक है, कुछ अपने माँ बाप तक है, कुछ अपने बच्चों तक है, कुछ अपने परिवार तक है, कुछ अपने समाज तक है, कुछ जो हैं वो अपनी कम्युनिटी जिसको कहें या समुदाय कहें उसके सराउंडिंग सोचते हैं। यानी एक इंसानी सोच और एक ऐसी सोच जो पूरे दुनिया के लिए, यूनिवर्स के लिए सच हो, अच्छी हो, पॉजिटिव हो, ऐसी सोच डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो हम बुद्धिवादी हैं, मानवतावादी हैं या यथार्थवादी हैं, उनको क्या करना होगा?
1: यस, ये बहुत अच्छा है। देखिए, मैं सबसे पहला इतना कहना चाहूंगी कि हम जो है ना, हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि मतलब गुजरातियों में एक कहावत है कि जात परिवर्तन द्वारा जगत परिवर्तन, मतलब कि खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो, जगत पूरा तुम्हारा सराउंडिंग जो वर्ल्ड होगा ना वो अपने आप ही चेंज होता जाएगा।
0: वाह, बहुत खूबसूरत तो, बात, यानी अपने से शुरुआत करनी होगी।
1: यस यस, क्योंकि देखो मैंने जो भी मैनिफेस्ट किया है, मेरे आसपास अच्छे बुरे, मेरे अनुभव अच्छे बुरे है या मेरी लाइफ अच्छी बुरी है, तो वो मेरी सोच के ऊपर आता रहते हैं। और रही बात आपने जिन्होंने बोला कि कुछ समुदाय तक है, अभी तो कम्युनिटी वाला तो बहुत चल रहा है, तो जो सोचते हैं ये कितना करते हैं, उनको एक ही बात याद रखनी चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना रखते हैं। और जो भी ये चीला चालू जो देशवादी और इस तरह से सोच रखते हैं, उनको मैं एक ही उदाहरण देना चाहती हूँ कि आप कितने भी मतलब पीसेस कर लो, कितने भी कुछ कर लो, लेकिन हम सबके बीच में जो आत्मा है वो तो हमारे सबके बीच में एक ही है, उसको कैसे अलग कर पाओगे?
0: यूनिवर्स तो एक, बहुत ही खूबसूरत बात, हमारे बीच, हमारे ऊपर जो आत्मा है वो तो एक ही, जो जिसकी छाया है, जिसका जिसकी जिसका साया है हमारे ऊपर, वो तो एक ही है। बहुत ही खूबसूरत बात।
1: तो यूनिवर्स है तो यूनिवर्स कभी भी देखता नहीं है कि ये मेरा बच्चा छोटा है या बड़ा है, मोटा है या पतला है, गोरा है काला है, कौन सी कम्युनिटी से है, कौन से देश से है। यूनिवर्स एक ही भाषा जानता है और वो यूनिवर्स यही एक भाषा जानता है, वो है प्यार की भाषा, वो है पॉजिटिविटी की भाषा। और जो लोग बोलते हैं ना कि इस दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स है, हाँ मैं मानती हूँ पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी के पास इतनी ताकत है कि जहां जहां पे पॉजिटिविटी नहीं होती है ना वहां ही नेगेटिविटी होती है। बाकी पूरा सर्वत्र जो राज्य है ना वो तो पॉजिटिविटी का ही है, क्योंकि ऐसे ही राम कृष्ण भगवान बुद्ध और इतने सारे देवी देवता हमारे यहाँ नहीं हो गए हैं। और इतनी सारी आज भी इतनी सारी एनजीओ चलती है, आज भी इतने सारे धर्म भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपको मुझे कहीं ना कहीं पे वो डिवाइन पावर चला रहा है। हमारी धड़कने देखो, हमारा पूरा बॉडी देखो, तो किस तरह से चला रहा है, ये तो रोबोट भी बना लिया है, लेकिन किस तरह से हार्ट बीट किस तरह से वर्क करती है वो आज दिन तक साइंटिस्ट नहीं कर पाए किस तरह से। तो ये जो ब्रीदिंग सिस्टम है, तो वो ब्रीदिंग सिस्टम किसकी देन है? यूनिवर्स की देन है। और ये यूनिवर्स चलता है हमारी पॉजिटिव सोच के ऊपर। हम जैसा मांगेंगे ना, हम सबके पास एक अलादीन का चिराग है और ये अलादीन का चिराग है हमारा यूनिवर्स। और हम मांगेंगे ना कि अरे भाई आज तो मैं दुखी हूँ, चलो एक काम कर मैं तो आज दुखी हूँ, तो यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। मैं आज बोलूंगी कि नहीं आज तो मुझे बहुत रॉक करना है, आज तो मुझे बहुत अच्छा अच्छा पार्टी करना है, बहुत अच्छा खाना खाना है, मैं बहुत खुश हूँ, यूनिवर्स बोल देगा तथास्तु। आप जिस तरह से सोच बिलीव करोगे कि वो अल्लाह दिन का चिराग है, वो तुरंत ही बोलेगा हुकुम करो मेरे आका। और हम जिस तरह से हुकुम करते हैं कि चलो आज मेरे को दुखी रहना है, चलो हो गया आका, नहीं हुआ आज मुझे खुश होना है, हो गया आका, तो यही बोलेंगे। तो अल्लाह दिन का चिराग है तो उसको किस तरह से यूज करो वो तो फिर हमारे ही हाथ में होना चाहिए ना। हम क्यों किसी को अपना स्टीयरिंग देकर, जिस तरह से मिस्टर खान बोलते हैं, तो हमारे लाइफ के ऊपर कोई भी बैठ जाएगा तो फिर वो अपने हिसाब से गाड़ी चलाने लगेगा और हम पूरी जिंदगी ऐसे ही चलते रहेंगे किसी के कहने पे।
0: तो जैसा सोच वैसी दुनिया, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में रही कृतिका मेहता, माइंड थेरेपिस्ट और रेकी विशेषज्ञ भी हैं आप, तो बहुत सारी बातें हमने इस एपिसोड में की। कंक्लूड कैसे करेंगी आप इसको, सोच की दुनिया को, अपने शब्दों में?
1: बस सोच की दुनिया में मैं इतना ही छोटे से वाक्य में कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आप सोच लेते हो उसी तरह से आपकी दुनिया बन जाती है। और जो विचार आपके अंदर पड़ा हुआ है एक बार उनको ढूंढो और एक बार सच में एक बार मिरर के सामने खड़े होकर बोलो कि क्या यही लाइफ या यही सब कुछ मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। अगर सच में अंदर से एक आवाज आए ना नहीं, तो तुरंत अपनी सोच बदल डालो और ये सोच अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, जो भी हुआ है किसी और के कारण या परिवार के कारण या सोसाइटी या किसी और के कारण नहीं हुआ है, सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और अभी मैं इसको मैजिकली चेंज करूंगा या करूंगी। ये चीज अगर आपने ठान ली ना, तो अपने अंदर भी वही राम कृष्ण बुद्ध महावीर बैठे हुए हैं, वो तुरंत उन सबको काम पे लग जाना पड़ेगा क्योंकि बॉस यहाँ पे इसने ठान लिया है कि अभी तो ये हमारे जैसा बनकर रहेगा, ये बंदा या बंदी, तो उसको तो फिर काम पे लग जाना पड़ेगा।
0: बहुत ही खूब बात कही आपने कि दूसरे पे दोषारोपण करना छोड़ के खुद पे आ जाएं और जैसा आप सोचेंगे आपके आसपास की दुनिया, आपकी दुनिया वैसी ही होगी। बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न फिर भी रह जाते हैं, अगले एपिसोड में हम इन सबको शामिल करेंगे और इस प्रोग्राम को हम क्रमशः जारी रखेंगे। और हमारे साथ रहेंगी माइंड थेरेपिस्ट और खास विशेषज्ञ कृतिका मेहता अहमदाबाद से। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत आभार कृतिका, आपने इतना अच्छा व्याख्यान दिया इस प्रोग्राम के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के बहुत सारे एपिसोड होंगे और आप सुनेंगे तो सच में आपको मजा आएगा। पूरी दुनिया से हटके जिस तकनीकी युग में हम जी रहे हैं, उन सबको हमने समेटा है, पूरे यूनिवर्स को इस प्रोग्राम में हमने लिया है। और आप भी सुनेंगे तो फिर सुनना बंद नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, आप सुनते ही जाएंगे क्योंकि इसमें इतने इंटरेस्टिंग पहलू आने वाले हैं। तो आज का पहला एपिसोड सोच की दुनिया का, हमारे साथ, हमारे संग इस प्रोग्राम में हम दोनों आपके लिए लेके आए कुछ खास बातें जो हमारे जीवन शैली से संबद्ध है और हमारे जीवन दर्शन को दर्शाती हैं।

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हमारे संग है, हमारे साथ हैं नरेंद्र सिंह गोहिल। वेलकम है नरेंद्र जी, और हमारे श्रोता आपके गीत सुनते हैं बराबर और जानते हैं आपका नाम जयपुर रेडियो के सिंगर के रूप में। आइए सुनते हैं आपका पहला गीत और इस प्रोग्राम को देते हैं एक स्पीड।

है कौन है सच्चा कौन है झूठा, हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी, जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। दो जासूस करे महसूस के दुनिया

0: सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, कौन है सच्चा कौन है झूठा हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी खराब है।
1: कह देना बहुत आसान है कि दुनिया बहुत खराब है, पर दो जासूस महसूस करते हैं तो कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। और ये खूबसूरत गीत गा रहे थे नरेंद्र सिंह गोहिल गांधीनगर गुजरात से, और आपका साथ दे रहे थे आपके सहगायक अजय पाठक। आप सुन रहे हैं वो गीत जो दो गाने हैं और मुकेश जी ने जिन गीतों को गाया है। अगले गीत की ओर चलते हैं और देखते हैं नरेंद्र सिंह गोहिल क्या लेके आए हैं, क्या अफसाना है, क्या कहानी है, क्या फसाना है।

हजार कागज, मुकेश जी के वो गीत जिन्हें दो गानों के रूप में आप सुनते हैं, और उन्हीं गीतों को, उन्हीं गीतों का एक संकलन लेके आए हैं नरेंद्र सिंह गोहिल, हमारे आज के कलाकार। आपकी आवाज, आपकी

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। और इस गीत में आपका साथ दे रही थी, यानी नरेंद्र सिंह गोहिल का साथ दे रही थी, सीमा कदासिया। आइए सुनते हैं युगल गीत माला का अगला सॉन्ग।

ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसी दुनिया में हैं जिसका नाम है जयपुर रेडियो वर्ल्ड और जिसे सुनती है पूरी दुनिया। नरेंद्र सिंह गोहिल का साथ दे रही थी इस गीत में हेमांगिनी, आपकी आवाज आपकी पहचान।

सुन रहे हैं वो गीत जिन गीतों को आवाज दी थी मुकेश जी ने, और आज वो आवाज नरेंद्र सिंह गोहिल दे रहे हैं अपने को सिंगर्स के साथ।

तुम्ही नजारों में, और ये दो गाना गा रहे थे तमन्ना और नरेंद्र सिंह गोहिल। और आइए भावना के साथ नरेंद्र सिंह गोहिल, मुकेश जी का ये खूबसूरत गीत भावना अवस्थी और नरेंद्र सिंह गोहिल लेके आए हैं ये सुरीला सॉन्ग।

ये प्यार का अफसाना सुना रहे थे अपने गीत से नरेंद्र सिंह गोहिल और भावना अवस्थी। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गीत। इस गीत में साथ दे रही हैं सीमा

तुम प्यार से प्यारे हो और प्यार से प्यारा है जयपुर रेडियो वर्ल्ड, जहाँ से सुनते हैं आप अपने सुरीले सॉन्ग। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच, और आपने सुना अभी नरेंद्र सिंह गोहिल के साथ सीमा कदासिया का युगल स्वर। इसी के साथ ये प्रोग्राम यहीं तक। बहुत धन्यवाद कहेंगे, आभार कहेंगे नरेंद्र सिंह गोहिल को कि आप इतने सुरीले सॉन्ग लेके इस मंच पर आए। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। सुनते रहें जब रेडियो, बार बार आपकी आवाज़ आपकी पहचान।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। मैं हूँ आरजे प्रीत और लेकर के आई हूँ एक म्यूजिकल शो जिसका नाम है मेरी प्रीत अमर कर दो। आपकी आवाज आपकी पहचान में हमारे साथ हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट श्री ओपी शर्मा जी।
1: आज हम स्वागत करते हैं अपने नए मेहमान का जिनका नाम है आशुतोष तिवारी जो सिंगरौली मध्य प्रदेश से हैं। बहुत स्वागत है आशुतोष आपका हमारे म्यूजिकल शो में। कैसे हैं आप?
2: नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ।
1: ये बताइए कि जयपुर रेडियो के मंच पे ये पहली बार आप आए हैं या पहले भी आ चुके हैं?
2: ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जयपुर रेडियो के मंच में अभी पहली बार ही आ रहा हूँ। गाने तो कई बार मेरे

0: हो चुके हैं
1: जी, लेकिन आपका इंटरव्यू फर्स्ट टाइम है, पहली
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जयपुर रेडियो के लिसनर्स को अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा, आप क्या करते हैं, आपकी फैमिली में कौन है?
0: जी जरूर, मैं आशुतोष तिवारी सिंगरौली मध्य प्रदेश से हूँ। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मेरा एक व्यवसाय है दवा का, और मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी है नीलम, दो बच्चे हैं और वाइफ भी मेरी जॉब में है।
2: तो बचपन से ही गाने का शौक था मुझे, बस जब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला म्यूजिकल प्लेटफॉर्म, तो मैं उसमें गाने लग गया। धीरे धीरे कुछ कार्यक्रम भी अटेंड करने लग गए हैं, म्यूजिकल शो वगैरह, इस तरीके से जर्नी चल।
1: जी जी जी, नहीं तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि आपको म्यूजिक तो पसंद था, फिर ये दवा की व्यवसाय से आप कैसे जुड़ गए? आप मुझसे इस टाइम बता रहे हैं ना।
2: होता क्या है कि ये देखिए, ये हमारा एक शौक होता है, लेकिन आगे यदि हमें बढ़ना है करियर में, तो मैंने पढ़ाई की थी बी फार्मा नागपुर से, उसके बाद मैं जॉब में था कुछ दिन, फिर मेरी श्रीमती जी है यहाँ पे कोल इंडिया में डाइटिशियन के पोस्ट में, तो हम दोनों अलग अलग थे शादी के बाद, तो फिर मैंने अपना व्यवसाय स्टार्ट किया।
1: तो मतलब कि फिर संगीत से जुड़ा हुआ तो होता चला गया है ना।
0: हाँ बिल्कुल, संगीत तो हमेशा सोल है हमारी, वो तो उससे हम जुड़े हैं बचपन से ही, और अब तो और भी कुछ ज्यादा ही फैसिनेट हो गए हैं।
1: हाँ जी, जयपुर रेडियो के सभी लिस्टर्स सुन रहे हैं आशुतोष जी को, जो कि सिंगरौली मध्य प्रदेश से हैं। देखिए जयपुर रेडियो के सभी लिस्टर्स को मालूम है कि हमारे इस शो में जो आते हैं मेहमान, वो बहुत अच्छे सिंगर्स होते हैं, और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम नए नए सिंगर्स को आमंत्रित करें और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से उनकी आवाज दूर दूर तक जाए। और आशुतोष जी, आज आपको देश दुनिया के कोने कोने में सुना जा रहा है, तो पहले तो बताइए आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? बातें तो हम बहुत करेंगे, पर फेवरेट सिंगर के बारे में तो जान ले।
0: बिल्कुल फिर जी, वैसे तो कहा जाए तो हमारी जो बॉलीवुड की दुनिया है उसमें एक से एक सिंगर कलाकार हैं और आते जा रहे हैं, तो ये कह पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है कि मेरे फेवरेट सिंगर कौन है। बचपन से हमने रफी साहब को, मुकेश साहब को सुना है ना, किशोर जी को सुनते हुए बड़े हुए, इधर फिर बाद में अभिजीत, सोनू निगम, कुमार सानू, ये सब हुए, तो मतलब कहना तो बड़ा असंभव है, सभी अच्छे लगते हैं।
1: वही मैं बोलना चाह रही थी कि सभी सिंगर फेवरेट हैं, है ना। वैसे तो सच बात है कि सिंगर्स के लिए कोई ऐसा खास पसंद नहीं होता, लेकिन ये है कि हाँ कभी कभी होता है ना कि किसी के दिमाग में एक सिंगर गूंजते रहते हैं बस, कि अरे मुकेश जी हैं या रफी जी हैं।
0: किशोर कुमार जैसे, उनके गाने मतलब सुनने के बाद दिल एकदम खुश हो जाता है, और जैसे अभी सावन का मौसम भी है तो एक गाना मुझे याद ही आ रहा है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, जयपुर रेडियो के सभी लिस्टर सुन रहे हैं आशुतोष तिवारी को, और चलिए पहले उनका पहला सॉन्ग सुनते हैं।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। देखिए सुन लिए, इतना मौसम, मतलब मौसम तो है ही बारिश का, और सॉन्ग इतना खूबसूरत है ना ये, कि बस समा बांध देता है सावन में, चार चांद लग जाते हैं और हमारे जो लिसनर्स है ना वो चाय और पकोड़े लेकर के बैठे हुए इस मौसम में और इस सॉन्ग का लुत्फ उठा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत पसंद आया होगा सॉन्ग, और आपकी सिंगिंग वाकई बहुत अच्छी है। तो चलिए हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप सिंगर है, आपका फार्मासिस्ट मतलब दवाइयों का बिजनेस है, राइट ना?
1: जी जी जी
0: इस बीच में आप टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन तो काफी बिजी होते हैं ना, उनका तो कोई टाइम ही नहीं होता है, जब भी चाहे तब तब तक काम चलता है।
1: ये मैनेज करना करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने यदि किसी शौक को रखा, और अब तो मैंने बताया कि काफी पैशन बिल्कुल हावी हो गया है संगीत के लिए, तो उठते जागते सोते जब भी खाली समय मिलता है तो बस ध्यान उधर ही जाता है। और बीच बीच में तो हम कार्यक्रम भी अटेंड करने जाते हैं, म्यूजिकल इवेंट, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है बिजनेस में, क्योंकि हमारे पास कोई छुट्टियां नहीं होती है, हमें मैनेज करना पड़ता है। यदि हमको अपने शौक को जारी रखना है और ये हमको अपने मूड को फ्रेश रखना है, तो जरूर हमें समय निकालना पड़ेगा उसके लिए।
0: घर परिवार का सहयोग मिलता है आपको, आपकी सिंगिंग
1: बिल्कुल
0: जब होती है
1: संभव
0: तो
1: ही नहीं है कि हम कुछ कर पाए ऐसा, तो सहयोग मिलता है,
0: हाँ
1: और हमारे शौक में भी कुछ कर्मचारी हैं।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें हमेशा सहयोग करते हैं। कभी भी मेरा इवेंट रहता है, मैंने पहले से प्री प्लांट बता देता हूँ कि मुझे ऐसा करना है, तो बराबर मुझे सबका सहयोग मिलता है, मेरे धर्म पत्नी का हमेशा सहयोग मिलता है, साथ मेरे गाती भी हैं लोकल प्रोग्राम में हमारे साथ, वो भी गाती हैं, तो एक
0: शिवा,
1: इंकरेजमेंट मिलता है। हाँ बिल्कुल
0: जब जब पति पत्नी दोनों गाते हैं तो फिर रुकावट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है ना,
1: बिल्कुल सही है, बिल्कुल
0: सही
1: बिल्कुल
0: है ना? तो चलिए
1: बिल्कुल
0: एक सॉन्ग और हो जाए इसी बात पर, लिसनर्स को सुनाइए।
1: बिल्कुल, बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं इस बॉलीवुड में, और मेरे अभी के जैसे कहा जाए 90s के फेवरेट सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य जी हैं,
0: जी
1: तो अभी मौसम भी इतना सुहाना है तो वो गाना मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है, मैं सुनाना चाहूंगा अपने लिसनर्स को।

0: हाँ, कितना सुंदर सॉन्ग है ये, और कितना मतलब सच में मेरा भी बहुत मतलब फेवरेट है ये, बहुत पसंद है मुझे ये सॉन्ग। और हमारे
1: बिल्कुल
0: जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स आशुतोष जी को सुन रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि उनको भी ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा होगा। सावन का महीना और सावन के गीत, मतलब सोने पे सुहागा है ना,
1: ये
0: क्योंकि
1: कॉम्बिनेशन मैं जरूर लेके चलना चाहता था अपने लिसनर्स के साथ में कि मेरे फेवरेट सिंगर और ये जो मौसम चल रहा है सावन का सुहाना मौसम, ये दोनों साथ में मेरे
0: बिल्कुल,
1: लिसनर अच्छे से एंजॉय कर सकें।
0: और वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आरजे प्रीत लेकर के आती है म्यूजिकल शो जिसका नाम है मेरी प्रीत अमर कटो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी बातों ही बातों में बताया था कि आप म्यूजिकल इवेंट्स में जाते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो कोई ऐसा वाक्या म्यूजिकल इवेंट में जो आपके साथ हुआ हो, कुछ जयपुर रेडियो के लिस्टर्स के साथ आप साझा करना चाहें, उन्हें बताना चाहें, कुछ है ऐसा कुछ?
1: जयपुर रेडियो के लिसनर्स जो है हमारे ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं मेरे ख्याल से, और कई बार हम लोग साथ में मिले भी हैं म्यूजिकल इवेंट में। और देखे जब हम स्टेज परफॉर्म्स करते हैं, वैसे तो करीब लगभग 5-6 सालों से मैं जा रहा हूं, लेकिन कई बार जब आपको रिकॉग्निशन मिलता है और एक बेस्ट सिंग मेमोरेबल ही रहेगा, तो एक ही ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि 3 गाने थे और बहुत ही अच्छा हुआ था मेरा परफॉर्मेंस और मुझे वहां पे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। तो वो वाक्या तो मैं बिल्कुल अपने साथ ही हमेशा लेके ही चलूंगा।
0: वाह, ये खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि प्रोफेशनल सिंगर तो है नहीं, आप शौक के लिए गाते
1: जी
0: हैं है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: शौक शौक में गाने पर जब कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलता है या कुछ ऐसा सुना, मतलब लोग तारीफ करते हैं, तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी होती है। तो मुझे बताइए।
1: हमें ऐसे जब छोटे छोटे इवेंट पे हम लोग जाते हैं, बिल्कुल आपने कहा कि हम लोग प्रोफेशनल सिंगर तो हैं नहीं, बट एक कोशिश रहती है कि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएं, और उस बीच में यदि हमें कोई रिकॉग्निशन मिलता है तो हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो डेफिनेटली
0: बिल्कुल
1: एक
0: आशुतोष
1: बूस्ट
0: जी,
1: मिलता
0: क्योंकि
1: है।
0: हाँ, जो देखिए जो प्रोफेशनल सिंगर नहीं होते ना, वो उनके अंदर सारी कलाएं होती हैं, वो सोनू निगम भी होते हैं, रफी सर भी होते हैं, मुकेश जी भी होते हैं, क्योंकि वो अपनी शौक के लिए कितना ऊपर तक सिंगर्स को लेके जाते हैं, उनके सॉन्ग्स को याद करते हैं, गाते हैं, और अपनी खुशी के लिए बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं उनको, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रोफेशनल सिंगर का तो काम होता है सिंगिंग करना, लेकिन जो मतलब आप जैसे सिंगर हैं, जो प्रोफेशनल नहीं है सिंगर, अपनी खुशी के लिए गाते हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जयपुर रेडियो के सभी लिस्टर्स सुन रहे हैं आशुतोष तिवारी जी को, जो कि मध्य प्रदेश से हैं,
1: जी
0: आपके शहर का नाम सिंगरौली।
1: सिंगरौली मध्य प्रदेश, ऊर्जा धानी कहा जाता है इसे, कैपिटल ऑफ एनर्जी।
0: हाँ, मैं वही क्वेश्चन में आ रही थी कि ये बताइए मुझे कि किस लिए प्रसिद्ध है आपका सिटी।
1: ये माइंस के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे माइंस भी है, कोल इंडिया की माइंस है यहाँ पे। और वैसे सिंगरौली का नाम मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, श्रृंगी ऋषि थे, उनकी तपस्थली कही जाती है, तो उनके नाम से
0: जी
1: पड़ा है सिंगरौली का नाम। और यहाँ पे एनटीपीसी के पावर प्लांट हैं और कुछ प्राइवेट पावर प्लांट हैं, करीब लगभग 7 पावर प्लांट हैं यहाँ पे, तो
0: अच्छा,
1: इसलिए इंडिया के लगभग 30% इलेक्ट्रिसिटी यहीं से प्रोड्यूस होती है, इसलिए प्रसिद्ध है
0: मतलब
1: सिंगरौली।
0: कि घूमने वाली जगह है, या फिर हमारे जयपुर रेडियो के लिस्टर्स को आमंत्रित करेंगे घूमने के लिए कि नहीं?
1: बिल्कुल बिल्कुल हम तो चाहेंगे, लेकिन बस यही है, एक छोटा सा टाउन है, वाराणसी से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, और पहाड़ियां यहाँ पे बन गई हैं, कोल माइंस का जो भी निकलता है वो भी वगैरह, तो उससे यहाँ पे पहाड़ बन गए। बाकी काफी खूबसूरत है, छोटा सा शहर है, तो घूम सकते हैं, एक आध दो दिन के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत वैसा तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन कभी आएंगे जरूर अच्छा लगेगा, लोगों को यहाँ नई नई चीजें देखने को मिलेंगी।
0: बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई सिंगरौली के बारे में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जयपुर रेडियो के सभी लिस्टर्स सुन रहे हैं ध्यान से, और वो तपोभूमि है तो कह सकते हैं एक बार जाया जा सकता है वहां, छोटा टाउन है तो क्या हुआ, लेकिन घूम सकते हैं, है ना आशुतोष
1: बिल्कुल
0: जी?
1: बिल्कुल प्रीत जी, हमने एक म्यूजिकल इवेंट भी किया था यहाँ पे
0: ओके, हाँ
1: पैन इंडिया से, तो
0: अच्छा,
1: घूम के भी गए हैं यहाँ पे। हाँ तो हम लोग करते रहते हैं बीच बीच में, ये साल में एक बार एनुअल
0: हाँ
1: मीट होती है यहाँ पे।
0: अच्छा, तो मतलब कि इस मुलाकात हो जाती है काफी पुराने लोगों से जो जान पहचान के हैं और
1: जी
0: सिंगिंग से जुड़े हुए
1: जी
0: हैं ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स सुन रहे हैं मेरी प्रीत अमर कर दो, मैं हूँ आरजे प्रीत, और हमारे आज के मेहमान कलाकार आशुतोष जी। आशुतोष जी, अब लिसनर्स इंतजार कर रहे हैं कि सावन के महीने में जो सॉन्ग्स वो सुन रहे हैं ना, इंजॉय कर रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू करते हुए सॉन्ग और हो जाए।
1: बिल्कुल, और ये गाना है जो ये हमारे एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब का है, क्योंकि हम लोग बचपन से उनके गानों को सुन के जो मन में तरंग बजती है और उनके गाने जो एक अलग स्टाइल होती है, तो मुझे हमेशा बचपन से ही पसंद थे एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब। और उनका एक गाना है, एक मूवी आई थी साजन,

0: जो कभी हम मिले तो बहुत प्यारा सॉन्ग और ये बहुत फेमस सॉन्ग है। और मुझे लगता है कि जयपुर रेडियो के जितने भी लिस्टर्स है ना, जो आपको अपने देश से, विदेश से, दुनिया के कोने कोने से सुन रहे हैं ना, इंजॉय करा है उन्होंने ये सॉन्ग। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग और बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग। और मुझे लगता है एक छोटे से बच्चे से लेकर के एक मतलब सभी जानते हैं, कोई किसी से छूता नहीं है ये सॉन्ग। तो बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुनाया आपने, बहुत अच्छा लगा। अब आप ये बताइए, जयपुर रेडियो के लिस्टर्स के साथ कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ अपनी कोई मोमेंट शेयर करना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, जयपुर रेडियो के लिसनर्स तो हमारे हमेशा ही जयपुर रेडियो के साथ जुड़े हैं, और पूरे पैन इंडिया और पूरे देश विदेश से आजकल जयपुर रेडियो को हमारे सुना जा रहा है। मैं भी लगभग 3 सालों से लिसनर हूँ जयपुर रेडियो का, तो हमें तो
0: वाह,
1: एक से एक पूरे सिंगर सभी सुनने के मिलते हैं। मेरे भी कुछ गीत पहले बजे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जयपुर रेडियो में जब आप जैसे हमारे आरजे जो कोने कोने से, देश से और विदेश से खोज के लाए जाते हैं हमारे जैसे सिंगर को, और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हम बहुत आभारी हैं जयपुर रेडियो के, और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही नए नए कलाकारों को आप मौका देते रहिए।
0: जी बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने लिस्टर्स को नए नए सिंगर से मिलवाते रहें, उनके बारे में जानकारी मिलती रहे, उनके सिटी के बारे में जानकारी मिलती रहे, एक इंटरेस्ट बना रहता है हमारे लिस्टर्स का। और हमारे लिस्टर्स जानते हैं कि जयपुर रेडियो हर जगह सुना जाता है, तो आपकी आवाज आज हर जगह जा रही है। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी?
1: बस मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप जो जयपुर रेडियो के साथ ये सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जो भी सिंगर हैं जयपुर रेडियो से जुड़िए और अपनी कला को आगे निखारिए, और बस संगीत है, संगीत का आनंद लेते रहिए। संगीत से बढ़ के शायद ही दुनिया में कोई माइंड बूस्टर हो सकता है आपके लिए।
0: आजकल के टेंशन भरे माहौल में संगीत वाकई में बूस्टर का काम करता है। और इसीलिए तो एक होता है ना, बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके सुकून चाहिए तो संगीत सुनिए, लाइट्स ऑफ करिए, कमरे में एकांत में बैठ जाइए और संगीत सुनिए, आपके सारी टेंशन दूर, सारी प्रॉब्लम्स दूर, है ना आशुतोष जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आपने जैसे बोला ना कि एक लाइट बंद कीजिए और सुकून के साथ जो गीत का आनंद लीजिए। एक गाना मुझे बहुत ही प्यारा केके जी का याद आ रहा है,
0: जी
1: बहुत ही शानदार
0: बिल्कुल,
1: गाना है,
0: सुनाइए सुनाइए, हमारे लिसनर्स
1: तो
0: इंतजार
1: मुझे
0: कर
1: ऐसा
0: रहे
1: लग रहा
0: हैं।
1: है कि हमारे सभी लिसनर्स बहुत ही पसंद करते होंगे। आप सुनिए इस गाने को, आप खो जाएंगे इस गाने में।
0: अरे

हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट श्री ओपी शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। सुनते रहिए जयपुर रेडियो, जयपुर रेडियो को रेटिंग देना ना भूलें, जयपुर रेडियो पर ऐप पे कमेंट देना ना भूलें, और ये म्यूजिकल शो चलता रहेगा और ये कारवां ऐसे ही काफिला बढ़ता रहेगा जिसका नाम है मेरी प्रीतम अर्कड़ो। थैंक यू सो मच, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम गीत लाजवाब, और इस प्रोग्राम को लेके आई हैं सियाटल यूएसए से, यानी सियाटल अमेरिका से, समृद्धि चतुर्वेदी।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समृद्धि सियाटल से, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के प्रोग्राम जिसका नाम है गीतों के सवाल और गीतों के जवाब के एपिसोड नंबर 5 में। आज के हमारे एपिसोड का नाम है प्यार की नोकझोंक। आज के गीतों में कोई बड़ी बड़ी मोहब्बत की बातें नहीं होंगी। आज प्यार थोड़ा नखरीला है, थोड़ा शरारती है और खूब सारी नोकझोंक करने वाला है, क्योंकि कभी कभी प्यार की शुरुआत मैं तुमसे प्यार करता हूँ से नहीं होती है, बल्कि शुरुआत होती है तुम ऐसे क्यों हो, और जवाब आता है अच्छा और तुम कौन सी कम हो। तो आज देखते हैं इन सवाल जवाबों

अब जब किसी लड़की को लड़के की बात समझ से बाहर लगे तो जनाब भी कहाँ चुप रहने वाले हैं। लड़के को लगता है मैं ही क्यों समझाऊं, पहले तुम खुद को तो समझो। और बस अब मामला एक तरफा शिकायत से निकलकर दो तरफा बहस बन जाती है। दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, दोनों को लगता है सामने वाला अजीब है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह, दोनों बातचीत बंद करने की बजाय बातें कर रहे हैं। 2004 की हम तुम का यह गीत अलका याग्निक और शान की आवाजों में है। साथ ही उनका साथ दिया है सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ने, बोल प्रसून जोशी के और संगीत जतिन ललित का। और इस गाने को गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने। तो चलिए बहस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। लड़की क्यों न जाने क्यों

0: ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले झगड़े जैसे पास पास मंडरा है, बड़ा फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टका।
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: उसी दिन में नजरें इनकी इधर उधर मर
0: जाए।
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: इंटीरियर
1: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके, दैट्स इट।

अब तक दोनों सिर्फ बहस कर रहे थे, लेकिन लगता है बहस का बहाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा है, क्योंकि अगली मुलाकात में जनाब जरा और करीब आ गए हैं और उन्हें छेड़ रहे हैं, और वह भी उन्हें रोकने का नाटक कर रही हैं। और फिर अचानक याद आता है, अरे यहाँ और भी तो लोग हैं। अब समस्या छेड़ने से कम है, पकड़े जाने से ज्यादा, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया से छिपाने की कोशिश में उनकी असली मिठास होती है। 1964 की गंगा की लहरें का यह गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया है, गीत मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत चित्रगुप्त का। इस गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने।

अब जरा तस्वीर देखिए। कहने को तो दोनों की खूब नोकझोंक है, लेकिन फिर वह चली गई और थोड़ी देर बाद जनाब फिर वही दिखाई दे गए। अब कोई भी पूछेगा, जब इतनी शिकायत थी तो फिर वापस आए किस लिए? और यही तो इस कहानी का मजा है। कभी कभी हम किसी से मिलने के लिए कोई बहुत अच्छा बहाना ढूंढते हैं, लेकिन सामने वाला उस बहाने को पहचान लेता है। 1971 की कल आज और कल का यह शानदार सवाल जवाब आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया है, बोल नीरज के और संगीत शंकर जयकिशन का। तो सुनते हैं मेरे साथ देते हुए पंकज जी को। आप यहाँ आ

कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। इतनी सारी मुलाकातों के बाद, इतनी बहसों के बाद, इतनी छेड़खानी के बाद, एक दिन इंसान सामने वाले से नहीं खुद से सवाल करने लगता है, मैं आखिर हर बार इसी इंसान के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। और फिर शायद अपने दिल को समझाने के लिए दुनिया भर के उदाहरण देने लगता है, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। शायद प्यार सच में बहुत अजीब चीज है। इंसान जानता है कि इसमें बेचैनी भी होगी, इंतजार भी होगा, कभी दिल भी दुखेगा, फिर भी जब कोई खास इंसान जिंदगी में आ जाए तो उससे दूर रहना उससे भी मुश्किल लगता है। 2001 की दिल चाहता है का यह गीत उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है, बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। मेरा साथ देते हुए फिर से रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी

I'm gonna go to the next one.

0: और फिर इतनी बहस के बाद भी अगली मुलाकात तो हो ही जाती है। दोनों आमने सामने हैं, पिछली सारी बातें याद है, किसने किसे छेड़ा, किसने किससे नाराजगी दिखाई, सब याद है, लेकिन कोई भी पिछली लड़ाई का जिक्र नहीं करता। बस एक मुस्कान और एक बहुत ही साधारण सा सवाल, हाल कैसा है जनाब का। 1958 की चलती का नाम गाड़ी का यह शानदार गीत आशा भोसले किशोर कुमार ने गाया है, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत एसटी बर्मन का है। इस संगीत में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने। शायद हमारी आज की कहानी का सबसे प्यारा जवाब भी यही है, प्यार हमेशा इजहार से नहीं पहचाना जाता, कभी कभी किसी का हाल पूछने की बेचैनी भी काफी होती है। तो आइए सुनते हैं,
1: हाल

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम गीत लाजवाब, और इस प्रोग्राम को लेके आई हैं सियाटल यूएसए से, यानी सियाटल अमेरिका से, समृद्धि चतुर्वेदी।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समृद्धि सियाटल से, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के प्रोग्राम जिसका नाम है गीतों के सवाल और गीतों के जवाब के एपिसोड नंबर 5 में। आज के हमारे एपिसोड का नाम है प्यार की नोकझोंक। आज के गीतों में कोई बड़ी बड़ी मोहब्बत की बातें नहीं होंगी। आज प्यार थोड़ा नखरीला है, थोड़ा शरारती है और खूब सारी नोकझोंक करने वाला है, क्योंकि कभी कभी प्यार की शुरुआत मैं तुमसे प्यार करता हूँ से नहीं होती है, बल्कि शुरुआत होती है तुम ऐसे क्यों हो, और जवाब आता है अच्छा और तुम कौन सी कम हो। तो आज देखते हैं इन सवाल जवाबों के बीच कब शिकायत प्यार में बदल जाती है। तो हमारी कहानी में लड़की की नजर पहली बार इस जनाब पे पड़ती है, और पहली नजर में प्यार बिल्कुल नहीं। पहली नजर में तो बस एक ही फैसला है, उफ ये लड़का है कैसा, कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी, कुछ ज्यादा ही शरारती और शायद कुछ ज्यादा ही ध्यान भी दे रहा है। लेकिन कहानी में एक छोटी सी दिक्कत है, जिस इंसान से हमें कोई मतलब नहीं होता उसकी हरकतों पर इतनी नजर भी नहीं रहती, तो शायद शिकायत के पीछे कहानी कुछ और है। 1977 की हम किसी से कम नहीं के इस गीत में आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत आर डी बर्मन का। चलिए देखते हैं ये दीवाना आखिर इतना दीवाना क्यों है।

अब जब किसी लड़की को लड़के की बात समझ से बाहर लगे तो जनाब भी कहाँ चुप रहने वाले हैं। लड़के को लगता है मैं ही क्यों समझाऊं, पहले तुम खुद को तो समझो। और बस अब मामला एक तरफा शिकायत से निकलकर दो तरफा बहस बन जाती है। दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, दोनों को लगता है सामने वाला अजीब है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह, दोनों बातचीत बंद करने की बजाय बातें कर रहे हैं। 2004 की हम तुम का यह गीत अलका याग्निक और शान की आवाजों में है। साथ ही उनका साथ दिया है सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ने, बोल प्रसून जोशी के और संगीत जतिन ललित का। और इस गाने को गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने। तो चलिए बहस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। लड़की क्यों न जाने क्यों

0: राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है?
1: पहले पहले झगड़े जैसे पास पास मंडरा, फिर बिजी हुई है कहकर तुमको वो
0: टर्किया।
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है, दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मर
0: जाए,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।
2: अब तक दोनों सिर्फ बहस कर रहे थे, लेकिन लगता है बहस का बहाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा है, क्योंकि अगली मुलाकात में जनाब जरा और करीब आ गए हैं और उन्हें छेड़ रहे हैं, और वह भी उन्हें रोकने का नाटक कर रही हैं। और फिर अचानक याद आता है, अरे यहाँ और भी तो लोग हैं। अब समस्या छेड़ने से कम है, पकड़े जाने से ज्यादा, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया से छिपाने की कोशिश में उनकी असली मिठास होती है। 1964 की गंगा की लहरें का यह गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया है, गीत मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत चित्रगुप्त का। इस गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने।

अब जरा तस्वीर देखिए। कहने को तो दोनों की खूब नोकझोंक है, लेकिन फिर वह चली गई और थोड़ी देर बाद जनाब फिर वहीं दिखाई दे गए। अब कोई भी पूछेगा, जब इतनी शिकायत थी तो फिर वापस आए किस लिए? और यही तो इस कहानी का मजा है। कभी कभी हम किसी से मिलने के लिए कोई बहुत अच्छा बहाना ढूंढते हैं, लेकिन सामने वाला उस बहाने को पहचान लेता है। 1971 की कल आज और कल का यह शानदार सवाल जवाब आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया है, बोल नीरज के और संगीत शंकर जयकिशन का। तो सुनते हैं मेरे साथ देते हुए पंकज जी को। आप यहाँ

कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। इतनी सारी मुलाकातों के बाद, इतनी बहसों के बाद, इतनी छेड़खानी के बाद, एक दिन इंसान सामने वाले से नहीं खुद से सवाल करने लगता है, मैं आखिर हर बार इसी इंसान के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। और फिर शायद अपने दिल को समझाने के लिए दुनिया भर के उदाहरण देने लगता है, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। शायद प्यार सच में बहुत अजीब चीज है। इंसान जानता है कि इसमें बेचैनी भी होगी, इंतजार भी होगा, कभी दिल भी दुखेगा, फिर भी जब कोई खास इंसान जिंदगी में आ जाए तो उससे दूर रहना उससे भी मुश्किल लगता है। 2001 की दिल चाहता है का यह गीत उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है, बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। मेरा साथ देते हुए फिर से रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी,

0: और फिर इतनी बहस के बाद भी अगली मुलाकात तो हो ही जाती है। दोनों आमने सामने हैं, पिछली सारी बातें याद है, किसने किसे छेड़ा, किसने किससे नाराजगी दिखाई, सब याद है, लेकिन कोई भी पिछली लड़ाई का जिक्र नहीं करता। बस एक मुस्कान और एक बहुत ही साधारण सा सवाल, हाल कैसा है जनाब का। 1958 की चलती का नाम गाड़ी का यह शानदार गीत आशा भोसले किशोर कुमार ने गाया है, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत एसटी बर्मन का है। इस संगीत में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने। शायद हमारी आज की कहानी का सबसे प्यारा जवाब भी यही है, प्यार हमेशा इजहार से नहीं पहचाना जाता, कभी कभी किसी का हाल पूछने की बेचैनी भी काफी होती है। तो आइए सुनते हैं,
1: हाल

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी।

परफेक्ट परफेक्ट।

प्रशांत अरोड़ा, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ टेक्निकल एक्सपर्ट श्री जगदीश अरोड़ा जी के सुपुत्र। पिछले लगभग 6 वर्षों से प्रशांत पंजाब के संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे सिर्फ एक बेहतरीन गायक ही नहीं बल्कि अपने गीतों का संगीत भी स्वयं तैयार करते हैं। अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को सुरों में पिरोकर श्रोताओं तक पहुंचाना उनकी पहचान बनता जा रहा है। प्रशांत अपने संगीत को अपने YouTube चैनल परफेक्ट, जिसको हम स्पेल करते हैं PRFKT, परफेक्ट के माध्यम से भी श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, जहां उनके मौलिक गीत और संगीत, उनकी रचनात्मक सोच और संगीत के प्रति समर्पण की एक सुंदर झलक प्रस्तुत करते हैं। आज की उनकी ये प्रस्तुति ने ये साबित कर दिया है कि प्रतिभा, समर्पण और निरंतर मेहनत मिलकर सपनों को नई उड़ान देते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में प्रशांत अपनी कला से संगीत की दुनिया में और भी ऊंचे मुकाम हासिल करेंगे। हमारी पूरी टीम की ओर से प्रशांत अरोड़ा को ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें सफलता, सम्मान और अपार लोकप्रियता प्रदान करे और उनके सुर यूं ही हर दिल को छूते रहें।

0: नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं आप लोगों का मनपसंद प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे सपना देव गुप्ता, और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। दोस्तों, कहते हैं संगीत वो एहसास है जो बिना कुछ कहे दिल की हर बात कह जाता है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे मेहमान जिनके लिए गायन सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में सुकून और हौसला देने वाला साथी है। ये मूल रूप से पुणे महाराष्ट्र से हैं, पेशे से एक वरिष्ठ प्रोजेक्ट इंजीनियर यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन इनके दिल की धड़कन हमेशा संगीत की लय पर चलती है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान आनंद मिसाल जी का। आनंद जी, जश्न सितारा गीत गुफ्तगू प्रोग्राम में मैं आरजे सपना देव गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ।
1: धन्यवाद धन्यवाद सपना जी, नमस्कार, और तमाम जयपुर रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को भी तहे दिल से धन्यवाद।
0: तो हमारे श्रोता बेहद उत्सुक हैं जानने के लिए कि आनंद जी जो आज हमारे मेहमान हैं, उन्होंने सबसे पहले जो उनका बचपन पुणे की गलियों में बीता, वो उन यादों के बारे में जानना चाहते हैं जिन यादों ने मिलकर आज के आनंद मिसाल को बनाया है।
1: पहले तो मैं जयपुर रेडियो का शुक्रिया अदा करूंगा
0: जी
1: कि एक आपके मंच के जरिए एक मौका मिला है आप तक पहुंचने का। रही बात मेरे बचपन की, तो यस, आप सभी की तरह बहुत अच्छा बचपन गुजारा है मैंने। पुणे से 35 किलोमीटर गांव है मेरा
0: जी
1: उरुली,
0: जी
1: सो वहाँ पे मेरा 10th तक एजुकेशन वहाँ पे ही हुआ है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: उसके
0: अच्छा
1: बाद मेरा जो इंजीनियरिंग है पुणे में हुआ,
0: जी
1: पुणे में हॉस्टल लाइफ मेरा स्टार्ट हुआ, जहाँ पे ही मेरा एज अ सिंगर मैं थोड़ा वहाँ निखर आया। मैं जहाँ तक गुनगुना करता था कॉलेज में आके, मैंने फिर वहाँ कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि फिर गाने के भी शौक चढ़ गए,
0: जी
1: फिर
0: अक्सर
1: संगीत।
0: ये देखा ही जाता है कि जब हम कॉलेज में आते हैं तो जो हमारे अंदर की छुपी हुई टैलेंट्स होते हैं वो उभर के बाहर आते हैं।
1: हाँ,
0: तो बचपन में भी आपने कभी स्टेज पर गाया है?
1: नहीं, बचपन में एक्चुअली सिंगिंग ये भी कोइंसिडेंटली एक्सीडेंटली हुआ था। ये जो स्टोरी है, एक किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा सुनाना चाहूंगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: कॉलेज के टाइम में हमारा गैदरिंग का सिलेक्शन चल रहा था सिंगिंग का,
0: जी
1: और हमारा जो ग्रुप था वो पीछे से सुन रहे थे, कमेंट कर रहे थे, हंसी मजाक ये वो चल रहा
0: जी
1: था।
0: जी
1: तो
0: जी
1: जो सामने जैसे कोई सिंगर आते थे, तो वही वो बचपने वाले हरकतें,
0: जी जी
1: इस सब ऐसे माहौल में अचानक से मेरा नाम अनाउंस हुआ था। तो

0: वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि कभी गाया नहीं था मैंने, माइक भी कभी पकड़ा नहीं था। तो अचानक से मेरा नाम अनाउंस किया और मैं फिर मेरी हालत तो मैं बता भी नहीं सकता आप लोगों को,
1: जी।
0: लेकिन फिर भी पीछे से थोड़ा आपको पुश किया दोस्तों ने कि भाई अभी तो इज्जत
1: अब तो जाना ही पड़ेगा, अब
0: का
1: नाम
0: सवाल है।
1: अनाउंस हो
0: हाँ
1: चुका है
0: तो
1: जी। जी तो कौन सा गाना गाया आपने?
0: हाँ वही, तो वहां पे फिर स्टेज पे गया, कोई दिमाग में सॉन्ग नहीं था कौन सा
1: तो
0: गाना
1: फिर
0: है,
1: भी
0: स्टेज पे गया, हालत ऐसी थी, हाथों में पसीना, पाव लड़खड़ा रहे हैं, फिर भी मैंने जो अभी भी यह सॉन्ग याद है वो मुझे मंजिल अपनी जगह है,
1: अरे वाह, क्या बात है किशोर
0: तो
1: जी।
0: उसमें हाँ जी हाँ जी, तो जैसे हमिंग स्टार्ट की तो पूरा जो हॉल था हमारा ऑडिटोरियम में पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ,
1: वाह
0: मेरे आंखें बंद थी और वो पिन ड्रॉप साइलेंस ने मेरा हौसला बढ़ा दिया, तो ऐसे तैसे वो सॉन्ग कंप्लीट कर दिया मैं
1: क्या बात
0: तो
1: है, बहुत ही रोचक पूर्ण। तो किशोर
0: इट।
1: जी आपके शुरू से ही फेवरेट सिंगर रहे हैं।
0: हाँ जी आप कह सकते हो, ऐसे बचपन में क्या होता था ना, गांव में हम ऐसे बाहर बरामदे में सोते थे पूरा फैमिली,
1: जी।
0: ठीक है, तो वो टाइम में आज के तरह का माहौल नहीं था, वहां पे वो विविध भारती वगैरह चल चल रहा होता था
1: जी।
0: कहीं ना कहीं रेडियो, तो वहां पे मैं सॉन्ग सुनता था, लेकिन तो एक इनकी जो वॉइस है वो मुझे अट्रैक्ट कर, पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करती थी,
1: जी।
0: तो बाद में समझ में आया कि यार ये वॉइस किशोर दा की
1: जी, उनकी इतनी जादू भरी आवाज थी कि हमेशा आपको अपनी ओर
0: है। यस
1: खींचती थी।
0: यस यस यस यस
1: तो ऐसा क्या हुआ आनंद जी कि आपने यही गाना चुना अपने पहले मंच की प्रस्तुति के लिए? यही गाना क्यों आपके दिमाग में आया, मंजिलें अपनी जगह है?
0: आई वॉज मीन्स मैं ब्लैंक था टोटली,
1: जी।
0: तो आंखों के सामने से सॉन्ग का लिस्ट जा रहा था मेरी, बट प्रिपरेशन नहीं था कुछ नहीं था, ये थोड़ा कंफर्टेबल था और थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल भी सॉन्ग के लिए मेरा अच्छा मुझे लगा, सो मैंने
1: जी।
0: वो परफॉर्म किया। और एक खास बात
1: वैसे
0: यह है कि
1: जी
0: हमारे प्रिंसिपल साहब का मेरा एक अंतरा होने के बाद में उन्होंने वो वंस मोर कर दिया और एक
1: अरे
0: दूसरा एक
1: वाह,
0: सॉन्ग का रिक्वेस्ट भी किया,
1: क्या
0: तो
1: बात
0: वहां
1: है।
0: से मेरा एक्चुअल सिंगिंग का मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वहां से सिंगिंग मैंने
1: जी जी जी
0: स्टार्ट
1: जी
0: करी।
1: आपको जो इतनी अच्छी दिल से प्रशंसा मिली अपने खुद के प्रिंसिपल
0: हाँ जी
1: से,
0: हाँ जी हाँ जी
1: वो आपको काफी आगे बढ़ा के ले गई। वैसे मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो गीत है ये इतना आसान भी नहीं है, मंजिलें अपनी जगह है, क्योंकि इसका जो इमोशंस हैं वो दिल को छू जाती हैं। और जी,
0: करेक्ट, हाँ
1: सिर्फ हाई
0: इमोशन,
1: नोट्स
0: जी
1: ही नहीं
0: जी
1: है बल्कि आपको बहुत इस गीत में डूब
0: वो
1: कर गाना पड़ता है।
0: करेक्ट करेक्ट, इनफैक्ट
1: जी
0: वो स्टार्टिंग से वो जो हमिंग है जो है,
1: जी
0: हमिंग
1: जी
0: से जो स्टार्ट होता है तो
1: जी
0: वो फील आना वहीं से स्टार्ट होता है, और यही खासियत है म्यूजिक
1: यही खासियत है।
0: की।
1: वाह,
0: यस
1: बहुत खूब। और इसी के साथ हम आपका पहला गीत लेते हैं।

0: बातचीत का दौर आगे बढ़ाते हैं। आनंद जी, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एक व्यस्त प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं। निसंदेह आपकी जो जिंदगी है बहुत ही व्यस्त रहती होगी, तो ऐसे में संगीत के लिए समय निकालना कितना चुनौतीपूर्ण लगता है आपको?
1: डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है टाइम निकालना।
0: जी,
1: हाँ, लेकिन वक्त
0: अगर मन में
1: मिलता
0: हम
1: नहीं, वो
0: ठान लें तो कर ही
1: निकलना
0: लेते
1: पड़ता
0: हैं।
1: है। हाँ, एग्जैक्टली, वक्त मिलता नहीं है, वो निकालना पड़ता है। होता क्या है, सिंगिंग मैं सुनता हूँ, जैसे मुझे फ्री टाइम होता है मैं म्यूजिक सुनता रहता हूँ। रही
0: जी
1: बात सिंगिंग की, हाँ, तो उसके लिए फिर टाइम थोड़ा निकालना पड़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जहां पर बात रूह की खुराक की हो, जहां पर बात हो कि संगीत के बगैर हम जी नहीं
1: एग्जैक्टली
0: सकते, तो वहां तो
1: एग्जैक्टली
0: समय निकालना ही
1: एग्जैक्टली
0: पड़ता है
1: एग्जैक्टली
0: जी। और इसी के साथ हम आपका एक और गीत लेते हैं।

0: तो आनंद जी, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि सिंगिंग सिर्फ आपकी एक हॉबी नहीं है, आपके दिल का सुकून है। तो क्या आपको कोई एक ऐसा वाकया याद हो या कोई ऐसा दौर याद हो जब संगीत ने सचमुच आपका हौसला बढ़ाया हो और आप हमारे श्रोताओं के साथ उसे साझा करना चाहें?
1: लाइफ में अप एंड डाउन्स देखे मैंने बहुत। होता क्या है कि हर सिचुएशन में

0: कभी कभी हमें खुद को ही मोरली सपोर्ट देना होता है,
1: जी
0: क्योंकि आपको ज्ञान देने में लोग जुटे रहेंगे,
1: जी
0: आपको खुद क्या हो, खुद के लिए क्या चाहिए, क्या सही है क्या सही गलत है, या खुद को स्टैंड अप करने के लिए। मुझे लगता है कि ये म्यूजिक इज द बेस्ट सोर्स फॉर मी,
1: जी
0: कि मैं ये फैक्ट है कि मैं 5 मिनट का सॉन्ग भी सुन लूँ, थोड़ा खुद को रिलैक्स फील कर लूँ।
1: जी तरोताजा महसूस करते हैं आप।
0: यस यस
1: वाकई
0: यस
1: इस बात में कोई संदेह नहीं है कि संगीत ही एक सच्चा साथी होता है,
0: करे करे करे
1: जो
0: करे
1: जी
0: जिते
1: दुख की घड़ी में भी और सुख की घड़ी में
0: एग्जैक्टली
1: भी हमारे साथ रहता है।
0: एग्जैक्टली
1: बिल्कुल
0: संगीत जो है मीन्स देखो, छोटे बड़े मेलोडी का कोई ये नहीं है, बच्चे हो बूढ़े हो जवान हो, हर एक इसमें आप देखोगे तो संगीत से ही जुड़े हुए
1: जी
0: डिफरेंट काइंड ऑफ मूड्स एंड सिचुएशंस,
1: जी जी
0: आपको
1: बिल्कुल
0: वो एक थेरेपी जो बोलते हैं वो काम करता है बहुत अच्छे से।
1: बिल्कुल सही। और अगर हम अपने आसपास भी देखें आनंद जी, जो प्रकृति है वो भी संगीत से भरी हुई है। अगर आप
0: एग्जैक्टली
1: हवा
0: वो
1: के बहाव को महसूस करें
0: यस
1: या
0: यस यस
1: लहरों
0: यस
1: को महसूस करें, हर जगह संगीत है, हर जगह आपको
0: एग्जैक्टली
1: वही चीज
0: एग्जैक्टली
1: मिलेगी। तो आनंद जी, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि जो आपके कॉलेज में आपके मंच की पहली प्रस्तुति थी वो थी किशोर दा का एक बेहतरीन गीत मंजिलें अपनी जगह हैं, जो कि अगर मैं गलत
0: यस
1: नहीं
0: यस
1: हूँ शराबी फिल्म से है और अमिताभ बच्चन जी पर ये
0: यस
1: फिल्माया गया था।
0: हाँ जी हाँ
1: जी
0: जी हाँ जी
1: तो इस गीत के बाद आपने और भी बहुत
0: इस
1: सारी प्रतियोगिताएं और लाइव ऑर्केस्ट्रा में गाया होगा।
0: लाइव ऑर्केस्ट्रा में ज्यादा गाया नहीं हूँ,
1: जी
0: कॉलेज टाइम में गाता था मैं।
1: जी
0: कॉम्पिटिशन्स, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन भी मैंने किए हैं
1: जी
0: पूना
1: जी
0: में।
1: जी तो कोई और ऐसी यादगार प्रस्तुति जो आज भी आपके दिल के बेहद करीब हो।
0: हाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरा एक सॉन्ग है फेवरेट, दूसरा
1: जी
0: जो मैंने प्रिपेयर किया था, एक डुएट कंपटीशन था इंटर कॉलेज पूना में, मॉम मॉम करके ग्रुप था,
1: अच्छा जी
0: मिस्टर मोहन कुमार भंडारी जो ऑर्गेनाइजर थे, वो हर साल वो ऑर्गेनाइज करते थे, वहां पे हमारे कॉलेज के ओर से हमारा पहला एंट्री था उस कंपटीशन में।
1: अच्छा
0: तो उसमें डुएट कंपटीशन में वो एक्सपीरियंस एक बढ़िया था मेरे लिए, पूरा अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ, वो क्राउड वही था,
1: जी जी जी
0: तो
1: जी
0: वहां पे बहुत उन लोगों का वो शोर वो आज भी आंखों के सामने आता है
1: जी वो जो
0: एक थोड़ा।
1: एक उत्तेजना वाला एटमॉस्फियर बना होता
0: यस
1: है,
0: यस
1: एक
0: यस यस
1: एक्सपोजर
0: वो
1: होता है।
0: एनर्जेटिक,
1: जी जी
0: करे
1: जी
0: करे और
1: जी
0: कोई गलत गा रहा है तो उसपे हंगामा,
1: जी
0: ये वो
1: जी
0: चीजें वो सब चल रहा था। तो
1: जी वो तो जो दौर होता है कॉलेज के दिनों का, वो पूरी जिंदगी
0: यस
1: के
0: यस
1: सभी
0: यस
1: दौरों में से सबसे
0: यस यस
1: यादगार
0: यस यस
1: रहता है।
0: वो हाँ वो कहीं पे तो छुपा रहता है वो हमेशा के
1: जी
0: लिए।
1: जी और हमें हमेशा एक मुस्कान ही देकर
0: तो
1: जाता है जब भी हम याद
0: यस
1: करते
0: यस
1: हैं। जी
0: यस
1: हाँ
0: यस तो
1: जी
0: वहां का एक सीन ये हुआ था, हमारा अनाउंसमेंट हो गया, हम स्टेज पे गए, मेरे को पार्टनर थे, तो स्टेज पे जाने के बाद वो बोले कि आनंद मुझे डर लग रहा है मैं नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि वो भी नए थे, ऐसे प्रोफेशनल सिंगिंग वगैरह नहीं थे। तो उनको बोला मैंने कि आप आंखें बंद कर लो 3 4 मिनट के लिए बस और गा लो, और हालांकि उनको देख के थोड़ा मैं भी हड़बड़ा गया था।
1: हाँ होता है ऐसे, इन्फेक्शियस होती है ये चीज।
0: तो फिर इंतहा हो गई उस सॉन्ग का, तो स्टार्टिंग का जो वर्डिंग है उसका वो मैंने स्टार्ट किया, तो वहां पे भी जितना क्राउड नॉइजी था वो शांत हो गया
1: क्या बात है, क्या
0: वो
1: बात है
0: टाइम में भी।
1: जी।
0: तो बीच में वो मोहन कुमार जो थे वो खुद जज कर रहे थे कंपटीशन, तो उन्होंने ताली बजाई और रुकने को बोला, तो थोड़ा मैं वहां पे स्टॉप करके फिर रुक गया, तो उन्होंने बोला यही फिर से आप गाओ स्टार्टिंग। फिर से मैंने जैसे स्टार्ट किया, मेरे पार्टनर जो है वो भी थोड़ा रिलैक्स हो गए, वो पूरा तालियां वगैरह ये वो नहीं, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा।
1: वाह
0: और परफॉर्मेंस के बाद में जो कमेंट मुझे मिला जजेस से, कि उन्होंने जो डुएट कंपटीशन था उस साल से उन्होंने इंडिविजुअल भी प्राइज देना स्टार्ट किया, और
1: क्या
0: वो
1: बात
0: पहला
1: है,
0: विनर बैठा वहां पे इंडिविजुअल में।
1: बहुत खूब।
0: तो ऐसे मेमोरीज अभी तक संभाले रखा हूँ,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: वो आज भी मैं वो
1: आपके दिल के बहुत करीब हैं।
0: गाने हाँ और गाने के जरिए मैं एंजॉय करता हूँ वो मोमेंट
1: जी
0: आज भी।
1: जी बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हम आपका एक और गीत लेते हैं।

0: आनंद जी, आपके पसंदीदा गायक कौन कौन है जो हमारी इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें जो प्लेबैक सिंगर्स
1: बॉलीवुड
0: हैं?
1: इंडियन
0: जी
1: ऑफ कोर्स गॉड ऑफ वॉइस किशोर दा,
0: जी जी जी जी
1: रफी साहब, लता जी,
0: जी
1: और आज के दौर के सोनू निगम जी और
0: जी जी
1: कुमार सानू दा।
0: वाह क्या बात है।
1: तो इनको सुनने में बहुत डिफिकल्ट सिंगर्स है इनको परफॉर्म करना, बट सुनने में बहुत आसान लगता है। ये खास खास बात है, स्पेशली सोनू
0: हाँ,
1: निगम जी।
0: स्पेशली सोनू निगम जी, बिल्कुल आपने सही कहा।
1: हाँ
0: वो
1: जी, हाँ
0: जितने
1: जी,
0: हाई नोट्स को इतनी आसानी से ले जाते
1: हाँ
0: हैं
1: हाँ हाँ
0: और हम तो शायद सोच
1: सुनने
0: भी
1: में
0: नहीं
1: आसान
0: सकते।
1: लगता है।
0: जी, और
1: यस
0: बहुत
1: यस,
0: ही
1: सुनने में
0: खूबसूरत
1: बहुत
0: गीत।
1: आसान लगता है।
0: हाँ, बहुत ही
1: यस
0: खूबसूरत
1: यस
0: गीत।
1: यस,
0: हाँ, तो ये तो सारे बहुत ही महान कलाकार हैं। तो अगर आपको कभी मौका मिले कि इन पांचों में से आप किसी भी एक के साथ शाम बिता सकते हैं, तो आप किसको चुनेंगे और आप उनसे क्या एक सवाल करेंगे जो कि आपके हमेशा जहन में रहता हो?
1: ऑब्वियसली ये सब लीजेंड्स लोग हैं संगीत के। मैं तो कहूंगा भगवान है ये लोग।
0: जी बिल्कुल।
1: पर जैसे आपने पूछा, एक ऐसा पल मैं गुजरना चाहूंगा कि किशोर दा के साथ, और वहां पे सच को तो कोई सवाल नहीं होगा मेरा, मैं कुछ पूछूंगा नहीं। अगर पूछना होगा तो बस इतना पूछूंगा कि किशोर दा आपने जल्दी विदा ली, और बाकी तो बस लाइव उनकी आवाज सुनने को मिलता ये काफी होता।
0: वाकई बहुत जल्दी उन्होंने विदा ले ली, और
1: हाँ जी,
0: जितने जिंदा दिली उनकी शख्सियत में थी, किस तरह वो मुस्कुरा के नाच के सबका
1: एग्जैक्टली
0: मनोरंजन करते थे और गाते थे, अभिनय करते थे, इतना मल्टी टैलेंटेड उनकी
1: करेक्ट
0: पर्सनालिटी
1: करेक्ट
0: थी।
1: करेक्ट।
0: उनको देखते
1: तो
0: ही दिल
1: सदियों में
0: में
1: मिराकल्स होता
0: ट्विस्ट।
1: है।
0: जी। आनंद जी, परिवार का आपके संगीत के सफर में कितना सहयोग रहा है?
1: परिवार का बोले तो पिताजी को मेरे इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनको
0: अच्छा
1: अच्छा लगता है लेकिन इतना मोटिवेट नहीं करते थे, अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, ये क्या है, इस तरह से उनका
0: जी
1: होता था।
0: जी
1: लेकिन जब भी वो मेरे सर्टिफिकेट्स, प्राइजेस देखते या दोस्तों से सुनते तो वो उनको अच्छा लगता था, थोड़ा प्राउड फील करते थे, लेकिन
0: जी
1: उनका रुचि नहीं था इसमें।
0: जी और आपकी धर्म पत्नी?
1: मेरी धर्म पत्नी एक्चुअली, मेरा 2000 में मेरा सिंगिंग टोटली बंद था मेरा,
0: अच्छा
1: तो समाओ मेरा वो बाकी जिंदगी शुरू हुई थी आफ्टर कॉलेज,
0: जी
1: तो ये गाना थोड़ा पीछे पड़ा था। तो अभी कोविड के चलते वो मौका मिल गया, घर पे बैठे बैठे कुछ ऐप थे उसमें मैंने गाना चालू किया, तब जाके अब भी बीवी को पता चली मैं गाता हूँ, उसको भी अच्छा
0: अच्छा
1: लगा।
0: चलिए बहुत बढ़िया।
1: तो भी
0: तो क्या
1: इसके
0: आपकी
1: पहले उसे
0: धर्मपत्नी भी
1: नहीं
0: गाती
1: मालूम था।
0: हैं?
1: नहीं, वो सुनती अच्छी है, गलती निकलती है बहुत
0: अच्छा,
1: वो कान से दें, बहुत बारीक बारीक गलतियां बताती है।
0: जी। तो गलतियों से याद आया कि हमारे श्रोता जी तो गलतियों से याद आया कि हमारे श्रोता बेचैन हैं आपकी मधुर आवाज सुनने के लिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए आप कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे?
1: गीत तो बहुत सारे हैं जो काफी मोटिवेशनल भी है,
0: जी,
1: और
0: दो
1: मैं चाहता
0: पंक्तियां
1: भी कि
0: गुनगुना दीजिए। आज आप हमारे स्टूडियो में हमारे रूबरू बैठे हैं, तो
1: जी
0: मैं
1: बेशक
0: चाहूंगी।
1: बेशक बेशक।
0: जी
1: किशोर दा का सॉन्ग है, यादगार मूवी से, 1984 को रिलीज हुई थी मूवी, तो कोशिश करता हूँ दो लाइनें सुनाने की।
0: जी
1: रो ना ना उदास हो ना, ये आंसू खो ना, यहाँ न दामन भिगो ना, कभी पाना है कभी कुछ पाना है, कभी कुछ खोना है, यहाँ जो होना है होगा वही, यही जिंदगी है, यहाँ जिए वही लोग जो सारे गम भुला के आंसुओं में मुस्कुराते हैं, आते हैं चले जाते हैं, जाने वाले कब

0: कभी यहाँ अपने प्यार से लोगों के दिलों में यादगार
1: वाह
0: बन जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं।
1: क्या बात है
0: बहुत
1: आनंद
0: प्यारा
1: जी,
0: सॉन्ग है। थैंक
1: आपने गाया भी बहुत खूबसूरती के साथ है,
0: यू, थैंक यू।
1: मजा आ गया। तो हमारे सभी श्रोताओं और उन लोगों के लिए जो अपने सपनों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, आपका क्या संदेश रहेगा?
0: काफी मुश्किल सवाल है। बस इतना कहूंगा कि
1: जी
0: सपना देखना छोड़ो मत,
1: जी
0: सपने देखते रहो, बाकी जो ऊपर वाला देता है कबूल कर लो। सिंपल।
1: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत संदेश है आपका आनंद जी। आपने अपने अनुभवों और सुरों से आज की इस महफिल को सचमुच यादगार बना दिया है। हमारी शुभकामना और हमारी दुआ आपके साथ रहेगी कि आपकी आवाज यूं ही लोगों के दिलों तक पहुंचती रहे और आपके जीवन में सफलता व खुशियां हमेशा आपका साथ दें। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू
1: जी
0: सो मच।
1: जी तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे जश्न सितारा गीत गुफ्तगू के एक और खास एपिसोड में, एक नई शख्सियत और संगीत की एक नई महफिल के साथ। मैं हूं आपकी आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रब राखा।
2: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो है, आपकी आवाज आपकी पहचान, और हम लेके आए हैं खूब सारे सुरीले सिंगर। और शुरुआत करते हैं जगदीश अरोड़ा साहब की आवाज में इस गीत से।

जी हाँ, आज आपको चुप नहीं रहने देंगे हम, आपको गाना पड़ेगा और जयपुर रेडियो का मंच है गाने के लिए और आप सुरीली सिंगर्स में हैं तो चुप रहने की बात तो बिल्कुल नहीं। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड आज हमारे साथ सुरीले सिंगर्स प्रोग्राम में जगदीश अरोड़ा हैं पंजाब गोविंदगढ़ मंडी से। अपने सुरीले गीत के बाद हम आपको सुनवाते हैं अगला गीत है मधुसूदन जी का प्रोग्राम सुरीले सिंगर जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर।

बेहतरीन सुरीली सांझ में हम सुन रहे थे पंजाब से मधुसूदन जी का ये सोलो गीत, बहुत ही बेहद खूबसूरत गीत हमने सुना, आ गले लग जा। आइए सुनते हैं अगला गीत, आपकी आवाज आपकी पहचान, प्रोग्राम सुरीले सिंगर, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो।

वीरेंद्र जी की आवाज में हमने ये बहुत खूबसूरत गीत सुना, कोई होता अपना जिसको हम अपना कह लेते यारो। आपकी आवाज, आपकी पहचान, और आप हमारे सिंगर हैं और हम आपको अपना ही कहते हैं। और हमारे अपने एक और सिंगर हैं जिनका नाम है जगदीश अरोड़ा गोविंदगढ़ मंडी पंजाब से। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत आपकी आवाज में, जगदीश अरोड़ा साहब की आवाज में। आपकी आवाज, आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो।

0: आपकी आवाज आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का प्रोग्राम सुरीले सिंगर्स। और अभी आपने सुना पंजाब गोविंदगढ़ मंडी के जगदीश अरोड़ा की आवाज। और इसी के साथ सुरीले सिंगर प्रोग्राम आज का यहीं तक। बेहद शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सबकी अपनी सुरीली आवाज में इन गीतों को इस मंच पर साझा करने के लिए। सुनते रहें जब रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: कहीं भी सुनिए, कभी भी सुनिए, यह है जयपुर रेडियो। अब आपका रेडियो आपके हाथ में। आप घर में हो या दफ्तर में, बाजार में हो या कहीं और, अब आपका रेडियो हमेशा आपके साथ है। तो फिर देर किस बात की, फोन उठाइए और डाउनलोड कीजिए जयपुर रेडियो का ऐप, जहां आपको मिलेगा नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट। कहीं भी सुनिए, कभी भी सुनिए, यह है जयपुर रेडियो। अब आपका रेडियो आपके हाथ में। आप घर में हो या दफ्तर में, बाजार में हो या कहीं और, अब आपका रेडियो हमेशा आपके साथ है। तो फिर देर किस बात की, फोन उठाइए और डाउनलोड कीजिए जयपुर रेडियो का ऐप, जहां आपको मिलेगा नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट।
1: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: मौसीकी की दुनिया के कदरदानों, मैं गगन माथुर आपका स्वागत करता हूं इस संगीतमय शाम में। पिछले हफ्ते आप डिस्को की थाप पे झूमे, तो इस हफ्ते मेरी गुजारिश है 90s के मधुर गीतों को गुनगुनाने की। 80s के अंत तक

को चैरिटी वर्कर इंदिरा रॉय का पुत्र पसंद आ गया था और दीपक तिजोरी बना दिए गए हीरो के पक्के दोस्त, लिहाजा आगे की कई फिल्मों में वो हीरोज के पक्के दोस्त बनते रहे। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और उसकी म्यूजिक एल्बम आज भी बॉलीवुड के 100 ग्रेटेस्ट साउंडट्रैक्स में चौथे स्थान पर गिनी जाती है। तो साहिबान, 90s की मेलोडी से आशिकी शुरू करवाने वाली इस फिल्म के खूबसूरत गीत को आपकी नजर के सामने ला रहे हैं प्रेरणा और राम की।

उनके चेहरे मार्केटिंग के लायक नहीं लगे, जिसमें आदित्य पंचोली को याद किया गया हीरो की आवाज में दम लाने के लिए, जिसमें पहले शॉट तक हीरो को कैरेक्टर का नाम भी नहीं पता था, सीन के दौरान कैरेक्टर को कहीं साइन करना था तो हीरो ने अपना ही नाम लिख दिया राहुल और वो ही कैरेक्टर का नाम बन गया, जिसमें अपना चेहरा दिखाने के लिए कुमार सानू ने अपने ही प्लेबैक किए गए एक गीत के बाद हीरो से मार खाने की जहमत उठाई। दूसरी ओर 1989 के अंत में मैंने प्यार किया से शानदार एंट्री मार ली थी सलमान खान ने, मगर उन्हें तलाश थी दूसरी हिट की बॉलीवुड में अपनी जगह पक्की करने के लिए। सलमान को एक नया स्टोरी आइडिया सूझा जिसपे न सिर्फ उनकी दूसरी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर बनी बल्कि एक साल बाद एक और ब्लॉकबस्टर भी स्क्रीन पर छपी जिसका नाम था सड़क। सलमान की फिल्म थी बागी, जिसने सलमान को बनाया स्टार और नगमा को दिया डेब्यू, अभिजीत को बना दिया टॉप सिंगर। चांदनी रात में गाए गए इस गीत ने, जिसे पेश करने आ रहे हैं थापा और प्रियंका।

दोस्तों चांदनी रात है गीत फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी नॉमिनेट हुआ, मगर गलती से सिंगर का नाम लिया गया अमित कुमार। थोड़ा धक्का तो लगा होगा अभिजीत को, मगर चांदनी रात ने अभिजीत साहब की रातें तो रातें दिन भी चांदी से चमका दिए और कुमार सानू के साथ साथ बॉलीवुड में पांव जमाए उनके जबरदस्त कॉम्पिटिटर अभिजीत भट्टाचार्य ने। दूसरी तरफ रोमांस को लेकर महेश भट्ट एक नए संवेदनशील प्रयोग की फिराक में थे। उन्होंने एक अलहदा सा स्टोरी आइडिया सोच रखा था धर्मपुत्र बॉबी देओल के डेब्यू के लिए, मगर बॉबी ने तो पापा के प्यार की बरसात में भीगते हुए डेब्यू फिल्म साइन कर ली काका की बेटी के साथ और भट्ट साहब टकरा गए इलू इलू फेम विवेक मुशरान से। महेश भट्ट साहब की खुशी सातवें आसमान में जा पहुंची और उन्हें लगा होगा तुम क्या मिले विवेक मुशरान। उन्होंने भट्ट गर्ल पूजा के साथ झटपट अपनी स्टोरी पर्दे पर उतार दी और ये गीत 90s के हॉल ऑफ फेम में अमर हो गया। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ गीत उषा और रईस अहमद खान की जुबानी।

1993 में आमिर खान ने अपनी डेब्यू पार्टनर जूही चावला के साथ भट्ट साहब की खूबसूरत फिल्म की और उस रोल को सुपरहिट किया जो अनिल कपूर और संजय दत्त से फिसलते फिसलते उनके पास आ गया था। उन्होंने ना सिर्फ इस फिल्म में एक्टिंग की बल्कि जहां मौका लगा उसे डायरेक्शन भी दिया। ये वो फिल्म है जिसमें सैफ के जीजा कुणाल खेमू आमिर खान के सामने इतने बच्चे थे कि कहते हैं उन्होंने महेश भट्ट से वीडियो गेम गिफ्ट लेकर एक सीन दिया था। ये वो फिल्म भी है जिसमें जूही चावला को अवार्ड देकर आमिर खान को फिल्म फेयर ने दूसरी बार इग्नोर किया। जो जीता वही सिकंदर के बाद। इस फिल्म के गीत के माध्यम से अपनी खूबसूरत आवाज में विद्या और मानवेंद्र पेश करेंगे घूंघट के डिसएडवांटेजेस।

दोस्तों 1995 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने 5 बड़े फनकारों की किस्मत बनाई और एक को थोड़ी चोट पहुंचाई। इस फिल्म से कमबैक हुआ लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले का, जिन्होंने प्लेबैक सिंगर अवार्ड्स लेना बंद कर दिया था, इसलिए इस फिल्म के एक गीत तना तना के लिए उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। स्टार बन गई उर्मिला मातोंडकर। हिंदी फिल्म डेब्यू हुआ म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान, कोरियोग्राफर अहमद खान और उर्मिला की इमेज बदल देने वाले डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का। साथ ही साथ इस फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड्स को मौका दिया तीसरी और आखिरी बार आमिर खान को इग्नोर करने का, और उसके बाद आमिर ने फिल्म फेयर में आना ही बंद कर दिया। आइए सुनते हैं इस फिल्म का सबसे सेंसुअस गीत प्रशांत और शोमा से।

विधु विनोद चोपड़ा अपनी पर्सनल लव स्टोरी पे एक फिल्म बनाना चाहते थे, पर जब उन्होंने वो कहानी अनिल कपूर को सुनाई तो उन्हें कोई खास शक्कास नहीं लगी। उन्होंने उन्हें एक पीरियड लव स्टोरी का आइडिया दे डाला जो आगे जाके 1942 लव स्टोरी बनी। न संजय बंसाली डायरेक्शन के लिए तैयार हुए, न ममता कुलकर्णी हीरोइन बनने के लिए, लेकिन चोपड़ा साहब डटे रहे। 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म का संगीत न केवल उसी साल रिलीज हुई रंगीला से जुदा था, बल्कि उसके संगीत निर्देशक अनु मल्लिक के स्टाइल से भी बहुत जुदा था। एक सिंगिंग रियलिटी शो की विनर बनी इस फिल्म की फीमेल प्लेबैक सिंगर, और इस फिल्म के गीत लोगों के दिलों के बहुत बहुत करीब पहुंच गए। आइए ऐसे ही एक गीत को सुनाने के लिए बुलाते हैं तनुजा और राहुल को।

हॉलीवुड फिल्म फॉर लव और मनी का रीमेक बनी 1997 की एक शाहरुख फिल्म, जिसका नाम पहले था मोहब्बत इसको कहते हैं। पर फिल्म बनाते बनाते शायद मेकर्स ने गौर किया होगा कि आखिर हर मोहब्बत का अंजाम होता क्या है, तो उन्होंने इस फिल्म का प्रैक्टिकल नाम रख दिया, यस बॉस। कहते हैं जावेद अख्तर के लिखे गीत, बस इतना सा ख्वाब है, में जाहिर की गई शाहरुख की सारी अर्जियां ऊपर वाले ने झट से मंजूर कर ली। शाहरुख बन गए किंग खान और आगे जाके वो आलिशान बंगला ही ले डाला जिसके आगे इस गीत की शूटिंग हुई थी। उस बंगले का नाम है मन्नत। आइए बुलाते हैं थापा और गायत्री को इस फिल्म की यादें ताजा करने के लिए।

1998 में डब फिल्म में कमाए थे 14 करोड़ रुपए, जो अपने आप में रिकॉर्ड था उस समय। और उसका सबसे प्रचलित गीत फिल्माया गया था उसी बंगले के अंदर जिसके सामने पिछले गीत को फिल्माया गया था। फिल्म का नाम था बॉम्बे और गीत था हम्मा हम्मा। इस फिल्म के डायरेक्टर मणिरत्नम लेना चाहते थे ऐश्वर्या राय को, पर वो अपने मिस वर्ल्ड कमिटमेंट्स के कारण ये फिल्म न कर पाई और रोल मिल गया मनीषा कोइराला को। इसके गीत कहना ही क्या को अनेक देशी विदेशी एल्बम्स में रिमिक्स किया गया और बॉम्बे थीम को भी आगे कई फिल्म्स और एल्बम्स में यूज किया गया, मगर हम्मा हम्मा की ट्यून प्रेरित थी 1996 के एक आइटम सॉन्ग से, कोई आए तो ले जाए उसके इंटरलूड से। कभी गौर से सुनिएगा। अब श्याम और तान्या आपके आगे वो गीत पेश करेंगे जिसकी शूटिंग केरला के बेकल फोर्ट में मानसून के दौरान हुई थी।

1998 में एक ऐसी फिल्म भी रिलीज हुई जिसके हीरो हीरोइन ने पूरी फिल्म भर एक दूसरे से बात नहीं की, पर अभिनय बेहतरीन किया। हीरो थे सलमान खान और हीरोइन थी ट्विंकल खन्ना, और फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म का संगीत भी खूबसूरत बन पड़ा था, और जतिन ललित निर्देशित कुमार सानू और लता मंगेशकर का ये गीत आज भी हमारे जहन में गूंजता रहता है। इसी गीत के भाव को पेश करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रुति और विकास को।

दोस्तों, गीतों के इस दौर को अब अंजाम देना चाहूंगा एक ऐसी फिल्म के गीत से जिसे आज की पीढ़ी का रोमांटिक क्लासिक माना जाता है। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म में टॉम क्रूज को लेकर इंडो अमेरिकन अफेयर पर आधारित स्टोरी लाइन रखना चाहते थे, मगर यश चोपड़ा साहब इसके पक्ष में नहीं थे, लिहाजा सैफ अली खान को अप्रोच किया गया, मगर उन्होंने भी फिल्म ठुकरा दी। और डर फिल्म की तरह बड़े सितारों की ठुकराई ये फिल्म आ गिरी शाहरुख खान की झोली में। अमूमन दो बड़े डायरेक्टर अपनी फिल्में एक साथ रिलीज नहीं करते, मगर डेविड धवन साहब ने दिवाली पे हुई डीडीएलजे की रिलीज को चैलेंज किया अपनी फिल्म याराना से, जिसकी फीमेल सुपरस्टार माधुरी दीक्षित के कारण चलने की संभावना कहीं ज्यादा थी। नतीजा, बच्चन साहब के बाद की कोई भी याराना पब्लिक को याद नहीं है। डीडीएलजे का बॉक्स ऑफिस पे 7000 दिन तक चलने का अनब्रोकन रिकॉर्ड बना और इसका मुख्य किरदार राज आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। रही बात सैफ और डेविड धवन साहब की, तो आज भी अपने आप को समझा रहे होंगे कि बड़े बड़े कलाकारों से छोटी छोटी मिस्टेक्स तो होती रहती हैं सेनोरिटा। दोस्तों, गजर के इशारे अब रुकने नहीं देंगे, इसलिए अब मैं गगन माथुर आपसे इजाजत चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि 90s के सुहाने सफर के बाद आपका दिल भी उस दौर में खो जाएगा और जुबान पर भी वही बोल होंगे जो आज के आखिरी गीत में डॉक्टर सुजा और मेरी यानी गगन माथुर की जुबान पे हैं।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूं कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूं।
1: लफ्ज लफ्ज बंध गया जिंदगी के साथ, जयपुर रेडियो लाया आपके लिए नित नई सौगात।
2: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान।
3: कहीं भी सुनिए, कभी भी सुनिए, यह है जयपुर रेडियो। अब आपका रेडियो आपके हाथ में। आप घर में हो या दफ्तर में, बाजार में हो या कहीं और, अब आपका रेडियो हमेशा आपके साथ है। तो फिर देर किस बात की, फोन उठाइए और डाउनलोड कीजिए जयपुर रेडियो का ऐप, जहां आपको मिलेगा नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान।
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान।
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान।
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान।
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान।
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान।
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो।
4: वॉइस रोड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आज के इस खास प्रोग्राम में प्रस्तुत है रिश्तों की डोर का ये खास एपिसोड, और इस एपिसोड को लेके आई हैं सियाटल यूएसए से हमेशा की तरह आपकी आरजे स्मृति चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं ये खास प्रोग्राम रिश्तों की डोर। कहां है इसका छोर बताएंगी स्मृति अपने पापा के साथ।

की, क्योंकि हर रिश्ता प्यार नहीं होता और हर प्यार को कोई नाम देना भी जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते खून के होते हैं, कुछ शादी से बनते हैं, कुछ दोस्ती से, और कुछ बस बन जाते हैं। ना कोई नाम, ना कोई वादा, ना कोई रिश्ता तय करने वाला कागज, बस एक अपनापन, एक समझ, जैसे कि हमारा और आपका रिश्ता है ना। एक ऐसा एहसास भी होता है जिसमें रिश्तों को नाम दे के बांधना उनकी उसमें नाइंसाफी होगी। कभी कभी लगता है कि एक बड़े ही प्यारे गीत के लाइंस बोल रही हूँ कि हाथ से छूकर कोई रिश्तों को इल्जाम ना दो। कुछ रिश्ते अनाम ही अच्छे लगते हैं, लेकिन रिश्ते हमेशा इतने सरल भी नहीं होते। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, कुछ दूर तक हमारे साथ चलते हैं, और फिर कभी किसी मोड़ पर रास्ते अलग भी हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिश्तों की इसी थोड़ी अजीब, थोड़ी खूबसूरत और कभी कभी थोड़ी स्वार्थी दुनिया से। आज के हमारे पहले गीत के बारे में आपको कुछ जानकारियां दे दूं। तो ये गीत है फिल्म पेज 3 का, जो कि वर्ष 2005 में रिलीज हुई थी। इसकी गायिका है लता मंगेशकर, गीतकार है संदीप नाथ और संगीत दिया है शमीर टंडन ने। इस गीत के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि लता मंगेशकर ने गाया है और संगीतकार शमीर टंडन के लिए लता जी के साथ काम करना अपने आप में एक सपने जैसा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने गीत जब लता जी को भेजा तो लता जी ने अपने परिवार वालों से चर्चा करने के बाद इस गीत को सहमति दी। और गीत रिश्तों की कोई मीठी तस्वीर नहीं बनाता, कहता है दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मूड आए तो बच के निकलते हैं। कितनी सच्ची पर शायद कड़वी बात है यह। हम अक्सर रिश्तों को उनकी उम्र से मापते हैं, कितने साल से जानते हो, कितने साल के साथ रहे हो, लेकिन कभी कभी कोई इंसान कुछ ही समय के लिए आता है और फिर भी जिंदगी का कोई हिस्सा हमेशा के लिए बदल जाता है। शायद इसीलिए रिश्ते कितने लंबे थे, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि वह कितने सच्चे थे। तो आइए सुनते हैं

और अब रिश्तों की इस पूरी दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा है जिसमें शिकायत भी प्यार है और शरारत भी प्यार, तो वह रिश्ता है माँ और बच्चे का रिश्ता। माँ के लिए बच्चा कभी चांद होता है, कभी सूरज, और कभी इतना नटखट कि बस पूछिए ही मत। लेकिन यही तो उस रिश्ते की खूबसूरती है, जिससे हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, अक्सर वही हमारे दिल के सबसे करीब होता है। यह प्यारा सा गीत फिल्म अमर प्रेम का है, जो कि वर्ष 1972 में रिलीज हुई थी। गायिका लता मंगेशकर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीत आरडी बर्मन का। यशोदा की शिकायत सुनिए। कृष्ण की शरारतें खत्म ही नहीं होती, लेकिन शिकायत के पीछे भी जो प्यार है वह हर पंक्ति में झलकता है। उसे नजर से बचाना है, उसे अपने पास रखना है, उसकी हर शरारत पर नाराज भी होना है, और उसी शरारती बच्चे को देखकर मुस्कुराना भी है। शायद माँ बच्चे का रिश्ता यही है। तुम मुझे कितना भी सता लो, कितना भी परेशान कर लो, तुम मेरे ही हो। तो सुनते हैं

और माँ की तरह पिता का रिश्ता भी सिर्फ आज की कहानी नहीं होता। एक पिता जब अपने बच्चे को देखता है तो शायद उसे सिर्फ वो छोटा सा बच्चा दिखाई नहीं देता, उसे उसका आने वाला कल भी दिखाई देता है। आज उंगली पकड़कर चलवाना और शायद कल उसी बच्चे का हाथ पकड़कर अपनी राह तय करना, यानी रिश्ते सिर्फ हमें जोड़ते नहीं, वक्त के साथ अपनी भूमिकाएं भी बदलते हैं। हमारा अगला गीत फिल्म एक फूल दो माली का है, जो कि वर्ष 1969 में रिलीज हुई थी। इसके गायक हैं मन्ना डे, गीतकार प्रेम धवन और संगीत रवि ने दिया है। यह गीत सुनते हुए एक पिता की आंखों से अपने बच्चे को देखना बहुत खूबसूरत लगता है। बच्चा आज उसकी गोद में है, कल बड़ा होगा और एक दिन शायद वही बच्चा उस पिता का सहारा बनेगा। यानी रिश्ता सिर्फ यह नहीं कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बल्कि यह भी कि एक दिन तुम मेरा भी ख्याल रखोगे। और शायद यही परिवार की सबसे सुंदर परंपरा है, प्यार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। सुनते हैं पंकज चतुर्वेदी की आवाज में तुझे।

लेकिन हर रिश्ता हमें दिखाई दे जरूरी तो नहीं। कुछ रिश्तों को आंखों से नहीं बस महसूस किया जाता है, जैसे कि भगवान या ईश्वर और उनके दर्शन अभिलाषियों का। हम भगवान को देख तो नहीं सकते, पर हम उन्हें शायद महसूस कर सकते हैं। और कहते हैं ना, भगवान ने अपनी छवि में माँ को भेजा है इस धरती पे हमारा ख्याल रखने।

हमारा अगला गीत जो है वह है पिक्चर दादी माँ का, जो कि वर्ष 1966 में रिलीज हुई थी। इसके गायक हैं मन्ना डे और महेंद्र कपूर, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत रोशन का है। जिसे देखा नहीं उसे जाने कैसे, इस गीत का जवाब किसी दर्शन की किताब में नहीं मिलता। और माँ का रिश्ता यहाँ सिर्फ माँ बेटे का रिश्ता नहीं रह जाता, वो बन जाता है ममता का प्रतीक, सुरक्षा का प्रतीक, उस अनदेखे भरोसे का प्रतीक जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन जिनके होने पर कभी शक भी नहीं होता। और शायद रिश्तों की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आइए सुनते हैं मेरे और मेरे पिताश्री की आवाजों में उससे

और अब माँ पिता बच्चा, हमने उन रिश्तों की बात तो कर ली जो कि जीवन हमें दे देता है, लेकिन जिंदगी एक सफर भी है और इस सफर में बहुत से लोग हमारे साथ चलते हैं, कोई कुछ दूर, कोई बहुत दूर और कोई शायद पूरी यात्रा। लेकिन क्या कोई सचमुच हमेशा हमारे साथ रहता है? यही सवाल हमें अगले गीत तक लेके आता है। हमारा आज का पांचवा गीत फिल्म गाइड का है, जो कि वर्ष 1965 में रिलीज हुई थी। गायक एसजी बर्मन, गीतकार शैलेंद्र और संगीत भी एसजी बर्मन ने दिया है। यह गीत रिश्तों को घर से निकालकर जिंदगी के बहुत बड़े कैनवस पर ले जाता है। हम कहते हैं मेरा परिवार, मेरा दोस्त, मेरे अपने, लेकिन जिंदगी का सफर हमें धीरे धीरे सिखाता है कि हर मुसाफिर की अपनी अलग मंजिल होती है। कुछ लोग साथ चलते हैं, कुछ रास्ते में बिछड़ जाते हैं, और फिर भी उनकी मौजूदगी हमारी कहानी का हिस्सा बन जाती है। एसजी वर्मन की अपनी आवाज में यह गीत किसी उपदेश जैसा लगता है, लेकिन लगता है जैसे कोई अनुभवी मुसाफिर चलते चलते बस इतना कह रहा हो, सोच जरा इस सफर में सचमुच तेरा कौन है। सुनते हैं पंकज जी की आवाज में।

और अब इतने सारे रिश्तों के बीच घूमते घूमते हम फिर उसी सवाल पर आ गए हैं कि आखिर रिश्ता क्या होता है। माँ, पिता, बच्चा, दो दोस्त, दो परिवार, दो अजनबी। अब जो मैं अगला गीत लेकर आई हूं उसके बोल हैं यह रिश्ता क्या कहलाता है। आपने शायद इसी नाम का एक फिल्मी गीत भी सुना होगा जो कि मूवी मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज का है, लेकिन आज मैं वह गीत नहीं बजा रही हूं। मैं लेकर आई हूं एक धारावाहिक यानी कि टीवी सीरियल जिसका नाम है यह रिश्ता क्या कहलाता है का टाइटल सॉन्ग। इसे अलका याग्निक जी ने गाया है और इसके पीछे थोड़ी कहानी और थोड़ी फिलॉसफी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अब हम सब जुड़े हुए हैं जयपुर रेडियो से और ये जो धारावाहिक है उसकी कहानी शुरुआत हुई थी उदयपुर से जो कि जयपुर के थोड़े पास ही है। अब हम थोड़े ग्लोबल हो गए हैं तो उदयपुर जयपुर तो खैर पास ही बोलेंगे। और खास बात यह है कि यह शो एक दशक से भी ज्यादा से चलता आ रहा है। माफ कीजिएगा, मैं उस शो को प्रमोट नहीं कर रही यहाँ पे, बट मैं उसके पीछे की कहानी से बता रही हूँ आपको कि वह शो जनवरी 2009 से शुरू हुआ था और अभी 2026 में भी जारी है और मेरी माताश्री उसको एक दशक से भी ज्यादा से देखती आ रही है। जरा सोचिए, जब उन्होंने इसे देखना शुरू किया था तो मैं अपनी जिंदगी के बिल्कुल अलग पड़ाव पर थी। मैं स्कूल या कॉलेज में थी और मैं उनको छेड़ती थी कि क्या ये सास बहू के सीरियल देखते रहती हो जो साल भर साल आगे ही नहीं बढ़ती कहानी, बस वही घूम रही है कहानी और अभी भी चल रहा है। लेकिन शायद यही रिश्तों की एक बहुत दिलचस्प किस्म है, दर्शक और कलाकारों का रिश्ता। हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, वे हमें नहीं जानते, फिर भी सालों तक हम उनके साथ हंसते हैं, रोते हैं, उनकी शादियां देखते हैं, उनके परिवार बढ़ते देखते हैं, उनके बच्चे बड़े होते देखते हैं और धीरे धीरे वे हमारे घर का हिस्सा बन जाते हैं। खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी एक अपनापन है। कुछ वैसा ही रिश्ता मैं जयपुर रेडियो और अपने लिसनर्स के बीच में महसूस करती हूँ। आप मुझे शायद व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, मैं आप सबको नहीं जानती, लेकिन जब आप बार बार लौट कर हमारे साथ ये गीत सुनते हैं, जब आप अपने फीडबैक देते हैं, किसी गीत की फरमाइश करते हैं या बस चुपचाप सुनते हैं, तो एक रिश्ता तो बन ही जाता है। और मेरा दिल इसी उम्मीद में है कि जिस तरह मेरी माँ और इस सीरियल का रिश्ता एक दशक से ज्यादा है, वैसे ही जयपुर रेडियो और हमारे लिसनर्स का रिश्ता भी साल दर साल और मजबूत होता जाए और इस रिश्ते को कोई नाम देने की कोशिश ना करे, बस महसूस कीजिए, क्योंकि शायद आज के पूरे सफर के लिए इससे बेहतर आखिरी सवाल हो ही नहीं सकता। ये रिश्ता

आप सुन रहे थे प्रोग्राम रिश्तों की डोर, और इस प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रही थी अमेरिका सियाटल से स्मृति चतुर्वेदी। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये सुरीला प्रोग्राम यहीं तक।

0: लता जी के इस खूबसूरत टाइमलेस गीत को शबाना आजमी के प्लेबैक के लिए रिकॉर्ड करके अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की एक ऐसी मुतरिबा ने जिनके गले में ही नहीं बल्कि नाम में भी सरस्वती का वास था। शारदा नाम की इस लड़की ने 46 भाषाओं में 50,000 से भी ऊपर गीत हमें दिए और आगे जाकर कविता कृष्णमूर्ति के नाम से जानी गई। तो आइए इस कार्यक्रम का शानदार आगाज करते हैं प्रेरणा और काकोली की मदद से, जो कविता जी का एक ऐसा गीत सुनाएंगी जिसने श्रीदेवी जैसी अदाकारा को हमेशा के लिए हवा हवाई ब्रांड दे दिया। इस गीत से श्रीदेवी की छवि ऐसी जुड़ी कि सिंगापुर के मैडम टुसॉड्स में भी श्रीदेवी जी का वही गेटअप रखा गया है जो कि इस गीत में था। प्रेरणा और काकोली।
1: हवा हवाई।

हवा हवाई कविता जी का पहला पहला हिट नहीं था। 1985 में जब उन्होंने एक बच्चे के माध्यम से मिथुन दास से कहा, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, उसी समय उनकी आवाज फिल्म के हीरो और पिक्चर हॉल में बैठे सभी ऑडियंस के दिलों को छू गई थी। पर क्योंकि इस गाने के डुएट वर्जन को लता जी ने गाया था, कविता जी का नाम कहीं पीछे गुम हो गया। मगर भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। 2 साल बाद आए हवा हवाई, जिसने श्रीदेवी और कविता कृष्णमूर्ति दोनों को ही अपनी अपनी जगह स्टार बना दिया। 1998 में एक डब्ड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड 14 करोड़ रुपए कमाए। उस फिल्म का नाम था बॉम्बे और उसकी पटकथा में जान डालने का काम किया था एक गीत ने, जिसे गाया था हरिहरन साहब और कविता जी ने। तो आइए इसी गीत से इस कार्यक्रम का दिल छूने के लिए बुलाते हैं धनश्री और अभिषेक को।

कविता जी सेंट जेवियर कॉलेज बॉम्बे से पढ़ी हैं और उसके म्यूजिकल फेस्टिवल मल्हार में उनकी मुलाकात हुई रानू मुखर्जी से। रानू ने मिलवाया अपने पिता लीजेंडरी हेमंत कुमार साहब से। हेमंत कुमार उनकी संगीत में पकड़ से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी लाइव परफॉर्मेंसेस के ट्रूप में शामिल कर लिया। यहाँ पे वो मन्ना डे साहब की नजर में भी आ गई और उन्होंने उन्हें एड जिंगल्स गाने का मौका दिया। शायद इसी प्रकार के विविध अनुभवों से आई वर्सेटैलिटी का उदाहरण है कविता जी का वो गीत जिसे रमेश सिप्पी साहब ने बनवाया था फिल्म राम की सीता श्याम की गीता के लिए, मगर मुकुल आनंद ने मांग लिया अग्निपथ के लिए और प्रयोग किया फिल्म हम में। इस गीत की प्रेरणा है एक जर्मन गीत ये के निमो ये के जिसपे बप्पी लहरी साहब भी एक गीत बना चुके थे, लिहाजा कंट्रोवर्सी हुई। मगर आज देखें तो लगता है कि अगर ये गीत रिलीज ना होता तो हिंदुस्तानी जनता एक यूनिक म्यूजिक एक्सपीरियंस से महरूम रह जाती। मगर ये गीत रिलीज हुआ और उसे यहाँ पेश करने आ रहे हैं प्रियंका और राजेंद्र।

0: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
0: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आप तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
0: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
0: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर

एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, गाने को है हम तैयार, सुनने के लिए महफिल सजा लीजिए। और ये महफिल है गजलों की, शामी गजल प्रोग्राम लेके हम उपस्थित हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर, आपकी आवाज आपकी पहचान। और हमारे साथ हैं उड़ीसा भुवनेश्वर से झरना दास, आज की फनकार।

आप सुन रहे हैं झरना दास को भुवनेश्वर से, आपकी आवाज आपकी पहचान, शामी गजल प्रोग्राम में।

और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। और हमारे साथ इस मंच पर शामें गजल प्रोग्राम में झरना दास भुवनेश्वर उड़ीसा से, आइए सुनते हैं एक पंजाबी गजल।

आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। शामे गजल की आज की फनकार झरना दाश।

एक मैं होवा एक तू होवे सजना, और सजना के लिए ये सुरीली आवाज इस गजल में झरना दास की। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान।

दिखाई दिए यूं कि बेखुदी के यार हमें आपसे जुदा कर चले हैं, लेकिन हम जुदा नहीं होंगे। आप सुन रहे हैं झरना दास को, भुवनेश्वर उड़ीसा से, और ये सलोनी आवाज आवाज के साथ ये सुरीला गीत, आइए सुनते हैं।

बिल्कुल सलोना सा सजन है और सलोना आपका ये प्रोग्राम जिसका नाम है शाम गजल और आज की फनकार झरना दास भुवनेश्वर ओडिशा से सलोने से गीत गजलों का ये काफिला लेके आई है झरना आपकी आवाज आपकी पहचान कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी आइए सुने ये खूबसूरत पैगाम

हमारी जान जाएगी तुम्हारे प्यार की खातिर, ना फिर तू सो सकेगा ना फिर तुझे नींद आएगी, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी। ये खूबसूरत गजल आपने सुनी हमारी आज की सिंगर मेहमान फनकार झरना दास से। झरना दास हमारे साथ जुड़ी हुई है उड़ीसा भुवनेश्वर से। आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं अगला कलाम। आवाज फिर वही झरना दास की।

महकी हवा महकी महकी ये शाम महकी महकी और कहती है गजलें बहकी बहकी। आइए सुने झरना दास को।

गुलजार साहब की बेहतरीन गजल को अपनी आवाज दे रही थी झरना दास। और अब एक और बेहतरीन गजल जो नई भी है और हमारे कुछ श्रोताओं ने सुनी भी नहीं है, चौदहवीं शब को चांद कोई ढलता है। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गजल झरना दास की आवाज में। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड शामे गजल प्रोग्राम में। हम हैं आपके साथ झरना दास भुवनेश्वर से हमारे साथ।

जीता हुआ इश्क हार बैठे हैं, इसी तरह दिल को मार बैठे हैं। जैसे हमने मले हैं हाथों को अपने, ऐसे हाथों को भला कौन मलता है, हाय पानी में कौन जलता है। आपने सुनी हमारी आज की फनकार झरना दास से ये खूबसूरत गजल, और अब आइए सुनते हैं। अब कोई अश्क उम्मीद बची हो जैसे, तेरी फरियाद मुझ में दबी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे। आइए सुनते हैं अगली खूबसूरत गजल झरना दास की आवाज में।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे सपना देवगुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी और आप सुन रहे हैं आप सबका मनपसंद प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर अलका, जो पेशे से एक सफल गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन पिछले लगभग 20 वर्षों से अमेरिका में रह रही हैं। दो बेटों की स्नेहमयी माँ होने के साथ साथ इन्होंने अपने व्यस्त पेशेवर जीवन में संगीत के लिए भी एक बहुत खूबसूरत जगह बनाई है। इनकी माताजी ने संगीत में मास्टर्स किया है और वही इनकी पहली प्रेरणा भी रही हैं। पिताजी चीफ इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुए और अब इनका परिवार मुंबई में बस चुका है। डॉक्टर अलका को बचपन से ही संगीत का वातावरण मिला। इन्होंने मंच पर भी कई प्रस्तुतियां दी हैं और पिछले कई वर्षों से स्म्यूल कैरियो के ऐप के माध्यम से भी अपनी मधुर आवाज से श्रोताओं का दिल जीत रही हैं।

0: डॉक्टर अलका जश्न सितारा गीत गुफ्तगु में आपका दिल से स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर रेडियो के श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।
0: जी, हमारे श्रोताओं की आज मैं तो कहूंगी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप जैसी कलाकार के साथ वो रूबरू होने जा रहे हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो अलका, हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों का सिलसिला। जैसे कि मैंने पहले आपके इंट्रोडक्शन में बताया और आपने मुझे बताया कि आपकी माता जी ने संगीत में मास्टर्स किया है, तो
1: जी
0: बचपन में घर का संगीत भरा माहौल कैसा था?
1: एक्चुअली आपको पता होगा कि उस टाइम में ना ज्यादा कुछ तो नहीं होता था कि हम सीख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं,
0: जी,
1: क्योंकि वहाँ पढ़ाई ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती थी उस टाइम में। तो
0: बिल्कुल
1: जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे, और याद है लाइट चली जाती थी, तो
0: जी,
1: जब लाइट जाती थी तो हम सब बहन भाई मिलकर अंताक्षरी खेलते थे।
0: क्या
1: अब
0: बात
1: वो होता क्या था कि डेली की ही लाइट थी उन दिनों में, थोड़े
0: जी
1: टाइम के लिए जरूर जाने होती थी, तो हमारा जो माहौल होता था उस टाइम में अंताक्षरी का माहौल होता था,
0: जी
1: तो
0: जी
1: वहां पर हम खूब गाने गाते थे और मम्मी को भी बुला लेते थे कि आ जाओ मम्मी चलो साथ में गाते हैं।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: वो कह सकते हो कि वो एक तरह से हमारी एक तरह से पाठशाला थी।
0: जी, सबसे पहली आपकी पाठशाला वही थी।
1: पाठशाला
0: और
1: वो ही कह
0: आपने
1: सकते हो।
0: बहुत ठीक कहा कि हम सभी ने अपने बचपन में शायद ये वक्त देखा है। बिजली तो खैर तब भी क्या अब भी जाती है, भारत में तो बहुत जाती है, मुझे अमेरिका का नहीं पता। तो अभी भी जब बिजली जाती है तो तकरीबन वही एक वक्त होता है जब सारा परिवार एक साथ मिलकर बैठता है और वो वक्त हमें जोड़ता है। तो इसी के
1: सच
0: साथ हम
1: में
0: आपका एक गीत लेते हैं।

0: प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर अलका। जैसे कि आपने कहा कि आपके जो माता पिता हैं वो आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं, तो उनके व्यक्तित्व
1: जी
0: की कौन सी ऐसी बात है जो आज भी आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है?
1: एक्चुअली उस टाइम में इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं होती थी जो हमको आजकल मिली हुई हैं, तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे संघर्ष किया है। तो मुझे तो बस यही लगता है कि उनके संघर्ष को देखकर उन्होंने हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। वो बोलते थे कि तुम्हें जो चाहिए हमें बताओ, हम आपको करके देंगे, पर आप बस पढ़ाई करो और अच्छी अच्छी पढ़ाई करो जिससे कि हमारा नाम रोशन कर सको। तो
0: जी
1: बस उनके लाइफ का जो संघर्ष है कि वो संघर्ष करते रहो और अपने ड्रीम्स और गोल्स की तरफ बढ़ते रहो।
0: जी तो डॉक्टर अलका, आपके परिवार में आपके मायके की तरफ से कौन कौन है?
1: मेरे मम्मी पापा और मेरा एक ब्रदर है, मेरे दो सिस्टर्स हैं।
0: अच्छा, तो आप किस
1: मेरा
0: नंबर पर
1: ब्रदर
0: आती हैं?
1: सबसे बड़ी मेरी दीदी है, फिर
0: अच्छा
1: मैं हूँ, फिर मेरा ब्रदर है, वो भी इंजीनियर है
0: अच्छा अच्छा
1: और रिलायंस में इंजीनियर है, आजकल पोस्टेड है बॉम्बे
0: अच्छा
1: में। और मेरी
0: जी
1: छोटी सिस्टर वो भी डॉक्टर है,
0: अरे
1: वो भी
0: वाह
1: बॉम्बे में है।
0: जी। तो जैसे कि आपने कहा कि आपको संगीत की जो प्रेरणा है वो अपनी माता जी से मिली, और जो आपकी पहली पाठशाला थी वो भी घर का संगीतमय माहौल था, तो आप डॉक्टरी की
1: जी
0: तरफ कैसे बढ़ी?
1: बस होता था ना उस टाइम में कि लड़की है तो डॉक्टर बनेगी और लड़का है तो इंजीनियर
0: बिल्कुल
1: बनेगा। तो शुरू से ही था कि बस मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर। हम लोग बहन भाई मिलकर, मैं डॉक्टर बनती थी, मेरे बहन भाई पेशेंट बनते थे, मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो कंपाउंडर बन जाती थी।
0: अरे वाह
1: तो हम लोगों का शुरू से ये था कि हाँ हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। और फिर थोड़ा पढ़ाई में अच्छे थे तो होता गया यही
0: जी, तो भगवान ने आपको सच में डॉक्टर ही बना दिया।
1: डॉक्टर ही बना दिया।
0: बहुत ही रोचक ये आपकी याद है, और इसी के साथ हम आपका एक और गीत लेते हैं।

0: डॉक्टर अलका, एक गायनोकोलॉजिस्ट का जीवन आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है, बहुत व्यस्त और जिम्मेदारियों से भरा होता है। तो ऐसे में
1: जी
0: संगीत के लिए समय निकालना कितना कठिन और कितना सुकून देने वाला है आपके लिए?
1: ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक गायक की लाइफ तो बहुत ही बिजी होती है, क्योंकि हमारा पेशेंट ना दिन रात नहीं देखता, वो किसी भी टाइम आ सकता है, उसका दिन में भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है। तो हमारी लाइफ खैर बिजी तो बहुत होती है गायनिक की, पर हाँ अगर आपको कोई शौक है तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हो। तो मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि अगर मिल जाता है टाइम तो मैं अपने शौक के लिए जरूर निकालती हूँ।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, आजकल हम जैसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत रील्स देखते हैं कि कई डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को म्यूजिक थेरेपी भी देते हैं, तो क्या आप भी इसमें यकीन रखती हैं कि अपने पेशेंट्स का स्ट्रेस दूर करने के लिए या उनके इलाज का एक भाग बनाने के लिए आप म्यूजिक को
1: नहीं,
0: प्राथमिकता देती हूँ?
1: हमारे पेशेंट ना जिस स्टेज पे आते हैं ना तो वो शायद म्यूजिक सुनना ही नहीं चाहेंगे, वो इतने पेन में होते हैं, वो इतने पेन में होते हैं कि वो कहेंगे ये क्या कर रही हो डॉक्टर साहब, जल्दी करो जल्दी करो। या फिर अगर अगर कुछ थोड़ा सीरियस है तो फिर सर्जरी होती है, तो सर्जरी में तो हमारा पेशेंट बेहोश होता
0: जी
1: है, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सॉरी हम उनको म्यूजिक थेरेपी नहीं दे सकते।
0: जी। तो जैसे आप पिछले 20 वर्षों से अमेरिका में हैं, तो क्या अमेरिका में आने से पहले आप भारत में भी प्रैक्टिस करती थी?
1: जी हाँ, मैं प्रैक्टिस करती थी
0: अच्छा, बताएंगे आप
1: जी,
0: हमारी
1: मेरे
0: श्रोताओं को
1: इन-लॉज,
0: कुछ? जी
1: हाँ मैं आगरा में, मतलब तो मेरी शादी हुई है तो
0: जी
1: आगरा में मेरे इन-लॉज का नर्सिंग होम था, तो मैं वहाँ प्रैक्टिस करती थी। फिर तो मेरी रेलवे में जॉब लगी तो रेलवे वाले बोलते थे कि नहीं आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो मैंने वहाँ पे
0: अच्छा
1: बस 2 साल प्रैक्टिस की, 2 साल जॉब की, उसके बाद मैंने छोड़ के अपनी प्रैक्टिस की, क्योंकि फिर अपना नर्सिंग होम है तो फिर कौन देखेगा, फिर इसलिए
0: जी जी तो
1: फिर मैंने हाँ वहाँ पे प्रैक्टिस की।
0: जैसे आप कह रही हैं आपका अपना नर्सिंग होम था, तो क्या आपके सास ससुर भी मेडिकल फील्ड के साथ कनेक्टेड हैं?
1: जी हाँ, दोनों भी डॉक्टर थे। इस
0: अच्छा, तो और इस वक्त आपके ससुराल में कौन कौन है?
1: वक्त मेरी सासू जी हैं
0: जी
1: पर वो अब प्रैक्टिस नहीं करती हैं क्योंकि वो एज की
0: जी जी
1: प्रॉब्लम
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो अब
0: जी
1: वो
0: जी
1: हाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाती हैं, पर अभी
0: जी
1: मेरी सासू जी हैं आगरा में।
0: जी अच्छा, उन्होंने भारत में ही रहने का निर्णय लिया?
1: जी हाँ, तो ये है ना कि बड़े लोग आना नहीं चाहते हैं, देश छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहते,
0: जी
1: और अपनी
0: बिल्कुल
1: जगह जहाँ वो
0: बिल्कुल
1: शुरू से रहे हैं, इतना टाइम उन्होंने बिताया है, जबकि वो
0: बिल्कुल।
1: अकेले हैं फिर भी वो नहीं आना चाहती हैं, तो
0: ये अक्सर आजकल की
1: मेरी
0: जनरेशन को, जो आपकी और हमारी जनरेशन है, उसे ये प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है, क्योंकि
1: जी
0: हमारे
1: हाँ
0: पेरेंट्स की जो रूट्स हैं, जो उनका घर बार है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको लगता है कि भारत से अगर वो चले जाएंगे तो इन सब से उनका नाता टूट जाएगा, तो वो
1: छूट
0: शायद वहीं
1: जाएगा
0: रहने का निर्णय लेते हैं।
1: जी
0: हालांकि उनका ये निर्णय हम लोगों के लिए थोड़ा पीड़ाजनक होता है, क्योंकि हम गिल्ट में आ
1: जी
0: जाते हैं कि हम कैसे उनकी सेवा करें।
1: सेवा करें, बस यही होता है,
0: जी,
1: डेली कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, पर वो बात नहीं होती ना कि
0: वो
1: चलो
0: बात
1: थोड़ी उनकी
0: नहीं
1: सेवा भी
0: रहती।
1: करने को मिल जाए तो वो
0: सही,
1: हो नहीं
0: बिल्कुल
1: पाता।
0: सही। तो आपको अमेरिका और इंडिया दोनों में क्या फर्क लगा? वो यहाँ की रहन सहन, वेशभूषा, बोल चाल, इन सब में क्या फर्क लगा आपको, और कौन सा
1: सबसे
0: देश
1: पहले जब
0: बेहतर लगा?
1: जन्मभूमि कर्मभूमि है, देखा जाए वो तो जन्मभूमि
0: जी
1: हो गई हमारी, ये कर्मभूमि हो गई, आप इतने टाइम से हम यहाँ पर हैं, पर अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो मुझे तो अमेरिका ज्यादा पसंद आया, क्योंकि तो
0: जी
1: लाइफ स्टाइल और सब कुछ, मतलब जितना जो हिंदू कल्चर यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या जो भी फेस्टिवल्स हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, मुझे लगता है आजकल इंडिया में लोग इतना कर पाते हैं, हम हर फेस्टिवल, चाहे वो रक्षाबंधन है, चाहे वो जन्माष्टमी है, चाहे वो दशहरा है, आजकल मैंने देखा है हाँ सब फेस्टिवल हम यहाँ इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मिलके करते हैं, खूब धूमधाम से करते हैं। एंड कभी कभी तो जैसे होली है वो हमारे हर वीकेंड पे होता है, मार्च
0: अरे
1: में होली
0: वाह,
1: आती है,
0: क्या बात है,
1: हर वीकेंड हम होली खेलते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: दिवाली हर वीकेंड पे दिवाली होती है, किसी के घर होती है या किसी मंदिर में होती है, किसी ग्राउंड में होती है, तो
0: जी। और
1: अगर
0: मैंने
1: ऐसे
0: एक बात
1: कम
0: और महसूस की है, यहाँ इस देश में जो अमेरिका है, एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट है, आदर की भावना है, वो भी ज़्यादा है एज़
1: बहुत
0: कम्पेयर
1: ज्यादा है
0: टू। हाँ
1: जी हाँ, अगर आप वॉक कर रहे होगे ना, अगर आप किसी को नहीं भी जानते होगे तो वो अगर आई टू आई कांटेक्ट होता है तो आपको हेलो किए बिना नहीं जाएंगे यहाँ से, आप
0: जी
1: वॉक करेंगे तो वो हेलो हाय हाउ आर यू ये तो बोलेंगे ही, भले आप उनको जानते हो कि नहीं जानते हो। इंडिया
0: जी
1: में तो शायद पता नहीं आजकल क्या
0: नहीं,
1: है
0: वैसे
1: पर
0: इंडिया में भी ये सब तो आजकल होता है, वहां पर जब हम वॉक्स पे
1: होता है।
0: जाते हैं, हेलो हाय नहीं होती,
1: ओके
0: लेकिन राम राम जरूर हो जाती है, तो वो अपना अपना एक
1: अच्छा
0: तरीका होता है सबका विश करने का, बट
1: जी
0: ये सब तो खैर वहां पर भी है। तो डॉक्टर साहब, आपको
1: ओके
0: ये
1: ओके
0: कैसे, आपको क्या लगता है कि संगीत ने अमेरिका में रहते हुए भी आपको अपनी भारतीय जड़ों के साथ जुड़े रखा है? कोई इसका भी कोई
1: बिल्कुल
0: इसमें
1: बिल्कुल,
0: योगदान है?
1: क्योंकि हम ना एक टेम्पल से जुड़े हुए हैं,
0: अच्छा
1: तो हम हर संडे को वहाँ जाते हैं।
0: अच्छा
1: मेरे हस्बैंड उस कमेटी के मेंबर भी हैं, तो हम लोग हर संडे को जाते हैं। तो वहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, और हर संडे को एक आधा घंटे का एक भजन प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे जाके हम भजन गाते हैं। तो वो उस तरह से भी आप कह सकते हो कि संगीत से जुड़े हुए हैं।
0: जी जी जी जी जी बहुत बहुत बहुत ही खूबसूरत बात आपने ये बोली कि आप मंदिर में जाकर भी जो संगीत संध्या करती हैं और उसका हिस्सा बनती
1: जी,
0: हैं, उसने आपको आपकी भारतीय जड़ों से जोड़े रखा है। बहुत
1: जोड़ा
0: खूब
1: हुआ है बिल्कुल।
0: जी। और यहीं पर हम आपका एक गीत और लेते हैं।

0: डॉक्टर अलका, आप एक सफल कलाकार हैं, एक सफल गायिका भी हैं, और आपकी स्म्यूल कैरियोके पे एक बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग भी है, तो निसंदेह आपने मंच पर भी काफी परफॉर्मेंसेस दी होंगी।
1: जी हाँ, आजकल तो इंडिया में तो काफी स्मॉल मीट्स होती
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: तो जब भी मैं इंडिया जाती हूँ अगर कोई स्मॉल मीट होती है तो मैं उसको अटेंड करती हूँ और वहाँ पर कह
0: जी
1: सकते हैं कि स्टेज परफॉर्मेंस दी है।
0: और बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में तो बहुत बहुत ही होती हैं स्म्यूल
1: बहुत होने लगी हैं अब तो। हाँ, अब
0: मीटिंग्स।
1: तो बहुत होने लगी है, हर सिटी का नाम लो और सिटी में स्कूल मीट हो रही होती
0: जी
1: है। नहीं,
0: बिल्कुल
1: वही मैंने कहा, अगर मेरे टाइम में अगर कोई स्कूल मीट होती है तो मैं जरूर अटेंड कर लेती हूँ।
0: जी। आपको ये भी तो रहता होगा कि चलिए अपने दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी।
1: जी हाँ, इसी बहाने मुलाकात हो जाती
0: जी,
1: है।
0: तो क्या कोई ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस जो आपको अभी तक याद हो, अभी भी आपके दिल के बहुत करीब हो और आप हमारे श्रोताओं के साथ वो वाकया साझा करना चाहती हो?
1: मेरा मेडिकल कॉलेज का मैं बता सकती हूँ कि वो मुझे थोड़ा सा मेडिकल कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी तो वहाँ पर एक स्टेज परफॉर्मेंस हमारा प्रोग्राम होते थे वहाँ पर, तो मुझे बोला गया कि अरे तुम अच्छा गाती हो, चलो एक स्टेज परफॉर्मेंस देना अपना करना। हमारे बैच का प्रोग्राम था वो, तो हमारे बैच वालों को करना था। अब इतने बड़े ऑडिटोरियम में जहाँ पे 3,000 स्टूडेंट्स, टीचर्स,
0: जी
1: प्रोफेसर्स, उनकी वाइफ, इतने सब लोगों के सामने स्टेज पे पहुँच कर मेरा तो हो गया नर्वस। पर
0: हाँ
1: मेरे जो फ्रेंड्स थे वो पीछे से इतना बूस्ट कर रहे थे, इतना वर्कअप कर रहे थे, अरे नहीं नहीं कर ले, हो जाएगा पीछे से ना, और किसी भी ऑडियंस को मत देखना, बस ऊपर देखना ही, और देख ऑडियंस को मत देखना। तो मैंने वहां पे परफॉर्म किया था अजीब दास्तां है ये,
0: अरे वाह, क्या
1: और
0: बात है।
1: वो गाना मेरे लिए इतना फेमस हुआ कि मतलब लोग मुझे कहते हैं वो अलका जी का जो वो सॉन्ग है ना अजीब दास्तां है, वो प्ले कीजिए, वो
0: क्या
1: सुनाइए।
0: बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप स्म्यूल तक कब से गा रही हैं?
1: मैं स्कूल पर हूँ 2017 से।
0: जी, तो स्म्यूल पर जो आपको स्म्यूल ने मंच दिया है गायकी का, क्या इस मंच ने आपकी संगीत यात्रा में कोई बदलाव लाया है? कोई आपके परफॉर्मेंसेस आगे से बेहतर हुई हैं? रियाज आपका ज्यादा पक्का हुआ है? स्म्यूल में आपको गाकर क्या लगा? आप में क्या डिफरेंसेस आए हैं?
1: बहुत, ये तो मैं तो कहूंगी क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो यही है। 2017 में मैं जो गाती हूँ, गाती थी, मैं सुनती हूँ अगर,
0: जी
1: और अब की सिंगिंग में बहुत डिफरेंस आया है। एक्चुअली उस टाइम में शायद हमें इतना नॉलेज नहीं थी या आइडिया नहीं था कि कैसे गाना है, बस ट्रैक देखा और गा दिया। जब अब सुनते हैं ना तो अब लगता है यार एक बार यूट्यूब सुन तो लेते, ओरिजिनल सॉन्ग सुन तो लेते कि
0: जी
1: उसमें जो
0: बिल्कुल
1: और कमियां हैं, क्योंकि हम लोग
0: बिल्कुल
1: को कुछ तो इतने पॉपुलर सॉन्ग है ना कि वो ऐसा लगता है अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, यो गा
0: जी,
1: देंगे वो
0: ये
1: गा
0: तो
1: देंगे।
0: चुटकियों में गा देंगे हम। जी
1: हाँ, पर जब बाद में सुनते हैं और ओरिजिनल सॉन्ग सुनते हैं, मैंने कहा वाह इन्होंने कितने अच्छे से लिया है इस वर्ड को, इन्होंने कितने अच्छे से पॉज लिया है। तो अब मैं चीजों को इतनी बारीकी से सुनती हूँ ना, पहले यूट्यूब में, फिर मैं अपना इनवाइट ओपन करती हूँ, और मतलब इतना फर्क तो आया है, बहुत डिफरेंस
0: जी,
1: आया है सिंगिंग
0: ये
1: में,
0: बात
1: मुझे
0: आपने
1: मुझे
0: बिल्कुल
1: ऐसा
0: सही
1: लगता है।
0: कही है। किसी भी हम म्यूजिक लेजेंड का कोई भी गीत, चाहे हम 10 बार सुने, चाहे 20 बार सुने, जब भी हम सुनते हैं तो हमें हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ उसमें मिल जाती है। कोई हरकत
1: जी
0: कहाँ
1: जी
0: पे लेनी है, कोई सरगम किस
1: जी
0: तरह छेड़नी है, कुछ ना कुछ हम
1: जी
0: हमेशा नया सीखते ही सीखते हैं। तो
1: जी
0: आपको किन के गीत पसंद हैं? आप जैसे कितने हमारे लेजेंड्स हैं, लता जी हैं, महेंद्र कपूर जी हैं, रफ़ी साहब हैं, आपको कौन से सिंगर्स के गीत पसंद हैं?
1: एक्चुअली सिंगर्स के तो सभी के गाने बहुत पसंद हैं, पर कुछ कह सकते हैं कि जैसे कुछ फेवरेट होते हैं जिनके मुझे मतलब शुरू से मेरे को इतना अच्छे लगते थे, किशोर कुमार जी एंड आशा भोसले के डुएट्स, तो बस कुछ मिल जाए गाने को
0: जी, और खासकर अगर आरडी
1: म्यूजिक
0: बर्मन जी का म्यूजिक हो साथ में
1: हो, ओहो तो
0: तो
1: बस
0: बहुत ही
1: सोने पे सुहागा।
0: इररेसिस्टिबल कॉम्बिनेशन बन जाता है। जी।
1: जी
0: तो डॉक्टर साहब, अगर मैं आपको कहूँ कि हमारी श्रोताओं के लिए आप आशा जी या किशोर दा का कोई गीत समर्पित कीजिए, तो आप कौन सा गीत चुनेंगी?
1: वेरी टफ क्वेश्चन। इतने सारे सॉन्ग्स में से जो कि
0: जी,
1: इनके इतने अच्छे हैं उनमें से एक बताना तो बहुत ही मुश्किल
0: जो कि
1: काम
0: आप,
1: है।
0: मैं अगर अभी कहूं कि हमारे श्रोताओं को समर्पित कीजिए।
1: ये तो बहुत मुश्किल काम है, पर हाँ अच्छा, ये तो सॉन्ग कर सकते हैं अपने श्रोताओं को समर्पित कि हाल कैसा है जनाब का, हाल
0: अरे
1: कैसा है
0: वाह,
1: श्रोताओं आपका।
0: तो
1: इसमें
0: आपसे इतनी
1: इसमें
0: सी गुजारिश है कि अभी आप गा के सुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए ये
1: अरे
0: गीत।
1: अरे सपना जी, बड़ा मुश्किल काम है ये तो। इतने वेरिएशन से इस सॉन्ग में दोनों ने इतना अच्छे से परफॉर्म किया है, किशोर कुमार
0: जी
1: जी के हीरोइनिंग और आशा जी के वो नखरे ना, मधुबाला जी के जो नखरे, बिल्कुल आप उनकी सिंगिंग में पता लगा सकते हो कि उन्होंने मधुबाला जी के लिए गाया होगा,
0: अरे बिल्कुल
1: जो उनकी
0: बिल्कुल
1: अदाएं हैं।
0: जी जी जी जी जी तो
1: तो
0: हो
1: हाँ
0: जाए,
1: जी,
0: चलिए मैं किशोरदा
1: चलिए दो
0: बनती हूँ
1: लाइन
0: आपके लिए,
1: सुनाती
0: दो
1: हूँ।
0: लाइंस में मैं
1: अच्छा
0: किशोरदा बन जाती हूँ आपके लिए, आप आशा जी बन जाएंगी,
1: ठीक
0: ठीक,
1: है,
0: सिर्फ
1: चले
0: दो लाइन
1: ये
0: है
1: सही रहेगा।
0: ना।
1: जी हाँ।
0: हल्के सहजनाब का तुम
1: क्या ख्याल है आपका,
0: तो मचल गए हो,
1: यूं ही फिसल गए। हा।
0: मुझे लगता है उल्टा हो
1: उल्टा हो
0: गया।
1: गया ना, ऐसे मुझे भी लगा कि मैं अटक गई। चलो कोई बात
0: हाँ
1: नहीं।
0: कोई बात नहीं, चलिए इस बहाने
1: मैं
0: आपके
1: किशोर
0: साथ
1: बन गई,
0: मुझे
1: आप
0: गाने का
1: आशा बन
0: मौका मिल गया।
1: गए।
0: जी जी

0: सब दो बेटों की माँ होने के साथ साथ आप एक डॉक्टर हैं, संगीत प्रेमी हैं, अपना परिवार संभालती हैं, मंदिर के साथ एसोसिएटेड हैं, संगीत संध्या में भी हिस्सा लेती हैं और निसंदेह आप अपने दोस्तों में भी बहुत पॉपुलर हैं। तो इन सभी भूमिकाओं के बीच में संतुलन कैसे बनाती हैं आप?
1: संतुलन तो कह सकते हैं, लाइफ है तो व्यस्तता भी रहेगी।
0: जी
1: और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि संतुलित होने के लिए आपको वक्त के साथ थोड़ा बहुत तो बदलाव करना पड़ेगा।
0: जी तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश दीजिए, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी व्यस्त जिंदगी में भी अपने शौक को जिंदा रखना चाहते हैं।
1: जी, लाइफ है तो काम है, व्यस्तता भी है, बट आई वुड से कि अपने लिए थोड़ा सा तो वक्त निकालिए,
0: जी
1: अपने अपने शौक को पूरा करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, फाइव
0: जी
1: मिनट्स 10 मिनट्स एटलीस्ट।
0: जो कि
1: मैं तो ये
0: जिसको आजकल
1: कहूँगी
0: हम कहते हैं कि
1: एटलीस्ट,
0: मी टाइम है, वो बहुत जरूरी है
1: या
0: हमारे
1: बहुत
0: लिए।
1: जरूरी है। जी हाँ, तो अगर आपके पास कोई भी शौक है, मैं ये नहीं कहूँगी सिंगिंग ही है, जो भी शौक है उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा टाइम तो अपनी इस बिजी लाइफ में से निकालना चाहिए और इतना टाइम तो देना चाहिए
0: जी वो
1: जिससे कि
0: हमारे
1: आपके
0: सुकून
1: शौक को
0: के लिए
1: जिंदा
0: भी
1: रख
0: बहुत
1: सके।
0: जरूरी है। और
1: जी हाँ
0: जी, आपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव, संगीत के प्रति अपने प्रेम और जीवन की खूबसूरत सोच को जो हमारे साथ साझा किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम की ओर से आपका दिल से धन्यवाद।
1: थैंक यू सपना, थैंक यू सो मच, और मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जयपुर रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत
0: जी
1: अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी हमें भी, और हम यही कामना करते हैं कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में इसी तरह सेवा करती रहें और संगीत की मधुर धुनों से सबका दिल जीतती रहें। और हमारे
1: थैंक
0: प्यारे
1: यू,
0: श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत, एक नई कहानी और नई गीतों के साथ। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रब राखा।
2: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम संगीते शाम, और संगीते शाम में हमारे आज के मेहमान कलाकार हैं गोविंदगढ़ पंजाब से जगदीश अरोड़ा और USA से अलका लश्करी। आज आप सुनेंगे आप दोनों के युगल गीत, और हम तो यही कहेंगे आइए शोक से गाइए। आप चाहें तो कुछ और कह सकते हैं, जगदीश अरोड़ा और अलका लश्करी संगीते शाम प्रोग्राम में।

0: आइए बैठिए। क्या है आपका नाम? और नाम हम बता देते हैं कि आज संगीत शाम में हमारे साथ जो सिंगर्स हैं उनके नाम हैं गोविंदगढ़ पंजाब के जगदीश अरोड़ा और यूएसए से अलका लश्करी। और जब कहेंगे गुलाम ही हो गए, तो जब कहेंगे तब बैठेंगे, जब कहेंगे तब उठेंगे, जब आप कहेंगे गाएंगे तो हम तो यही कहेंगे कि आप गाइए ना।
1: बैठ जा, खड़े हो जा,

गीतों से भी आप जादू कर सकते हैं। आवाज की जादूगरी आपने देख ही ली, वशीकरण भी है और सम्मोहन भी है। मोहक से गीत हमने सुने जगदीश अरोड़ा और अलका की आवाजों में। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम संगीत शाम। और जब ऐसा हो जाता है वशीकरण गीतों का, आवाज का, तो फिर सब कुछ भूलना भी पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहिए और गाते रहिए। आपकी आवाज आपकी पहचान। अलका लश्करी यूएसए से और पंजाब से जगदीश अरोड़ा। आपकी आवाज आपकी।

जी हाँ, गीतों की जादूगरी है और एक ही बात है जो कभी भूली नहीं जाती इन गीतों में। हम हर गीत में यही गाते हैं, यही कहते हैं और इसी को पाने की तड़पती रहती है और इसी की दुश्वारी है, फिर भी हमें आपसे यारी है। आपकी आवाज आपकी पहचान। संगीत शाम प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं जगदीश अरोड़ा और अलका लश्करी की आवाजें डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं अगला खूबसूरत गीत जगदीश अरोड़ा और अलका की आवाजों में।

की गल है। जी हाँ, और इस गल को आप सभी जानते हैं, हमारे सुनने वाले भी जानते हैं, और ये गल ये बात आप तक पहुंचाई यूएसए की अलका लश्करी और पंजाब के गोविंदगढ़ से जगदीश अरोड़ा। आपकी आवाज, आपकी पहचान, संगीत शाम प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश आप दोनों की आवाजों में।

मास्टर्स किया है और वही इनकी पहली प्रेरणा भी रही हैं। पिताजी चीफ इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुए और अब इनका परिवार मुंबई में बस चुका है। डॉक्टर अलका को बचपन से ही संगीत का वातावरण मिला। इन्होंने मंच पर भी कई प्रस्तुतियां दी हैं और पिछले कई वर्षों से स्म्यूल कैरियोके ऐप के माध्यम से भी अपनी मधुर आवाज से श्रोताओं का दिल जीत रही हैं।

0: डॉक्टर अलका जश्न सितारा गीत गुफ्तगू में आपका दिल से स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर रेडियो के श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।
0: जी, हमारे श्रोताओं की आज मैं तो कहूंगी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप जैसी कलाकार के साथ वो रूबरू होने जा रहे हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो अलका, हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों का सिलसिला। जैसे कि मैंने पहले आपके इंट्रोडक्शन में बताया और आपने मुझे बताया कि आपकी माता जी ने संगीत में मास्टर्स किया है, तो बचपन में घर का संगीत भरा माहौल कैसा था?
1: एक्चुअली आपको पता होगा कि उस टाइम में ना ज्यादा कुछ तो नहीं होता था कि हम सीख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं,
0: जी,
1: क्योंकि वहाँ पढ़ाई ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती थी उस टाइम में। तो
0: बिल्कुल
1: जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे और याद है लाइट चली जाती थी,
0: जी,
1: तो जब लाइट जाती थी तो हम सब बहन भाई मिलकर अंताक्षरी खेलते थे।
0: क्या
1: अब
0: बात है।
1: वो होता क्या था कि डेली की ही लाइट थी उन दिनों में,
0: जी
1: थोड़े टाइम के लिए जरूर जाने होती थी, तो हमारा जो माहौल होता था उस टाइम में अंताक्षरी का माहौल होता था,
0: जी जी
1: तो वहां पर हम खूब गाने गाते थे और मम्मी को भी बुला लेते थे कि आ जाओ मम्मी चलो साथ में गाते हैं।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: वो कह सकते हो कि वो एक तरह से हमारी एक तरह से पाठशाला थी।
0: जी, सबसे पहली आपकी पाठशाला वही थी।
1: पाठशाला
0: और
1: वही
0: आपने
1: कह सकते हो।
0: बहुत ठीक कहा कि हम सभी ने अपने बचपन में शायद ये वक्त देखा है। बिजली तो खैर तब भी क्या अब भी जाती है, भारत में तो बहुत जाती है, मुझे अमेरिका का नहीं पता, तो अभी भी जब बिजली जाती है तो तकरीबन वही एक वक्त होता है जब सारा परिवार एक साथ मिलकर बैठता है और वो वक्त हमें जोड़ता है। तो इसी के साथ हम आपका एक गीत लेते हैं।

0: प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर अलका। जैसे कि आपने कहा कि आपके जो माता पिता हैं वो आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं, तो उनके व्यक्तित्व
1: जी
0: की कौन सी ऐसी बात है जो आज भी आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है?
1: एक्चुअली उस टाइम में इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं होती थी जो हमको आजकल मिली हुई हैं,
0: जी
1: तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे संघर्ष किया है। तो मुझे तो बस यही लगता है कि उनके संघर्ष को देखकर उन्होंने हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। वो बोलते थे कि तुम्हें जो चाहिए हमें बताओ, हम आपको करके देंगे, पर आप बस पढ़ाई करो और अच्छी अच्छी पढ़ाई करो जिससे कि हमारा नाम रोशन कर सको। तो
0: जी
1: बस उनके लाइफ का जो संघर्ष है कि वो संघर्ष करते रहो और अपने ड्रीम्स और गोल्स की तरफ बढ़ते रहो।
0: जी तो डॉक्टर अलका, आपके परिवार में आपके मायके की तरफ से कौन कौन है?
1: मेरे मम्मी पापा और मेरा एक ब्रदर है, मेरे दो सिस्टर्स हैं।
0: अच्छा, तो आप किस
1: मेरा
0: नंबर पर
1: ब्रदर,
0: आती
1: सबसे
0: हैं?
1: बड़ी मेरी दीदी है,
0: अच्छा
1: फिर मैं हूँ, फिर मेरा ब्रदर है, वो भी
0: अच्छा
1: इंजीनियर है
0: अच्छा अच्छा
1: और रिलायंस में इंजीनियर है, आजकल पोस्टेड है बॉम्बे
0: अच्छा
1: में। और मेरी
0: जी
1: छोटी सिस्टर, वो भी डॉक्टर है,
0: अरे
1: वो भी
0: वाह
1: बॉम्बे में है।
0: जी। तो जैसे कि आपने कहा कि आपको संगीत की जो प्रेरणा है वो अपनी माता जी से मिली, और जो आपकी पहली पाठशाला थी वो भी घर का संगीतमय माहौल था, तो आप डॉक्टरी की
1: जी
0: तरफ कैसे बढ़ी?
1: बस होता था ना उस टाइम में कि लड़की है तो डॉक्टर बनेगी और लड़का है तो इंजीनियर
0: बिल्कुल
1: बनेगा। तो शुरू से ही था कि बस मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर। हम लोग बहन भाई मिलकर, मैं डॉक्टर बनती थी, मेरे बहन भाई पेशेंट बनते थे, मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो कंपाउंडर बन जाती थी।
0: अरे वाह
1: तो हम लोगों का शुरू से ये था कि हाँ, हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। और फिर थोड़ा पढ़ाई में अच्छे थे तो होता गया यही।
0: जी, तो भगवान ने आपको सच में डॉक्टर ही बना दिया।
1: डॉक्टर ही बना दिया।
0: बहुत ही रोचक ये आपकी याद है, और इसी के साथ हम आपका एक और गीत लेते हैं।

0: डॉक्टर अलका, एक गायनोकोलॉजिस्ट का जीवन आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है, बहुत व्यस्त और जिम्मेदारियों से भरा होता है। तो ऐसे में
1: जी
0: संगीत के लिए समय निकालना कितना कठिन और कितना सुकून देने वाला है आपके लिए।
1: ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक गायने की लाइफ तो बहुत ही बिजी होती है, क्योंकि हमारा
0: जी
1: पेशेंट ना दिन रात नहीं देखता, वो किसी भी टाइम आ सकता है, उसका दिन में भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है। तो हमारी लाइफ खैर बिजी तो बहुत होती है गायने की, पर हाँ अगर आपको कोई शौक है तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हो। तो
0: जी
1: मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि अगर मिल जाता है टाइम तो मैं अपने शौक के लिए जरूर निकालती हूँ।
0: जी तो डॉक्टर साहब, आजकल हम जैसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत रील्स देखते हैं कि कई डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को म्यूजिक थेरेपी भी देते हैं, तो क्या आप भी इसमें यकीन रखती हैं कि अपने पेशेंट्स का स्ट्रेस दूर करने के लिए या उनके इलाज का एक भाग बनाने के लिए आप म्यूजिक को प्राथमिकता देती हूँ?
1: नहीं, हमारे पेशेंट ना जिस स्टेज पे आते हैं ना, तो वो शायद म्यूजिक सुनना ही नहीं चाहेंगे, वो इतने पेन में होते हैं, वो इतने पेन में होते हैं कि वो कहेंगे ये क्या कर रही हो डॉक्टर साहब, जल्दी करो जल्दी करो। या फिर अगर अगर कुछ थोड़ा सीरियस है तो फिर सर्जरी होती है, तो सर्जरी में तो हमारा पेशेंट बेहोश होता
0: जी
1: है, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सॉरी हम उनको म्यूजिक थेरेपी नहीं दे सकते।
0: जी। तो जैसे आप पिछले 20 वर्षों से अमेरिका में हैं, तो क्या अमेरिका में आने से पहले आप भारत में भी प्रैक्टिस करती थीं?
1: जी हाँ, मैं प्रैक्टिस करती थी
0: अच्छा, बताएंगे आप
1: जी,
0: हमारे
1: मेरे
0: श्रोताओं को कुछ?
1: इन-लॉज, हाँ मैं आगरा में, मतलब मेरी शादी हुई है तो
0: जी
1: आगरा में मेरे इन-लॉज का नर्सिंग होम था, तो मैं वहाँ प्रैक्टिस करती थी। फिर मेरी रेलवे में जॉब लगी तो रेलवे वाले बोलते थे कि नहीं आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो मैंने वहाँ
0: अच्छा
1: पे बस 2 साल प्रैक्टिस की, 2 साल जॉब की, उसके बाद मैंने छोड़ के अपनी प्रैक्टिस की, क्योंकि फिर अपना नर्सिंग होम है तो फिर कौन देखेगा फिर इसलिए।
0: जी
1: फिर
0: जी
1: मैंने हाँ वहाँ पे प्रैक्टिस की।
0: तो जैसे आप कह रही हैं आपका अपना नर्सिंग होम था, तो क्या आपके सास ससुर भी मेडिकल फील्ड के साथ कनेक्टेड हैं?
1: जी हाँ, दोनों भी डॉक्टर थे।
0: अच्छा, तो और इस वक्त आपके ससुराल में कौन कौन है?
1: इस वक्त मेरी सासू जी हैं
0: जी
1: पर वो अब प्रैक्टिस नहीं करती हैं, क्योंकि वो एज की
0: जी जी
1: प्रॉब्लम
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो अब
0: जी
1: वो
0: जी
1: हाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाती हैं,
0: जी
1: पर अभी मेरी सासू जी हैं आगरा में।
0: जी अच्छा, उन्होंने भारत में ही रहने का निर्णय लिया।
1: जी हाँ, तो ये है ना कि बड़े लोग वो आना नहीं चाहते हैं, देश छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहते,
0: जी
1: अपनी
0: बिल्कुल
1: जगह जहाँ वो
0: बिल्कुल
1: शुरू से रहे हैं, इतना टाइम उन्होंने बिताया है, जबकि वो
0: बिल्कुल।
1: अकेले हैं फिर भी वो नहीं आना चाहती हैं।
0: ये अक्सर आजकल की
1: मेरे
0: जनरेशन को, जो आपकी और हमारी जनरेशन है, उसे ये प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है, क्योंकि
1: जी
0: हमारे
1: हाँ
0: पेरेंट्स के जो रूट्स हैं, जो उनका घर बार है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको लगता है कि भारत से अगर वो चले जाएंगे तो इन सब से उनका नाता टूट जाएगा, तो वो
1: छूट
0: शायद वहीं
1: जाएगा
0: रहने का निर्णय लेते हैं।
1: जी
0: हालांकि उनका ये निर्णय हम लोगों के लिए थोड़ा पीड़ाजनक होता है, क्योंकि हम गिल्ट में आ
1: जी
0: जाते हैं कि हम कैसे उनकी सेवा करें।
1: सेवा करें, बस यही होता है।
0: जी
1: डेली कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, पर वो बात नहीं होती ना कि
0: वो
1: चलो
0: बात
1: थोड़ी
0: नहीं
1: उनकी सेवा
0: रहती।
1: भी करने को मिल जाए, तो वो
0: सही,
1: हो नहीं
0: बिल्कुल
1: पाता।
0: सही। तो आपको अमेरिका और इंडिया दोनों में क्या फर्क लगा? वो यहाँ की रहन सहन, वेशभूषा, बोल चाल, इन सब में क्या फर्क लगा आपको, और कौन सा
1: सबसे
0: देश
1: पहले जो
0: बेहतर लगा?
1: जन्मभूमि कर्मभूमि है, देखा जाए वो तो
0: जी
1: जन्मभूमि हो गई हमारी, ये कर्मभूमि हो गई, आप इतने टाइम से हम यहाँ पर हैं। पर अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो मुझे तो अमेरिका ज्यादा पसंद आया, तो
0: जी
1: लाइफ स्टाइल और सब कुछ, मतलब जितना जो हिंदू कल्चर यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या जो भी फेस्टिवल्स हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, मुझे लगता है आजकल इंडिया में लोग इतना कर पाते हैं। हम हर फेस्टिवल, चाहे वो रक्षाबंधन है, चाहे वो जन्माष्टमी है, चाहे वो दशहरा है, आजकल मैंने देखा है हाँ सब फेस्टिवल हम यहाँ इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मिलके करते हैं, खूब धूमधाम से करते हैं। एंड कभी कभी तो जैसे होली है वो हमारे हर वीकेंड पे होता है, मार्च
0: अरे
1: में
0: वाह,
1: होली आती है,
0: क्या बात है,
1: हर वीकेंड हम होली खेलते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: दिवाली हर वीकेंड पे दिवाली होती है, किसी के घर होती है या किसी मंदिर में होती है, किसी ग्राउंड में होती है, तो
0: जी। और
1: अगर
0: मैंने
1: ऐसे
0: एक बात
1: कम
0: और महसूस की है, यहाँ इस देश में जो अमेरिका है, एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट है, आदर की भावना है, वो भी ज़्यादा है एज़
1: बहुत
0: कम्पेयर
1: ज्यादा है
0: टू। हाँ
1: जी हाँ, अगर आप वॉक कर रहे होगे ना, अगर आप किसी को नहीं भी जानते होगे तो वो अगर आई टू आई कांटेक्ट होता है तो आपको हेलो किए बिना नहीं जाएंगे यहाँ से। आप
0: जी
1: वॉक कर रहे होंगे तो वो हेलो हाय हाउ आर यू ये तो बोलेंगे ही, भले आप उनको जानते हो कि नहीं जानते हो। इंडिया
0: जी
1: में तो शायद पता नहीं आजकल क्या
0: नहीं,
1: है,
0: वैसे
1: पर
0: इंडिया में भी ये सब तो आजकल होता है, वहाँ पर जब हम वॉक्स पे
1: होता है
0: जाते हैं, हेलो हाय नहीं होती,
1: ओके
0: लेकिन राम राम जरूर हो जाती है, तो वो अपना अपना एक
1: अच्छा
0: तरीका होता है सबका विश करने का, बट
1: जी
0: ये सब तो खैर वहाँ पर भी है। तो डॉक्टर साहब, आपको ये
1: ओके ओके
0: कैसे, आपको क्या लगता है कि संगीत ने अमेरिका में रहते हुए भी आपको अपनी भारतीय जड़ों के साथ जुड़े रखा है? कोई इसका भी कोई
1: बिल्कुल
0: इसमें
1: बिल्कुल,
0: योगदान
1: क्योंकि
0: है?
1: हम एक टेंपल से जुड़े हुए हैं,
0: अच्छा
1: तो हम हर संडे को वहाँ जाते हैं।
0: अच्छा
1: मेरे हस्बैंड उस कमेटी के मेंबर भी हैं, तो हम लोग हर संडे को जाते हैं। तो वहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, और हर संडे को एक आधा घंटे का एक भजन प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे जाके हम भजन गाते हैं। तो वो उस तरह से भी आप कह सकते हो कि संगीत से जुड़े हुए हैं।
0: जी जी जी जी जी बहुत बहुत बहुत ही खूबसूरत बात आपने ये बोली कि आप मंदिर में जाकर भी जो संगीत संध्या करती हैं और उसका हिस्सा
1: जी,
0: बनती हैं, उसने आपको आपकी भारतीय जड़ों से जुड़े रखा है। बहुत
1: जोड़ा
0: खूब
1: हुआ है बिल्कुल।
0: जी। और यहीं पर हम आपका एक गीत और लेते हैं।

0: डॉक्टर हल्का, आप एक सफल कलाकार हैं, एक सफल गायिका भी हैं और आपकी स्म्यूल कैरियोके पे एक बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग भी है, तो निसंदेह आपने मंच पर भी काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी होंगी।
1: जी हाँ, आजकल तो इंडिया में तो काफी स्मॉल मीट्स होती
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: तो जब भी मैं इंडिया जाती हूँ अगर कोई स्मॉल मीट होती है तो मैं उसको अटेंड करती हूँ और वहां पर कह
0: जी
1: सकते हैं कि स्टेज परफॉर्मेंस दी है।
0: और बिल्कुल उत्तर प्रदेश में तो बहुत बहुत ही होती हैं स्म्यूल
1: बहुत होने
0: मीटिंग।
1: लगी हैं अब तो। हाँ, अब तो बहुत होने लगी है, हर सिटी का नाम लो और सिटी में स्कूल मीट हो रही होती
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल
1: नहीं, वही मैंने कहा अगर मेरे टाइम में अगर कोई स्कूल मीट होती है तो मैं जरूर अटेंड कर लेती हूँ।
0: जी। आपको ये भी तो रहता होगा कि चलिए अपने दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी।
1: जी हाँ, इसी बहाने मुलाकात हो जाती
0: जी,
1: है।
0: तो क्या कोई ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस जो आपको अभी तक याद हो, अभी भी आपके दिल के बहुत करीब हो और आप हमारे श्रोताओं के साथ वो वाकया साझा करना चाहती हो?
1: मेरा मेडिकल कॉलेज का मैं बता सकती हूँ कि वो मुझे थोड़ा सा मेडिकल कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी तो वहाँ पर एक स्टेज परफॉर्मेंस हमारा प्रोग्राम होते थे वहाँ पर, तो मुझे बोला गया कि अरे तुम अच्छा गाती हो, चलो एक स्टेज परफॉर्मेंस देना अपना करना। हमारे बैच का प्रोग्राम था वो, तो हमारे बैच वालों को करना था। अब इतने बड़े ऑडिटोरियम में जहाँ पे 3,000 स्टूडेंट्स, टीचर्स,
0: जी
1: प्रोफेसर, उनकी वाइफ, इतने सब लोगों के सामने स्टेज पे पहुँच कर मेरा तो हो गया नर्वस। पर
0: हाँ
1: मेरे जो फ्रेंड्स थे वो पीछे से इतना बूस्ट कर रहे थे, इतना वर्कअप कर रहे थे, अरे नहीं नहीं कर ले, हो जाएगा हो जाएगा, पीछे से ना। और किसी भी ऑडियंस को मत देखना, बस ऊपर देख रही और देख, ऑडियंस को मत देखना। तो मैंने वहां पे परफॉर्म किया था अजीब दास्तान है ये,
0: अरे वाह, क्या
1: और
0: बात
1: वो
0: है।
1: गाना मेरे लिए इतना फेमस हुआ कि मतलब लोग मुझे कहते हैं वो अलका जी का जो वो सॉन्ग है ना अजीब दास्तान है, वो प्ले कीजिए, वो
0: क्या
1: सुनाइए।
0: बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप स्म्यूल तक कब से गा रही हैं?
1: मैं स्कूल पर हूँ 2017 से।
0: जी। तो स्म्यूल पर जो आपको स्म्यूल ने मंच दिया है गायकी का, क्या इस मंच ने आपकी संगीत यात्रा में कोई बदलाव लाया है? कोई आपके परफॉर्मेंसेस आगे से बेहतर हुई हैं? रियाज आपका ज़्यादा पक्का हुआ है? स्म्यूल में आपको गाकर क्या लगा? आप में क्या डिफरेंसेस आए हैं?
1: बहुत, ये तो मैं तो कहूंगी क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो यही है। 2017 में मैं जो गाती हूँ, गाती थी, मैं सुनती हूँ अगर, और अब की सिंगिंग में बहुत डिफरेंस आया है। एक्चुअली उस टाइम में शायद हमें इतना नॉलेज नहीं थी या आइडिया नहीं था कि कैसे गाना है, बस ट्रैक देखा और गा दिया। जब अब सुनते हैं ना तो लगता है यार एक बार यूट्यूब सुन तो लेते, ओरिजिनल सॉन्ग सुन तो लेते कि
0: जी
1: उसमें जो
0: बिल्कुल
1: और कमियां हैं, क्योंकि हम
0: बिल्कुल
1: लोग कुछ तो इतने पॉपुलर सॉन्ग है ना कि वो ऐसा लगता है अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, यो गा
0: जी,
1: देंगे वो
0: ये
1: गा
0: तो
1: देंगे।
0: चुटकियों में गा देंगे हम। जी
1: हाँ, पर जब बाद में सुनते हैं और ओरिजिनल सॉन्ग सुनते हैं, मैंने कहा वाह इन्होंने कितने अच्छे से लिया है इस वर्ड को, इन्होंने कितने अच्छे से पॉज लिया है। तो अब मैं चीजों को इतनी बारीकियों से सुनती हूँ ना, पहले यूट्यूब में, फिर मैं अपना इनवाइट ओपन करती हूँ, और मतलब इतना फर्क तो आया है, बहुत डिफरेंस आया
0: जी,
1: है सिंगिंग
0: ये
1: में,
0: बात
1: मुझे
0: आपने
1: मुझे
0: बिल्कुल
1: ऐसा
0: सही
1: लगता है।
0: कही है। किसी भी हम म्यूजिक लेजेंड का कोई भी गीत चाहे हम 10 बार सुने, चाहे 20 बार सुने, जब भी हम सुनते हैं तो हमें हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ उसमें मिल जाती है। कोई हरकत
1: जी
0: कहाँ
1: जी
0: पे लेनी है, कोई सरगम किस
1: जी
0: तरह छेड़नी है, कुछ ना कुछ हम
1: जी
0: हमेशा नया सीखते ही सीखते हैं। तो
1: जी
0: आपको किन के गीत पसंद हैं? आप जैसे कितने हमारे लेजेंड्स हैं, लता जी हैं, महेंद्र कपूर जी हैं, रफ़ी साहब हैं, आपको कौन से सिंगर्स के गीत पसंद हैं?
1: एक्चुअली सिंगर्स के तो सभी के गाने बहुत पसंद हैं,
0: जी
1: पर कुछ कह सकते हैं कि जैसे कुछ फेवरेट होते हैं जिनके मुझे मतलब शुरू से मेरे को इतना अच्छे लगते थे,
0: जी
1: किशोर कुमार जी एंड आशा भोसले के डुएट्स, तो बस कुछ मिल जाए गाने को म्यूजिक
0: जी और खासकर अगर आरडी बर्मन जी का म्यूजिक हो साथ में
1: हो, ओहो तो
0: तो बहुत
1: बस
0: ही
1: सोने तो सुहागा।
0: इररेजिस्टिबल कॉम्बिनेशन बन जाता है। जी।
1: जी
0: तो डॉक्टर साहब, अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे श्रोताओं के लिए आप आशा जी या किशोर दा का कोई गीत समर्पित कीजिए, तो आप कौन सा गीत चुनेंगी?
1: वेरी टफ क्वेश्चन। इतने सारे सॉन्ग्स में से जो कि
0: जी,
1: इनके इतने अच्छे हैं उनमें से एक बताना तो बहुत ही मुश्किल
0: जो कि
1: काम
0: आप,
1: है।
0: मैं अगर अभी कहूं कि हमारे श्रोताओं को समर्पित कीजिए।
1: ये तो बहुत मुश्किल काम है, पर हाँ अच्छा, ये तो सॉन्ग कर सकते हैं अपने श्रोताओं को समर्पित कि हाल कैसा है जनाब का, हाल
0: अरे
1: कैसा है
0: वाह,
1: श्रोताओं आपका।
0: तो
1: इसमें
0: आपसे इतनी
1: इसमें
0: सी गुजारिश है कि अभी आप गा के सुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए
1: अरे
0: ये
1: अरे सपना जी, बड़ा मुश्किल काम है ये
0: गीत।
1: तो। इतने वेरिएशन से इस सॉन्ग में, और दोनों ने इतना अच्छे से परफॉर्म किया है, किशोर कुमार
0: जी
1: जी के योरिंग और आशा जी के, वो नखरे ना मधुबाला जी के जो नखरे, बिल्कुल आप उनकी सिंगिंग में पता लगा सकते हो कि उन्होंने मधुबाला जी के लिए गाया होगा,
0: अरे बिल्कुल
1: ये उनकी
0: बिल्कुल
1: अदाएं हैं।
0: जी, तो
1: तो
0: हो जाए।
1: अभी
0: चलिए मैं किशोरदा
1: चलिए दो
0: बनती हूँ
1: लाइन
0: आपके लिए,
1: सुनाती हूँ।
0: दो लाइंस में मैं
1: अच्छा
0: किशोरदा बन जाती हूँ आपके लिए, आप आशा जी बन जाइए।
1: ठीक
0: ठीक,
1: है,
0: सिर्फ
1: चले
0: दो लाइन
1: ये
0: है
1: सही रहेगा
0: ना।
1: जी। हाँ।
0: हाँ।

0: मुझे लगता है उल्टा हो गया।
1: उल्टा हो
0: हाँ
1: गया ना, ऐसे मुझे भी लगा कि मैं अटक गई। चलो कोई बात
0: कोई
1: नहीं।
0: बात नहीं, चलिए इस बहाने
1: मैं
0: आपके
1: किशोर
0: साथ
1: बन
0: मुझे
1: गया,
0: गाने का
1: पाशा बन
0: मौका मिल
1: गई
0: गया। जी।
1: जी।

0: डॉक्टर साहब, दो बेटों की माँ होने के साथ साथ आप एक डॉक्टर हैं, संगीत प्रेमी हैं, अपना परिवार संभालती हैं, मंदिर के साथ एसोसिएटेड हैं, संगीत संध्या में भी हिस्सा लेती हैं और निस्संदेह आप अपने दोस्तों में भी बहुत पॉपुलर हैं। तो इन सभी भूमिकाओं के बीच में संतुलन कैसे बनाती हैं आप?
1: संतुलन तो कह सकते हैं, लाइफ है तो व्यस्तता भी रहेगी,
0: जी
1: और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि संतुलित होने के लिए आपको वक्त के साथ थोड़ा बहुत तो बदलाव करना पड़ेगा।
0: जी तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश दीजिए, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी व्यस्त जिंदगी में भी अपने शौक को जिंदा रखना चाहते हैं।
1: जी, लाइफ है तो काम है, व्यस्तता भी है, बट आई वुड से कि अपने लिए थोड़ा सा तो वक्त निकालिए,
0: जी
1: अपने अपने शौक को पूरा करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, फाइव
0: जी
1: मिनट्स 10 मिनट्स एटलीस्ट।
0: जो कि
1: मैं तो ये
0: जिसको आजकल
1: कहूँगी
0: हम कहते हैं कि
1: एटलीस्ट,
0: मी टाइम है, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए।
1: बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो अगर आपके पास कोई भी शौक है, मैं ये नहीं कहूँगी सिंगिंग ही है, जो भी शौक है उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा टाइम तो अपनी इस बिजी लाइफ में से निकालना चाहिए और इतना टाइम को देना चाहिए
0: जी वो
1: जिससे कि
0: हमारे
1: आपके
0: सुकून
1: शौक को
0: के लिए
1: जिंदा
0: भी
1: रख
0: बहुत
1: सके। जी
0: जरूरी है। और जी,
1: हाँ,
0: आपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव, संगीत के प्रति अपने प्रेम और जीवन की खूबसूरत सोच को जो हमारे साथ साझा किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम की ओर से आपका दिल से धन्यवाद।
1: थैंक यू सपना, थैंक यू सो मच, और मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जयपुर रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत
0: जी
1: अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी हमें भी, और हम यही कामना करते हैं कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में इसी तरह सेवा करती रहें और संगीत की मधुर धुनों से सबका दिल जीतती रहें। और हमारे
1: थैंक
0: प्यारे
1: यू,
0: श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत, एक नई कहानी और नई गीतों के साथ। मैं हूँ आरजे सपना देवगुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रब राखा।
2: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम संगीते शाम, और संगीते शाम में हमारे आज के मेहमान कलाकार हैं गोविंदगढ़ पंजाब से जगदीश अरोड़ा और यूएसए से अलका लश्करी। आज आप सुनेंगे आप दोनों के युगल गीत, और हम तो यही कहेंगे आइए शोक से गाइए। आप चाहें तो कुछ और कह सकते हैं, जगदीश अरोड़ा और अलका लश्करी संगीते शाम प्रोग्राम में।

0: आइए बैठिए। क्या है आपका नाम? और नाम हम बता देते हैं कि आज संगीत शाम में हमारे साथ जो सिंगर्स हैं उनके नाम हैं गोविंदगढ़ पंजाब के जगदीश अरोड़ा और यूएसए से अलका लश्करी। और जब कहेंगे गुलाम ही हो गए, तो जब कहेंगे तब बैठेंगे, जब कहेंगे तब उठेंगे, जब आप कहेंगे गाएंगे तो हम तो यही कहेंगे कि आप गाइए ना।
1: बैठ जा, खड़े हो जा,

गीतों से भी आप जादू कर सकते हैं। आवाज की जादूगरी आपने देख ही ली, वशीकरण भी है और सम्मोहन भी है। मोहक से गीत हमने सुने जगदीश अरोड़ा और अलका की आवाजों में। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम संगीत शाम। और जब ऐसा हो जाता है वशीकरण गीतों का, आवाज का, तो फिर सब कुछ भूलना भी पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहिए और गाते रहिए। आपकी आवाज आपकी पहचान। अलका लश्करी यूएसए से और पंजाब से जगदीश अरोड़ा। आपकी आवाज आपकी पहचान।

जी हाँ, गीतों की जादूगरी है और एक ही बात है जो कभी भूली नहीं जाती इन गीतों में। हम हर गीत में यही गाते हैं, यही कहते हैं और इसी को पाने की तड़प सी रहती है और इसी की दुश्वारी है, फिर भी हमें आपसे यारी है। आपकी आवाज, आपकी पहचान। संगीत शाम प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं जगदीश अरोड़ा और अलका लश्करी की आवाजें, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आइए सुनते हैं अगला खूबसूरत गीत जगदीश अरोड़ा और अलका की आवाजों में।

की गल है जी। हाँ, और इस गल को आप सभी जानते हैं, हमारे सुनने वाले भी जानते हैं, और ये गल, ये बात आप तक पहुंचाई यूएसए की अलका लश्करी और पंजाब के गोविंदगढ़ से जगदीश अरोड़ा। आपकी आवाज, आपकी पहचान, संगीत शाम प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश आप दोनों की आवाजों में।

तुम मिले प्यार से और हम तो कहेंगे कि आप दोनों आए प्यार से, यानी जगदीश अरोड़ा और अलका लश्करी इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम को आपने खूबसूरत बना दिया, बेहतरीन बना दिया अपने गीतों के माध्यम से, और गीत भी चुन चुन के लाए हमारे सभी सुनने वालों को आपके गीत भाए, इसलिए हम

0: दिल्ली से, अशोक पगाड़े हिमांशु सिंह जोधपुर से और श्वेता सूद कनाडा से, आप सबका आभार। बहुत सारे फीडबैक्स मिले हैं, सभी का नाम लेना हमारे लिए।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम युगल गीतमाला और युगल गीतमाला में हमारे साथ हैं अंबाला से जीना चौधरी और आपके साथ हैं मुगल मुकेश। एक बार फिर दिल की याद और यादों का गीत आइए सुनते हैं आप दोनों की आवाजों में।
2: A beautiful song by

दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है और हवाओं में भी बर्फ है आजकल। और आप सुन रहे हैं युगल गीत माला, और युगल गीत माला में हमारे साथ हैं जीना चौधरी अंबाला से, और जीना के साथ हैं मुगल मुकेश। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड।

अपनी कसम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी बस आपकी खातिर। और ये युगल गीत अपनी आवाजों में आप तक पहुंचाया जीना चौधरी और आपके सह गायक मुगल मुकेश ने। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: थैंक यू सो मच।
1: आपने सुना ये युगल गीत मुगल मुकेश और जीना चौधरी की आवाजों में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युगल गीत माला, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: थैंक यू।
1: जी हाँ, ये पतंग और इसकी टोर दो हाथों में थी। जीना चौधरी अंबाला से और आपके साथ रहे मुगल मुकेश। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं अगला नगमा।

0: यू।
1: आप सुन रहे हैं युगल गीत माला डिजिटल वॉइस वर्ल्ड से, और इस युगल गीत माला में हमारे साथ हैं जीना चौधरी, और जीना के साथ हैं मुगल मुकेश।

0: थैंक यू सो मच।
1: आवाज का दस्तूर निभा रहे थे जीना चौधरी युगल गीतमाला में और आपका साथ दे रहे थे मुगल मुकेश। आपकी आवाज आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। और प्रोग्राम युगल गीत माला में हमारे साथ हैं, हमारे संग हैं अंबाला की जीना चौधरी, और आपका साथ दे रहे हैं इन युगल गीतों में मुगल मुकेश।

0: Awesome.
1: हेलो, आप सुन रहे हैं युगल गीतमाला, आपकी आवाज आपकी पहचान। और ये हेलो कह रहे थे एक दूसरे से जीना चौधरी और मुगल मुकेश। आपकी आवाज आपकी पहचान, आइए सुनते हैं युगल गीतमाला का अगला गीत।

युगल गीत माला में आज हमारे मेहमान हैं जीना चौधरी अम्बाला से, और आपका साथ दे रहे हैं आपके को सिंगर मोगल मुकेश। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

खिलते हंसते खिलखिलाते गीत आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। आपकी आवाज आपकी पहचान। कलाकार आज के जीना चौधरी और मुगल मुकेश।

डिजिटल वॉइस वर्ड के जयपुर रेडियो वर्ड से आप सुन रहे थे युगल गीतमाला, आपकी आवाज आपकी पहचान। और युगल गीतमाला में हमारे आज के कलाकार रहे अंबाला की जीना चौधरी और आपका साथ दे रहे थे मुगल मुकेश। आज का ये सुरीला सफर यहीं तक, फिर मिलते हैं, सुनते रहें जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये ताजा तरीन एपिसोड लेकर मैं आरजे भूमिका और मेरे साथ हैं अर्जु रानू 16 और मेल सिंगर अनुराग। तो करते हैं आज के इस नए एपिसोड की शुरुआत। इतना बड़ा घर कोई नहीं है और ये आवाज का घर है और इस घर में प्रकृति के हर जीव की वाणी को सम्मान मिलता है, आदर मिलता है और सुनने के लिए पूरा आसमान मिलता है। अब देखिए ना, कोयल के बोलने से ही पूरी दुनिया डोलने लगती है, गाने और झूमने लगती है। अपनी कोयल सी आवाज लिए सुपर सिंगर अर्जु रानू का साथ दे रहे हैं लाल कर्मवानी इस पहले गीत में।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये ताजा तरीन एपिसोड लेकर मैं आरजे भूमिका और मेरे साथ हैं अर्जू रानू 16 और मेल सिंगर अनुराग। तो करते हैं आज के इस नए एपिसोड की शुरुआत। इतना बड़ा घर कोई नहीं है और ये आवाज का घर है और इस घर में प्रकृति के हर जीव की वाणी को सम्मान मिलता है, आदर मिलता है और सुनने के लिए पूरा आसमान मिलता है। अब देखिए ना, कोयल के बोलने से ही पूरी दुनिया डोलने लगती है।

लाल कनवानी और अर्जुन रानू के इस सुरीले सॉन्ग के बाद मैं आपसे कहूं कि मैं गाऊं और आप उस गीत की विस्लिंग करें, तो क्या आप कर पाएंगे ऐसा? लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं कि उनकी विस्लिंग करने का हर किसी का मन करता है, शायद आपका भी करे। एक वो गीत है ना, जिंदगी की टूटे न लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। इस अजब गजब गीत को आवाज दे रही हैं अर्जु रानू और इस गीत की विस्लिंग कर रहे हैं राजेश काला। आइए सुनते हैं इस सुरीले स्वर संगम को।

आप हैं आरजे भूमिका के साथ जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर विस्लिंग के साथ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अर्चू रानू और राजेश काला के इस सुरीले कॉम्बो के बाद आइए उस डोर से बनते हैं जिसका नाम है जिंदगी की डोर, जीवन की डोर। और इस डोर से बनने के लिए मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मंच पर आ गए हैं दीपक अर्चू रानू का साथ देने के लिए। आइए सुनते हैं आप दोनों की ये सुरीली पेशकश।

जितनी लंबी जीवन की डोर है उतना बड़ा ही गीतों का विस्तार है। गीत गगन को चूमते हैं और हम धरा पर गुनगुनाते हैं, गाते हैं और जीवन की डोर से बंध जाते हैं। दीपक और अर्चू रानू को सुनने के बाद अर्चू रानू का साथ देने आ गए हैं जोगेंद्र शर्मा। गीत है देखा तुझे तो हो गई दीवानी, पालू तुझे तो मरना जाऊं कहीं। आइए सुनते हैं ये सुरीला दो गाना।

सुना आपने जोगेंद्र और अर्चू रानू 16 को, और हमने देखा नहीं है और हमारे श्रोताओं ने भी आप दोनों को देखा नहीं है, बस सुना है और सुनकर हो गए हैं आपके फॉलोवर। इस सुरीले गीत के बाद मैं एक बार फिर बुलाना चाहूंगी दीपक जी को अर्चू रानू का साथ देने के लिए एक नए गीत में, एक नई परिकल्पना में। आइए सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए का ये सुरीला सॉन्ग।

दीपक और अर्जुन रानू 16 की आवाजें मिलके हम सबको मिलकर गाने का आमंत्रण देती सी लग रही हैं। समय बढ़ता रहता है, चलता रहता है। जनवरी से दिसंबर कब आ जाता है आपके साथ गाते गाते सुनते सुनते पता ही नहीं चलता। फिर बदलने को है एक साल, एक मौसम, और समय की रफ्तार के साथ गीतों के संदेश और संकेतों के साथ आइए सुने इस प्रोग्राम का लास्ट शॉर्ट वर्जन। अर्चू रानू का साथ दे रहे हैं हरी नारायण।

मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश ना कर। और जिसको समय से समय के साथ हो गया हो इश्क, तो फिर उसे समय के अलावा कोई नहीं आजमा सकता, ना ही कोई इम्तिहान उसे हरा सकता है। जिसने जीत लिया समय को, उसने रीत लिया खुद को, और यही रीत जाना, खुद का खुद पर समय की जीत होती है। आप भी इस प्रोग्राम में गीत गा सकते हैं और जीत सकते हैं। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये सुरीला आयोजन संपन्न करने की अर्चु रानू 16 और आरजे भूमिका को अल्प विराम दें।

और अब आ रहे हैं इस मंच के मेल सिंगर अनुराग अपने गीतों में प्यार और अनुराग लेकर। सुन सुन बरसात की धुन, सुन बरसात का गीत, बजी धुन और इस मंच पर मिल गए हम तुम। नाम है मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और इस आने वाले समय के अच्छे शगुन में हम सुनते हैं अनुराग को इस सुरीली धुन के गीत में।

बरसात की धुन, संगीत की धुन, समय की धुन और हमारी धड़कन की धुन बजती रहती है शिव की नाद की तरह हमारे इस आसमान के नीचे। लेकिन ये धुन और तेज हो जाती है जब हम मिलते हैं किसी और से, किसी अजनबी से। हमारे इस मंच के सिंगर अनुराग की भी मुलाकात किसी अजनबी से हो गई। आइए सुने फिर क्या हुआ अनुराग की आवाज में।

फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये तो अनुराग अपने गीत से कुछ ऐसी हसीन बात बता ही चुके हैं। फिर भी चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। ये गीत स्वर अनुराग का, बहारों का आंचल, और इनसे प्यार करते करते हमने विदा कर दिया जनवरी से नवंबर तक और चल पड़े हैं दिसंबर के सफर में। लेकिन दिन महीने साल यूं ही गुजरते रहें प्यार से गीतों के साथ। गीत गाते गाते एक सुरीला मुकाम बना लिया है इस मंच के सिंगर अनुराग ने, और हम लौटने की बात नहीं करते, बुलाने की बात सुनाकर फिर बुलाते रहेंगे अनुराग के साथ। आइए सुने ये गीत।

बीच राह में दिलबर बिछड़ जाएं कहीं हम मगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना। बिल्कुल, हम आपको गीतों के लिए हमेशा इस प्रोग्राम में आमंत्रित करते रहते हैं, जिसका नाम है मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। हमारी एक आवाज सुपर सिंगर अर्जु रानू 16 और मेल स्वर अनुराग के साथ हम गाने का ये सुरीला अवसर आपको देते हैं। यदि आप भी चाहते हैं गाना और इस मंच पर आना, तो संपर्क कर सकते हैं आप जयपुर रेडियो के ऐप पर उपलब्ध व्हाट्सएप नंबर पर। और अब अनुमति दें आरजे भूमिका और अर्जु रानू 16 के साथ अनुराग को। नमस्कार।

0: मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का 28th एपिसोड लेके मैं आ गई हूँ आरजे भूमिका। कैसे हैं आप जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स? आप सभी को आदाब नमस्कार वणक्कम प्रणाम। और मेरे साथ है जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चना अग्रवाल, हमेशा की तरह अपने को सिंगर्स के साथ। आपकी आवाज आपकी पहचान, जयपुर रेडियो की ये टैगलाइन आपको देती है एक सुरीली पहचान।
1: मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में भूमिका। आज हमारे साथ हैं विशेष मेहमान, हमेशा की तरह अनुराग। अर्चना जी और अनुराग का वेलकम है, स्वागत है भूमिका के साथ। और बिना किसी भूमिका के हम सुनते हैं अनुराग का ये पहला अनुराग भरा गीत। आपकी आवाज आपकी पहचान, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, मैं आवाज हूं तो

अंधी हो जब तक साथ देता है हर कोई साथ, तुम मगर देना अंधेरों में भी मेरा साथ। बिल्कुल, और कई बार पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण भी हो जाता है, लेकिन हम नवा, हम नसीब होता है, हम कदम होता है, और हर दम हमारे करीब होता है, और उससे साथ की उम्मीद की जा सकती है। ये खूबसूरत गीत हमने सुना, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, के इस खास एपिसोड में। और आइए अब अनुराग कौन सा गीत सुनाते हैं, आइए सुनते हैं।

जयपुर रेडियो भी यही कहता है, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, हवाओं के संग गाते जाना, गाते जाना, गाते जाना, और चलते जाना, चलते जाना। अनुराग कह रहे थे अपने गीतों के साथ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और अपना गीत लेके आए हैं अनुराग इस खास प्रोग्राम में। आइए सुनते हैं अनुराग का अगला गीत।

आप सुन रहे हैं अनुराग को, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। इस प्रोग्राम में अपने को सिंगर के साथ अनुराग इस मंच पर। जयपुर रेडियो वर्क सुन रहे हैं आप, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: ये पूरी दुनिया क्यों अनुराग जी, अनुराग हमारे साथ रहे इस सुरीले सफर में और भूमिका अब अर्चना जी के साथ। मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, प्रोग्राम का पार्ट सेकंड आपके हाथों हम सब के जाते हैं।
1: अच्छू रानू के संग इस पहले गीत में रिमझिम की बात हो रही है, सावन के आवन की बात हो रही है और ये बात कर रहे हैं अर्जुन रानू के संग महालेसम।

करने वाली कहानी हमने सुनी महालेशम और अर्जुन रानू के संग, लेकिन तेरा साथ है तो फिर गीतों की बौछार है, संगीत की बहार है। वो गीत है ना, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। और ये मस्त नगमा लुटाने के लिए आ गए हैं अर्जुन रानू के संग अजमेर किंग 124। तो आई

अंबर को देख के धरती मुस्कुराए और धरती को देख के अंबर, हवा की गूंज में गूंजता है तुम्हारा नाम। जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम है मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। इस

सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा प्रोग्राम का 20वां एपिसोड और इसमें आवाज के रूप में आपके संग रहती है अर्चना अग्रवाल यानी अर्चू रानू 16। नाजुक सा गीत हमने सुना और इस गीत में राजेश यादव साथ दे रहे थे अर्चू रानू 16 का। और अब आपसे हुए वादे की बात कर लेते हैं। जब भी करते हैं हम वादा आपसे, बस भूल जाते हैं निभाना आपसे। लेकिन ये गीतों का वादा है और इस गीत को तो गाना ही पड़ेगा और सच में मर के भी निभाना ही पड़ेगा। तो आइए सुनते हैं अजमेर किंग 124 के साथ अर्चू रानू का ये गीत।

अजमेर किंग 124 और अर्जुन रानू की आवाजों में हमने सुना ये सुरीला गीत। तेरे वादे पे अगर जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ये गीत सुन के हमें चाचा गालिब की याद बरबस आ ही गई। सच में वादा भी क्या इरादा होता है, और हमें तो यही लगता है कि हर वादा टूट जाने के लिए ही होता है। बारिश ने कहा था कि रुकना, मैं फिर आऊंगी, लेकिन प्रतीक्षा में पलक पावड़े अब भी पीछे हैं। शायद ये पहली बयार लेके आई है सावन की ये छड़ी। अगले गीत में हरी नारायण और सुपर सिंगर अर्जुन रानू को सुनते हैं।

फिर वही सावन आएगा, यूं ही हवा का आंचल लहराएगा, धरती की हरियाली और कोयल की कूक का ना भूलने वाला आवाहन, सावन की हर घड़ी और वो सावन की झड़ी हमें याद आती रहेगी। इस गीत में हमने सुना हरि नारायण और अर्जुन रानू की सुरीली आवाजें, और अब सुनते हैं एक ना भूलने वाला गीत भूपेंद्र कौरव और सुपर सिंगर अर्जुन रानू की आवाजों में।

भूपेंद्र कौरव और अर्चू रानू 16 को आपने सुना इस ना भूलने वाले गीत में। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। इस प्रोग्राम में आप सुनते हैं अपनी आवाज में गाए हुए गीत अर्चू रानू के संग। अगर आप मेल सिंगर हैं या आप फीमेल सिंगर हैं, तो आप भी अर्चू रानू 16 स्मूल आईडी को ज्वाइन करके उस गीत को जयपुर रेडियो के व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर सेंड कर सकते हैं। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के लिए अर्चू रानू के संग गाए हुए उस गीत को हम इसी प्रोग्राम में आपके लिए प्रसारित करेंगे। तो आज का ये एपिसोड आपके संग यहीं तक। आरजे भूमिका और सुपर सिंगर अर्चू रानू को अनुमति दें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए विदा दें। नमस्कार।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का 28th एपिसोड लेके मैं आ गई हूँ आरजे भूमिका। कैसे हैं आप जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स? आप सभी को आदाब नमस्कार वणक्कम प्रणाम। और मेरे साथ है जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चना अग्रवाल, हमेशा की तरह अपने को सिंगर्स के साथ। आपकी आवाज आपकी पहचान, जयपुर रेडियो की ये टैगलाइन आपको देती है एक सुरीली पहचान। अर्चु रानू के संग इस पहले गीत में रिमझिम की बात हो रही है, सावन के आवन की बात हो रही है, और ये बात कर रहे हैं अर्चु रानू के संग महालेसम। तो आइए सुनते हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा प्रोग्राम का ये पहला गीत महालेसम और अर्चु रानू की।

सुनने वाली कहानी हमने सुनी महालेशम और अर्जु रानू के संग, लेकिन तेरा साथ है तो फिर गीतों की बौछार है, संगीत की बहार है। वो गीत है ना, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। और ये मस्त नगमा लुटाने के लिए आ गए हैं अर्जु रानू के संग अजमेर किंग 124। तो आइए

अंबर को देख के धरती मुस्कुराए और धरती को देख के अंबर, हवा की गूंज में गूंजता है तुम्हारा नाम। जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम है मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। इस गीत में आपने सुना अजमेर किंग और अर्जुन।

0: आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा प्रोग्राम का 20वां एपिसोड और इसमें आवाज के रूप में आपके संग रहती हैं अर्चना अग्रवाल यानी अर्चु रानू 16। नाजुक सा गीत हमने सुना और इस गीत में राजेश यादव साथ दे रहे थे अर्चु रानू 16 का। और अब आपसे हुए वादे की बात कर लेते हैं। जब भी करते हैं हम वादा आपसे, बस भूल जाते हैं निभाना।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो आपकी पहचान,
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो आपकी पहचान,
2: आवाज की।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो आपकी पहचान,
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो आपकी पहचान,
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।

0: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
0: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
0: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
0: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
0: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
0: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
1: आवाज की
0: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
0: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
0: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान। नमस्कार, वडक्कम, सत श्री अकाल, खम्बा खनी, केम छो। जयपुर रेडियो सुन रहे हैं आप और मैं हूँ तनुजा मुंदड़ा आपके साथ। आओ झूमे गाए समूह के कलाकारों की सुरीले गीतों के साथ। आज की प्रस्तुति उस कलाकार के नाम जिनके पिता संगीत विद्यालय के प्रिंसिपल रह चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किशोर कुमार के सुपुत्र अमित कुमार की। आइए सुनते हैं एक प्रेम कहानी अमित जी के गीतों की जुबानी। एक प्यारा इंसान जो एकांत में खुश है, अपने अकेलेपन से खुश है, वो खुश होता है तो आसपास की हर चीज खुश, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई नजर आती है, फिर वो जमी हो या आसमां।

स्मिता की बहती आवाज में आपने सुना, ये जमीन गा रही है, ये आसमां गा रहा है। जीवन का चक्र है, अपनी गति से आगे बढ़ता ही है। और लीजिए, शुरू हो गया सपनों का आना, ख्वाबों में अपने भविष्य के सपनों को संजोना, किसी के आने की दस्तक रोज रोज आंखों तले।

वाह, बेहद सुरीली प्रस्तुति मनोजी मृदुल और वत्सला सिंह के द्वारा। सपनों की दुनिया से निकल अब समय आ गया था अपने साथी अपनी संगी से मुलाकात करने का। ख्वाब को अपने सामने वास्तविकता के धरातल पर देख मन मयूर जैसे नाच उठा था उसका, और बरबस ही उसका मन कहने लगा, बड़े अच्छे लगते हैं।

फिल्म बालिका वधु का ये चर्चित गीत अपनी सुरीली आवाजों में प्रस्तुत किया जूही सिन्हा और डॉक्टर धवन ने। मुलाकात हुई, आंखें चार हुई, दोनों ने अपनी बात एक दूसरे से साझा की और फिर खो गए ख्यालों में, सपनों की दुनिया में और बुनने लगे सुनहरे भविष्य के सपने, जहां उन्हें एक छोटे से आशियाने की तलाश थी। एक खूबसूरत सा घर जहाँ वो अपने प्यार की पींगे और तेज बढ़ा सकें।

बेहद मधुर प्रस्तुति डॉक्टर मनप्रीत और मुकेश जी के द्वारा। सपनों से निकल अब समय आ गया था दोनों का वास्तविकता के धरातल पर आने का। नजदीकियां बढ़ने लगी थी। आलम ये था बिना बोले ही अनकही बातें एक दूसरे के दिल तक पहुंचने लगी थी। प्यार की डोर अब मजबूत जो होने लगी थी। ना बोलने की बात थी ना चुप रहने की।

न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी, सूर्यरेखा जी और डॉक्टर नरेश चावला, आपके इस मधुर गीत ने हमारा दिल जीत लिया। दास्तान मोहब्बत हो और छेड़खानी ना हो, ऐसा संभव है भला? प्रेमी और प्रेमिका का प्यार जताने का एक और मासूम और दिलचस्प तरीका है छेड़छाड़, मस्ती, मज़ा, चिठोली। आइए सुनते हैं ऐसा ही कोई नटखट सा गीत।

इस गीत को अपनी सुरीली आवाजों से सजाया विवेक गुप्ते और गायत्री जगन्नाथन ने। इस मीठी चूहलबाजी को उनके अनूठे प्यार को जैसे किसी की नजर लग गई थी। अब प्यार के साथ शिकवे गले रूठना मनाना जो शुरू हो गया था। प्रेमिका प्रेमी को रूठता देख मनाने का प्रयत्न कर रही थी। कुछ ऐसा ही परिलक्षित होता है अगले गीत में।

बेहतरीन आवाज और अपने दिलकश अंदाज में इस गीत को प्रस्तुत किया संजय गुप्ता जी ने, और उनके साथ गीत गाने का अवसर मिला मुझे यानी तनुजा मुंदड़ा को। रूठना मनाना तो हो गया, लेकिन इकरारे मोहब्बत अभी बाकी थी। प्यार का इजहार हो और इकरार ना हो तो प्यार अधूरा सा ही जान पड़ता है ना? प्रेमी का ये कहना वाजिब भी है, कह दो कि तुम हो मेरी, वरना जीना नहीं मुझे है मरना।

फिल्म तेजाब का ये चर्चित गीत प्रस्तुत किया अपनी सुरीली आवाजों में डॉक्टर डो, डॉक्टर आदेश सक्सेना और डॉक्टर तरुणा ने। ख्वाब देखे, रोमानी प्यार हुआ, इकरार हुआ, इजहार हुआ, मस्ती मजाक छेड़खानी हुई, मिलन हुआ और फिर समय आ गया जुदाई का। जी हाँ, जहाँ मिलन है वहाँ जुदाई भी है। दोनों किसी अनजानी अनकही बातों के चलते एक दूसरे से जुदा हो गए।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे सपना देवगुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी और आप सुन रहे हैं आप सबका मनपसंद प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर अलका, जो पेशे से एक सफल गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन पिछले लगभग 20 वर्षों से अमेरिका में रह रही हैं। दो बेटों की स्नेहमयी माँ होने के साथ साथ इन्होंने अपने व्यस्त पेशेवर जीवन में संगीत के लिए भी एक बहुत खूबसूरत जगह बनाई है। इनकी माताजी ने संगीत में मास्टर्स किया है और वही इनकी पहली प्रेरणा भी रही हैं। पिताजी चीफ इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुए और अब इनका परिवार मुंबई में बस चुका है। डॉक्टर अलका को बचपन से ही संगीत का वातावरण मिला। इन्होंने मंच पर भी कई प्रस्तुतियां दी हैं और पिछले कई वर्षों से स्म्यूल कैरियोके ऐप के माध्यम से भी अपनी मधुर आवाज से श्रोताओं का दिल जीत रही हैं।

0: डॉक्टर अलका जश्न सितारा गीत गुफ्तगू में आपका दिल से स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर रेडियो के श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।
0: जी, हमारे श्रोताओं की आज मैं तो कहूंगी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप जैसी कलाकार के साथ वो रूबरू होने जा रहे हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो अलका, हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों का सिलसिला। जैसे कि मैंने पहले आपके इंट्रोडक्शन में बताया और आपने मुझे बताया कि आपकी माता जी ने संगीत में मास्टर्स किया है, तो
1: जी
0: बचपन में घर का संगीत भरा माहौल कैसा था?
1: एक्चुअली आपको पता होगा कि उस टाइम में ना ज्यादा कुछ तो नहीं होता था कि हम सीख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं,
0: जी,
1: क्योंकि वहां पढ़ाई ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती थी उस टाइम में। तो
0: बिल्कुल
1: जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे, और याद है लाइट चली जाती थी, तो
0: जी,
1: जब लाइट जाती थी तो हम सब बहन भाई मिलकर अंताक्षरी खेलते थे।
0: क्या
1: अब
0: बात है
1: वो होता क्या था कि डेली की ही लगती थी उन दिनों में, थोड़े टाइम
0: जी
1: के लिए जरूर जाने होती थी, तो हमारा जो माहौल होता था उस टाइम में अंताक्षरी का माहौल होता था,
0: जी
1: तो
0: जी
1: वहां पर हम खूब गाने गाते थे और मम्मी को भी बुला लेते थे कि आ जाओ मम्मी चलो साथ में गाते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल
1: तो वो कह सकते हो कि वो एक तरह से हमारी एक तरह से पाठशाला थी।
0: जी, सबसे पहली आपकी पाठशाला वही थी।
1: पाठशाला
0: और
1: वो ही कह
0: आपने
1: सकते हो।
0: बहुत ठीक कहा कि हम सभी ने अपने बचपन में शायद ये वक्त देखा है। बिजली तो खैर तब भी क्या अब भी जाती है, भारत में तो बहुत जाती है, मुझे अमेरिका का नहीं पता। तो अभी भी जब बिजली जाती है तो तकरीबन वही एक वक्त होता है जब सारा परिवार एक साथ मिलकर बैठता है और वो वक्त हमें जोड़ता है। तो इसी के
1: सच
0: साथ हम
1: में
0: आपका एक गीत लेते हैं।

0: प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर अलका। जैसे कि आपने कहा कि आपके जो माता पिता हैं वो आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं, तो उनके व्यक्तित्व
1: जी
0: की कौन सी ऐसी बात है जो आज भी आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है?
1: एक्चुअली उस टाइम में इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं होती थी जो हमको आजकल मिली हुई हैं,
0: जी
1: तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे संघर्ष किया है। तो मुझे तो बस यही लगता है कि उनके संघर्ष को देखकर उन्होंने हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। वो बोलते थे कि तुम्हें जो चाहिए हमें बताओ, हम आपको करके देंगे, पर आप बस पढ़ाई करो और अच्छी अच्छी पढ़ाई करो जिससे कि हमारा नाम रोशन कर सको। तो
0: जी
1: बस उनके लाइफ का जो संघर्ष है कि वो संघर्ष करते रहो और अपने ड्रीम्स और गोल्स की तरफ बढ़ते रहो।
0: जी तो डॉक्टर अलका, आपके परिवार में आपके मायके की तरफ से कौन कौन है?
1: मेरे मम्मी पापा
0: जी
1: और मेरा एक ब्रदर है, मेरे दो सिस्टर्स हैं।
0: अच्छा, तो आप किस
1: मेरा
0: नंबर पर
1: ब्रदर
0: आती हैं?
1: सबसे बड़ी मेरी दीदी है, फिर
0: अच्छा
1: मैं हूँ, फिर मेरा ब्रदर है वो भी इंजीनियर है
0: अच्छा अच्छा
1: और रिलायंस में इंजीनियर है, आजकल पोस्टेड है बॉम्बे में ही।
0: अच्छा
1: और मेरी
0: जी
1: छोटी सिस्टर वो भी डॉक्टर है,
0: अरे
1: वो भी
0: वाह
1: बॉम्बे में है।
0: जी। तो जैसे कि आपने कहा कि आपको संगीत की जो प्रेरणा है वो अपनी माता जी से मिली, और जो आपकी पहली पाठशाला थी वो भी घर का संगीतमय माहौल था, तो आप डॉक्टरी की
1: जी
0: तरफ कैसे बढ़ी?
1: बस होता था ना उस टाइम में कि लड़की है तो डॉक्टर बनेगी और लड़का है तो इंजीनियर बनेगा। तो शुरू
0: बिल्कुल
1: से ही था कि बस मुझे डॉक्टर बनना है डॉक्टर। और हम लोग बहन भाई मिलकर, मैं डॉक्टर बनती थी, मेरे बहन भाई पेशेंट बनते थे, मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो कंपाउंडर बन जाती थी।
0: अरे
1: तो हम लोगों का शुरू से ये था कि हाँ हमें डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना है। और फिर थोड़ा पढ़ाई में अच्छे थे तो होता गया यही
0: जी, तो भगवान ने आपको सच में डॉक्टर ही बना दिया।
1: डॉक्टर ही बना दिया।
0: बहुत ही रोचक ये आपकी याद है, और इसी के साथ हम आपका एक और गीत लेते हैं।

0: डॉक्टर अलका, एक गायनोकोलॉजिस्ट का जीवन आपसे ज्यादा कौन जान सकता है, बहुत व्यस्त और जिम्मेदारियों से भरा होता है। तो ऐसे में
1: जी
0: संगीत के लिए समय निकालना कितना कठिन और कितना सुकून देने वाला है आपके लिए?
1: ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक गायनक की लाइफ तो बहुत ही बिजी होती है, क्योंकि हमारा
0: जी
1: पेशेंट ना दिन रात नहीं देखता, वो किसी
0: जी
1: भी टाइम आ सकता है, उसका दिन में भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है। तो हमारी लाइफ खैर बिजी तो बहुत होती है गायनिक की, पर हाँ अगर आपको कोई शौक है तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हो।
0: जी
1: तो मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि अगर मिल जाता है टाइम तो मैं अपने शौक के लिए जरूर निकालती हूँ।
0: जी तो डॉक्टर साहब, आजकल हम जैसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत रील्स देखते हैं कि कई डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को म्यूजिक थेरेपी भी देते हैं, तो क्या आप भी इसमें यकीन रखते हैं कि अपने पेशेंट्स का स्ट्रेस दूर करने के लिए या उनके इलाज का एक भाग बनाने के लिए आप म्यूजिक को
1: नहीं,
0: प्राथमिकता देती हूँ?
1: हमारे पेशेंट ना जिस स्टेज पे आते हैं ना तो वो शायद म्यूजिक सुनना ही नहीं चाहेंगे, वो इतने पेन में होते हैं, वो इतने पेन में होते हैं कि वो कहेंगे ये क्या कर रही हो डॉक्टर साहब, जल्दी करो जल्दी करो। या फिर अगर अगर कुछ थोड़ा सीरियस है तो फिर वो सर्जरी होती है तो सर्जरी में तो हमारा पेशेंट बेहोश होता है, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सॉरी हम उनको म्यूजिक थेरेपी नहीं दे सकते।
0: जी। तो जैसे आप पिछले 20 वर्षों से अमेरिका में हैं, तो क्या अमेरिका में आने से पहले आप भारत में भी प्रैक्टिस करती थीं?
1: जी हाँ मैं प्रैक्टिस करती थी
0: अच्छा, बताएंगे आप हमारे
1: मेरे
0: श्रोताओं को कुछ?
1: इन-लॉज,
0: हाँ जी
1: हाँ मैं आगरा में मतलब मेरी शादी हुई है तो
0: जी
1: आगरा में मेरे इन-लॉज का नर्सिंग होम था, तो मैं वहाँ प्रैक्टिस करती थी। फिर मेरी रेलवे में जॉब लगी तो रेलवे वाले बोलते थे कि नहीं आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो मैंने वहाँ
0: अच्छा
1: पे बस 2 साल प्रैक्टिस की, 2 साल जॉब की, उसके बाद मैंने छोड़ के अपनी प्रैक्टिस की, क्योंकि फिर अपना नर्सिंग होम है तो फिर कौन देखेगा फिर इसके
0: जी
1: लिए।
0: जी
1: फिर मैंने हाँ वहाँ पे प्रैक्टिस की।
0: तो जैसे आप कह रही हैं आपका अपना नर्सिंग होम था, तो क्या आपके सास ससुर भी मेडिकल फील्ड के साथ कनेक्टेड हैं?
1: जी हाँ दोनों भी डॉक्टर थे।
0: अच्छा, तो और इस वक्त आपके ससुराल में कौन कौन है?
1: इस वक्त मेरी सासू जी हैं
0: जी
1: पर वो अब प्रैक्टिस नहीं करती हैं क्योंकि वो एज की
0: जी जी
1: प्रॉब्लम
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो अब
0: जी
1: वो
0: जी
1: हाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाती हैं, पर
0: जी
1: अभी मेरी सासू जी हैं आगरा में।
0: जी अच्छा, उन्होंने भारत में ही रहने का निर्णय लिया?
1: जी हाँ, तो ये है ना कि बड़े लोग आना नहीं चाहते हैं अपना देश छोड़ के, तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहते, और
0: जी
1: अपनी
0: बिल्कुल
1: जगह जहाँ वो
0: बिल्कुल
1: शुरू से रहे हैं इतना टाइम उन्होंने बिताया है, जबकि वो
0: बिल्कुल।
1: अकेले हैं फिर भी वो नहीं आना चाहती हैं, तो
0: ये अक्सर आजकल की
1: मेरे
0: जेनरेशन को, जो आपकी और हमारी जेनरेशन है, उसे ये प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है, क्योंकि
1: जी
0: हमारे
1: हाँ
0: पेरेंट्स के जो रूट्स हैं, जो उनका घर बार है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको लगता है कि भारत से अगर वो चले जाएंगे तो इन सब से उनका नाता टूट जाएगा, तो वो
1: छूट
0: शायद वहीं
1: जाएगा
0: रहने का निर्णय लेते हैं।
1: जी
0: हालांकि उनका ये निर्णय हम लोगों के लिए थोड़ा पीड़ाजनक होता है, क्योंकि हम गिल्ट में आ
1: जी
0: जाते हैं कि हम कैसे उनकी सेवा करें।
1: सेवा करें बस यही होता है।
0: जी
1: डेली कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, पर वो बात नहीं होती ना कि
0: वो
1: चलो
0: बात
1: थोड़ी
0: नहीं
1: उनकी सेवा भी
0: रहती।
1: करने को मिल जाए, तो वो
0: सही,
1: हो नहीं
0: बिल्कुल
1: पाता।
0: सही। तो आपको अमेरिका और इंडिया दोनों में क्या फर्क लगा? वो यहाँ की रहन सहन, वेशभूषा, बोल चाल, इन सब में क्या फर्क लगा आपको, और कौन सा
1: सबसे
0: देश
1: पहले
0: बेहतर
1: जो
0: लगा?
1: भाई जन्मभूमि कर्मभूमि है, देखा जाए वो तो जन्मभूमि हुई हमारी, ये कर्मभूमि हो गई, अब इतने टाइम से हम यहाँ पर हैं। पर अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो मुझे तो अमेरिका ज्यादा पसंद आया, एक तो लाइफ स्टाइल और सब कुछ, मतलब जितना जो हिंदू कल्चर यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या जो भी फेस्टिवल्स हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, मुझे लगता है आजकल इंडिया में लोग इतना कर पाते हैं। हम हर फेस्टिवल, चाहे वो रक्षाबंधन है, चाहे वो जन्माष्टमी है, चाहे वो दशहरा है, आजकल मैंने देखा है हाँ सब फेस्टिवल हम यहाँ इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मिलके करते हैं, खूब धूमधाम से करते हैं। एंड कभी कभी तो जैसे होली है वो हमारे हर वीकेंड पे होता है, मार्च
0: अरे
1: में होली
0: वाह,
1: आती है,
0: क्या बात है,
1: हर वीकेंड हम होली खेलते
0: क्या बात है,
1: हैं।
0: क्या बात है।
1: दिवाली हर वीकेंड पे दिवाली होती है, किसी के घर होती है या किसी मंदिर में होती है, किसी ग्राउंड में होती है, तो
0: जी। और
1: अगर
0: मैंने
1: ऐसे
0: एक बात
1: कम
0: और महसूस की है, यहाँ इस देश में जो अमेरिका है, एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट है, आदर की भावना है, वो भी ज्यादा है एज
1: बहुत
0: कंपेयर
1: ज्यादा है
0: टू। हाँ
1: जी हाँ, अगर आप वॉक कर रहे होगे ना, अगर आप किसी को नहीं भी जानते होगे तो वो अगर आई टू आई कांटेक्ट होता है तो आपको हेलो किए बिना नहीं जाएंगे यहाँ से,
0: जी
1: आप
0: जी
1: वॉक करोगे तो वो हेलो हाय हाउ आर यू ये तो बोलेंगे ही, भले आप उनको जानते हो कि नहीं जानते हो। इंडिया
0: जी
1: में तो शायद पता नहीं आजकल क्या
0: नहीं
1: है,
0: वैसे
1: पर
0: इंडिया में भी ये सब तो आजकल होता है, वहां पर जब हम वॉक्स पे
1: होता है।
0: जाते हैं हेलो हाय नहीं होती
1: ओके
0: लेकिन राम राम जरूर हो जाती है, तो वो अपना अपना एक
1: अच्छा
0: तरीका होता है सबका विश करने का, बट
1: जी।
0: ये सब तो खैर वहां पर भी है। तो डॉक्टर साहब आपको
1: ओके
0: ये
1: ओके
0: कैसे, आपको क्या लगता है कि संगीत ने अमेरिका में रहते हुए भी आपको अपनी भारतीय जड़ों के साथ जुड़े रखा है, कोई इसका भी कोई
1: बिल्कुल
0: इसमें
1: बिल्कुल,
0: योगदान है?
1: क्योंकि हम ना एक टेम्पल से जुड़े हुए हैं,
0: अच्छा
1: तो हम हर संडे को वहां जाते हैं।
0: अच्छा
1: मेरे हस्बैंड उस कमेटी के मेंबर भी हैं, तो हम लोग हर संडे को जाते हैं। तो वहाँ फेस्टिवल्स होते हैं और हर संडे को एक आधा घंटे का एक भजन प्रोग्राम होता है,
0: जी
1: तो वहां पे जाके हम भजन गाते हैं। तो वो उस तरह से भी आप कह सकते हो कि संगीत से जुड़े हुए हैं।
0: जी जी जी जी जी बहुत बहुत बहुत ही खूबसूरत बात आपने ये बोली कि आप मंदिर में जाकर भी जो संगीत संध्या करती हैं और उसका हिस्सा बनती
1: जी
0: हैं उसने आपको आपकी भारतीय जड़ों से जोड़े रखा है। बहुत
1: जोड़ा
0: खूब
1: हुआ है बिल्कुल।
0: जी, और यहीं पर हम आपका एक गीत और लेते हैं।

0: डॉक्टर हल्का, आप एक सफल कलाकार हैं, एक सफल गायिका भी हैं और आपकी स्म्यूल कैरियोके पे एक बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग भी है, तो निसंदेह आपने मंच पर भी काफी परफॉर्मेंसेस दी होंगी।
1: जी हाँ, आजकल तो इंडिया में तो काफी स्मॉल मीट्स होती
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: तो जब भी मैं इंडिया जाती हूँ, अगर कोई स्मॉल मीट होती है तो मैं उसको अटेंड करती हूँ और वहां पर कह
0: जी
1: सकते हैं कि स्टेज परफॉर्मेंस दिए
0: और बिल्कुल उत्तर प्रदेश में तो बहुत बहुत ही होती हैं स्म्यूल
1: बहुत होने लगी हैं अब तो। हाँ, अब
0: मीटिंग्स
1: तो बहुत होने लगी है। हर सिटी का नाम लो, सिटी में स्मॉल मीट हो रही होती
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल
1: नहीं, वही मैंने कहा, अगर मेरे टाइम में अगर कोई स्मॉल मीट होती है तो मैं जरूर अटेंड कर लेती हूँ।
0: जी। आपको ये भी तो रहता होगा कि चलिए अपने दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी
1: जी हाँ, इसी बहाने मुलाकात हो जाती
0: जी,
1: है।
0: तो क्या कोई ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस जो आपको अभी तक याद हो, अभी भी आपके दिल के बहुत करीब हो और आप हमारी श्रोताओं के साथ वो वाकया साझा करना चाहती हो?
1: मेरा मेडिकल कॉलेज का मैं बता सकती हूँ कि वो मुझे थोड़ा सा, मेडिकल कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी तो वहां पर एक स्टेज परफॉर्मेंस, हमारा प्रोग्राम होते थे वहां पर, तो मुझे
0: जी
1: बोला गया कि अरे तुम अच्छा गाती हो, चलो एक स्टेज परफॉर्मेंस देना अपना करना। हमारे बैच का प्रोग्राम था वो, तो हमारे बैच वालों को करना था। अब इतने बड़े ऑडिटोरियम में जहाँ पे 3,000 स्टूडेंट्स, फिर टीचर्स,
0: जी
1: प्रोफेसर, उनकी वाइफ, इतने सब लोगों के सामने स्टेज पे पहुंचकर मेरा तो हो गया नर्वस। पर
0: हाँ
1: मेरे जो फ्रेंड्स थे वो पीछे से इतना बूस्ट कर रहे थे, इतना बकअप कर रहे थे, अरे नहीं, कर ले, हो गया, हो जाएगा, पीछे से ना। और किसी भी ऑडियंस को मत देखना, बस ऊपर देख, कहीं और देख, ऑडियंस को मत देखना। तो मैंने वहां पे परफॉर्म किया था अजीब दास्तां है ये,
0: अरे वाह, क्या
1: और
0: बात
1: वो
0: है।
1: गाना मेरे लिए इतना फेमस हुआ कि मतलब लोग मुझे कहते हैं, वो अलका जी का जो सॉन्ग है ना, अजीब दास्तां है, वो प्ले कीजिए, वो
0: क्या
1: सुनाइए।
0: बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप स्म्यूल तक कब से गा रही हैं?
1: मैं स्मूल पर हूँ 2017 से।
0: जी। तो स्म्यूल पर जो आपको स्म्यूल ने मंच दिया है गायकी का, क्या इस मंच ने आपकी संगीत यात्रा में कोई बदलाव लाया है? कोई आपके परफॉर्मेंसेस आगे से बेहतर हुई हैं? रियाज आपका ज्यादा पक्का हुआ है? स्म्यूल में आपको गाकर क्या लगा? आप में क्या डिफरेंसेस आए हैं?
1: बहुत, ये तो मैं तो कहूंगी, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो यही है। 2017 में मैं जो गाती हूँ, गाती थी, मैं सुनती हूँ अगर,
0: जी
1: और अब की सिंगिंग में बहुत डिफरेंस आया है।
0: जी
1: एक्चुअली उस टाइम में शायद हमें इतना नॉलेज नहीं थी या आइडिया नहीं था कि कैसे गाना है, बस ट्रैक देखा और गा दिया। जब अब सुनते हैं ना, तो अब लगता है यार एक बार यूट्यूब सुन तो लेते, ओरिजिनल सॉन्ग सुन तो लेते कि
0: जी
1: उसमें जो
0: बिल्कुल
1: और कमियां हैं, क्योंकि हम लोग
0: बिल्कुल
1: को कुछ तो इतने पॉपुलर सॉन्ग है ना कि वो ऐसा लगता है अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, यो गा
0: जी,
1: देंगे वो
0: ये
1: गा
0: तो
1: देंगे।
0: चुटकियों में गा देंगे हम जी।
1: हाँ, पर जब बाद में सुनते हैं और ओरिजिनल सॉन्ग सुनते हैं, मैंने कहा वाह, इन्होंने कितने अच्छे से लिया है इस वर्ड को, इन्होंने कितने अच्छे से पॉज लिया है। तो अब मैं चीजों को इतनी बारीकियों से सुनती हूँ ना, पहले यूट्यूब में, फिर मैं अपना इनवाइट ओपन करती हूँ, और मतलब इतना फर्क तो आया है, बहुत डिफरेंस आया
0: जी,
1: है सिंगिंग
0: ये
1: में,
0: बात
1: मुझे
0: आपने
1: मुझे
0: बिल्कुल
1: ऐसा
0: सही
1: लगता है।
0: कही है। किसी भी हम म्यूजिक लेजेंड का कोई भी गीत चाहे हम 10 बार सुने, चाहे 20 बार सुने, जब भी हम सुनते हैं तो हमें हमेशा कोई ना कोई नई चीज उसमें मिल जाती है। कोई हरकत
1: जी
0: कहाँ पे
1: जी
0: लेनी है, कोई सरगम किस
1: जी
0: तरह छेड़नी है, कुछ ना कुछ हम
1: जी
0: हमेशा नया सीखते ही सीखते हैं। तो
1: जी
0: आपको किन के गीत पसंद हैं? आप जैसे कितने हमारे लेजेंड्स हैं, लता जी हैं, महेंद्र कपूर जी हैं, रफी साहब हैं, आपको कौन से सिंगर्स के गीत पसंद हैं?
1: एक्चुअली सिंगर्स के तो सभी के गाने बहुत पसंद हैं,
0: जी
1: पर कुछ कह सकते हैं कि जैसे कुछ फेवरेट होते हैं जिनके मुझे, मतलब शुरू से मेरे को इतना अच्छे लगते थे,
0: जी
1: किशोर कुमार जी एंड आशा भोसले के डुएट्स, तो बस कुछ मिल जाए गाने को म्यूजिक
0: जी। और खासकर अगर आरडी बर्मन जी का म्यूजिक हो साथ में
1: हो, ओहो, तो
0: तो बहुत
1: बस
0: ही
1: सोने को सुहागा।
0: इररेजिस्टिबल कॉम्बिनेशन बन जाता है। जी।
1: जी
0: तो डॉक्टर साहब, अगर मैं आपको कहूं कि हमारे श्रोताओं के लिए आप आशा जी या किशोर दा का कोई गीत समर्पित कीजिए, तो आप कौन सा गीत चुनेंगी?
1: वेरी टफ क्वेश्चन।
0: जी
1: इतने सारे सॉन्ग्स में से जो कि
0: जो
1: इनके इतने अच्छे हैं, उनमें से एक बताना तो बहुत ही मुश्किल
0: कि
1: काम है।
0: आप, मैं अगर अभी कहूं कि हमारे श्रोताओं को समर्पित कीजिए
1: तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, पर हाँ, अच्छा ये लोग सॉन्ग कर सकते हैं अपने श्रोताओं को समर्पित, कि हाल कैसा है जनाब का, हाल
0: अरे
1: कैसा है
0: वाह
1: श्रोताओं आपका।
0: तो
1: इसमें
0: आपसे इतनी
1: इसमें
0: सी गुजारिश है कि अभी आप गा के सुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए ये
1: अरे
0: गीत
1: अरे सपना जी, बड़ा मुश्किल काम है ये तो। इतने वेरिएशन से इस सॉन्ग में, और दोनों ने इतना अच्छे से परफॉर्म किया है, किशोर कुमार
0: जी
1: जी के हीरोइन और आशा जी के, वो नखरे ना मधुबाला जी के जो नखरे, बिल्कुल आप उनकी सिंगिंग में पता लगा सकते हो कि उन्होंने मधुबाला जी के लिए गाया होगा,
0: अरे बिल्कुल
1: जो उनकी
0: बिल्कुल
1: अदाएं हैं।
0: जी,
1: तो
0: तो हो जाए।
1: अभी
0: चलिए मैं
1: चलिए
0: किशोरदा
1: मैं दो
0: बनती हूँ
1: लाइन
0: आपके लिए,
1: सुनाती
0: दो
1: हूँ।
0: लाइंस में मैं
1: अच्छा
0: किशोरदा बन जाती हूँ आपके लिए, आप आशा जी बन जाएंगी। ठीक,
1: ठीक है,
0: सिर्फ दो
1: चले
0: लाइन
1: ये
0: है
1: सही रहेगा
0: ना।
1: जी। हाँ।
0: हाल

0: मुझे लगता है उल्टा हो
1: उल्टा हो
0: गया।
1: गया ना, ऐसे मुझे भी लग रहा है कि मैं अटक गई। चलो कोई बात
0: हाँ कोई
1: नहीं।
0: बात नहीं, चलिए इस बहाने
1: मैं
0: आपके
1: किशोर
0: साथ
1: बन गई,
0: मुझे
1: आप
0: गाने का
1: आशा बन
0: मौका मिल
1: गए।
0: गया। जी जी

0: डॉक्टर साहब, दो बेटों की माँ होने के साथ साथ आप एक डॉक्टर हैं, संगीत प्रेमी हैं, अपना परिवार संभालती हैं, मंदिर के साथ एसोसिएटेड हैं, संगीत संध्या में भी हिस्सा लेती हैं और निसंदेह आप अपने दोस्तों में भी बहुत पॉपुलर हैं। तो इन सभी भूमिकाओं के बीच में संतुलन कैसे बनाती हैं आप?
1: संतुलन तो कह सकते हैं, लाइफ है तो व्यस्तता भी रहेगी।
0: जी
1: और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि संतुलित होने के लिए आपको वक्त के साथ थोड़ा बहुत तो बदलाव करना पड़ेगा।
0: जी तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश दीजिए, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी व्यस्त जिंदगी में भी अपने शौक को जिंदा रखना चाहते हैं।
1: जी, लाइफ है तो काम है, व्यस्तता भी है, बट आई वुड से कि अपने लिए थोड़ा सा तो वक्त निकालिए,
0: जी
1: अपने अपने शौक को पूरा करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, फाइव
0: जी
1: मिनट्स 10 मिनट्स एटलीस्ट।
0: जी जो
1: तो
0: कि
1: मैं तो ये
0: जिसको आजकल
1: कहूंगी
0: हम कहते हैं कि
1: एटलीस्ट,
0: मी टाइम है, वो बहुत जरूरी है
1: या
0: हमारे
1: बहुत
0: लिए।
1: जरूरी है। जी हाँ, तो अगर आपके पास कोई भी शौक है, मैं ये नहीं कहूंगी सिंगिंग ही है, जो भी शौक है उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा टाइम तो अपनी इस बिजी लाइफ में से निकालना चाहिए
0: जी
1: और इतना टाइम को देना चाहिए
0: जी वो
1: जिससे कि
0: हमारे
1: आपके
0: सुकून
1: शौक
0: के
1: को
0: लिए
1: जिंदा
0: भी
1: रख
0: बहुत
1: सके।
0: जरूरी है। और
1: जी हाँ
0: जी, आपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव, संगीत के प्रति अपने प्रेम और जीवन की खूबसूरत सोच को जो हमारे साथ साझा किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम की ओर से आपका दिल से धन्यवाद।
1: थैंक यू सपना, थैंक यू सो मच। और मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जयपुर रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत
0: जी
1: अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी हमें भी, और हम यही कामना करते हैं कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में इसी तरह सेवा करती रहें और संगीत की मधुर धुनों से सबका दिल जीतती रहें। और हमारे
1: थैंक
0: प्यारे
1: यू,
0: श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत, एक नई कहानी और नई गीतों के साथ। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रब राखा।
2: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम संगीते शाम, और संगीते शाम में हमारे आज के मेहमान कलाकार हैं गोविंदगढ़ पंजाब से जगदीश अरोड़ा और यूएसए से अलका लश्करी। आज आप सुनेंगे आप दोनों के युगल गीत, और हम तो यही कहेंगे आइए शोक से गाइए। आप चाहें तो कुछ और कह सकते हैं, जगदीश अरोड़ा और अलका लश्करी संगीते शाम प्रोग्राम में।

0: आइए बैठिए। क्या है आपका नाम? और नाम हम बता देते हैं कि आज संगीते शाम में हमारे साथ जो सिंगर्स हैं उनके नाम हैं गोविंदगढ़ पंजाब के जगदीश अरोड़ा और यूएसए से अलका लश्करी। और जब कहेंगे गुलाम ही हो गए, तो जब कहेंगे तब बैठेंगे, जब कहेंगे तब उठेंगे, जब आप कहेंगे गाएंगे तो हम तो यही कहेंगे कि आप गाइए ना।
1: बैठ जा, खड़े हो जा,

गीतों से भी आप जादू कर सकते हैं। आवाज की जादूगरी आपने देख ही ली, वशीकरण भी है और सम्मोहन भी है। मोहक से गीत हमने सुने जगदीश अरोड़ा और अलका की आवाजों में। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम संगीत शाम। और जब ऐसा हो जाता है वशीकरण गीतों का, आवाज का, तो फिर सब कुछ भूलना भी पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहिए और गाते रहिए। आपकी आवाज आपकी पहचान। अलका लश्करी यूएसए से और पंजाब से जगदीश अरोड़ा। आपकी आवाज आपकी पहचान।

जी हाँ, गीतों की जादूगरी है और एक ही बात है जो कभी भूली नहीं जाती इन गीतों में। हम हर गीत में यही गाते हैं, यही कहते हैं और इसी को पाने की तड़प सी रहती है और इसी की दुश्वारी है, फिर भी हमें आपसे यारी है। आपकी आवाज आपकी पहचान। संगीत शाम प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं जगदीश अरोड़ा और अलका लश्करी की आवाजें डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं अगला खूबसूरत गीत जगदीश अरोड़ा और अलका की आवाजों में।

की गल है जी। हाँ, और इस गल को आप सभी जानते हैं, हमारे सुनने वाले भी जानते हैं, और ये गल, ये बात आप तक पहुंचाई यूएसए की अलका लश्करी और पंजाब के गोविंदगढ़ से जगदीश अरोड़ा। आपकी आवाज, आपकी पहचान, संगीत शाम प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश आप दोनों की आवाजों में।

तुम मिले प्यार से और हम तो कहेंगे कि आप दोनों आए प्यार से, यानी जगदीश अरोड़ा और अलका लश्करी इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम को आपने खूबसूरत बना दिया, बेहतरीन बना दिया अपने गीतों के माध्यम से, और गीत भी चुन चुन के लाए हमारे सभी सुनने वालों को आपके गीत भाए। इसलिए हम लेना चाहेंगे उन लिसनर्स के नाम जिन्होंने आपको लाइक किया है। अनिल जय झुमके वाला मुंबई से, सोनल पारिख जूनागढ़ से, मंदाकिनी शाह बड़ोदरा गुजरात से, जगदीश तंवर पटियाला पंजाब से, मीता ठक्कर जगदलपुर छत्तीसगढ़ से, सुजाता जस्सानी गुजरात से, अनीता दुग्गड़ नेपाल से, तनु शर्मा हैदराबाद से, मीनू सिंह पंजाबी जयपुर राजस्थान से, महबूब अरमान यूपी से, अलका मदान दिल्ली से, अशोक पगाड़े हिमांशु सिंह जोधपुर से, और श्वेता सूद कनाडा से। आप सबका आभार, बहुत सारे फीडबैक्स मिले हैं, सभी का नाम लेना हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि अलग अलग डिवाइस और व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आपको शुभकामनाओं के मैसेज मिले हैं। हमारे आज के इस मंच के उपस्थित कलाकार गोविंदगढ़ पंजाब के जगदीश अरोड़ा साहब, और यूएसए से हमारे साथ रही अलका लश्करी, आप दोनों का आभार और शुभकामनाएं। सुनते रहें आपकी आवाज, आपकी पहचान, संगीत शाम का ये सफर यहीं तक। आप सबका आभार।

आओ झूमे गाएं। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से जयपुर रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर संजय धवन। कुलभूषण पंडित का जन्म 8 अक्टूबर 1926 में बलूचिस्तान में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। 1940 के दशक में वे वहां से चलकर मुंबई पहुंचे और मुंबई पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर के तौर पे नौकरी करी। उनके जूनियर्स ने उनकी शख्सियत को और रुतबे को देखते हुए कहा कि सर, आप तो देखने में एक फिल्म स्टार लगते हैं। ये बात उनके मन को भा गई और उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में राजकुमार के रूप में अपना कदम रखा। जी हाँ दोस्तों, आज का कार्यक्रम समर्पित है एक यादगार के तौर पे श्री राजकुमार को। राजकुमार की पहली फिल्म थी रंगीली, लेकिन 1957 में नौशेरवाने आदिल और मदर इंडिया के रोल्स में उन्हें बहुत ही सराहा गया। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मदर इंडिया के इस गीत से, जिसे कि गा रहे हैं मनु मृदुल और आभा माथुर।

आज तक लोग उनके डायलॉग्स को याद करते हैं और दोहराते हैं। राजा के गम को किराए के रोने वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी चनाई साहब। 1965 की फिल्म वक्त के ये संवाद बहुत ही लोकप्रिय हुए, तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही पल है। इसे गा रही हैं जूही सिन्हा।

कोयल सी मधुर आवाज जूही सिन्हा की। न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। जहां राजकुमार ने तिरंगा और हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्मों में मैचो रोल्स निभाए, वहां पर 1965 की फिल्म काजल में बहुत ही रोमांटिक रूप में पेश आए। तो आइए सुनते हैं फिल्म काजल का ये गीत जिसे कि गा रहे हैं सज्जाद खान।

वाह सजाद जी, बहुत ही खूबी से गाया आपने इस गीत को। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। राजकुमार का ये फेमस डायलॉग दरअसल जिगर मुरादाबादी का एक शेर है। तो आगे बढ़ते हैं काजल फिल्म से ही एक और गीत के साथ, जिसे कि ला रहे हैं डॉक्टर आदेश सक्सेना।

बहुत खूबसूरत डॉक्टर आदेश, काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। क्या आवाज थी और क्या अंदाज था राजकुमार का। आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ जिसे कि गा रहे हैं ईश्वर। फिल्म का नाम है नीलकमल, गीत के बोल हैं तुझको पुकारे मेरा प्यार।

वाह ईशु, कितना मधुर गाया आपने। प्यार की बात चली तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजकुमार का विवाह एक एंग्लो इंडियन लड़की जेनिफर के साथ में हुआ, जो कि आगे चल के गायत्री के नाम से जानी गई। तो इसी बात पे सुनते हैं एक प्यार भरा गीत, जैसे कि ला रहे हैं अनिल झुमका वाला और सूर्यरेखा। फिल्म का नाम है ही रांझा। गीत के बोल हैं, मेरी दुनिया में तुम आई।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं,
1: छोड़ो ना
0: आज की रात, तो दिल तोड़ो ना।

सच रोमांटिक सॉन्ग और कितनी खूबसूरती से गाया अनिल जी और सूर्य रेखा जी ने। फिल्म ही रांझा के गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए थे, जिन्हें संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने और इनके गीतकार थे कैफी आजमी। तो आइए इसी फिल्म का एक और गीत सुनते हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, जिसे कि गा रहे हैं डॉक्टर नरेश चावला और डॉक्टर सीमा बजाज।

बहुत ही खूबसूरत आवाजें और उतने ही खूबसूरत गायकी। राजकुमार ना ही केवल अपनी डायलेक्ट डिलीवरी के लिए जाने जाते थे बल्कि अपनी अदाकारी के लिए भी वो काफी फेमस थे। उन्हें 2 बारी फिल्म फेयर अवार्ड से सुशोभित किया गया और 4 बारी फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ, जिसे कि गा रहे हैं मुकेश चोपड़ा और गायत्री। फिल्म का नाम है लाल पत्थर, गीत के बोल हैं उनके ख्याल आए तो आते चले गए।

और आप दोनों अपनी आवाजों से हमें लुभाते चले गए। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। 1972 की कमाल अमरोही द्वारा बनाई हाई बजट फिल्म पाकीज़ा का यह डायलॉग था। इस फिल्म में संगीत दिया था गुलाम मोहम्मद ने, इसके गीतकार थे कैफी आजमी। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म से एक गीत जिसे कि गा रही हैं डॉक्टर मनप्रीत खेमका।

0: बहुत ही मधुर आवाज डॉक्टर मनप्रीत की। तो चलते चलते एक और डायलॉग और उसके बाद एक और गीत।
1: खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है।
0: इन जोरदार संवादों के बाद में एक बहुत ही मधुर गीत लेके आ रहे हैं वत्सला सिंह और उनके साथ दे रहे हैं ईश्वर। गीत की बोल है सिमटी हुई ये घड़ियां।

0: बहुत ही मधुर और खूबसूरत आवाजें हैं इन दोनों गायकों की। कुदरत का खेल देखिए कि अपनी आवाज और डायलेक्ट डिलीवरी के लिए जाने गए राजकुमार का देहांत 3 जुलाई 1996 में गले के कैंसर की वजह से हुआ। ये प्रोग्राम उन्हीं की यादगार में एक श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित था। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आओ झूमे गाय ग्रुप की ओर से मैं आपको धन्यवाद करते हुए आपसे आगे लेना चाहूंगा। अगले सप्ताह आज के रोज आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सुनते रहें जयपुर रेडियो। आओ झूमे गाएं। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
1: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम भजनों की सरिता में। मित्रों, हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता को एक अलग दिशा दिखाई है। इन महापुरुषों के विचारों ने समय समय पर हमें नई ऊर्जा और सोच का अनुभव कराया है। ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे और प्रेरणापद विचार रखने वाले महापुरुषों में एक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज का ये कार्यक्रम उस महान कवि को समर्पित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने राम गाथा लिखना शुरू किया तो दिन के दौरान उनके द्वारा लिखे गए सभी छंद अगले दिन तक गायब हो जाते थे। एक सप्ताह तक लगातार ऐसा होता रहा, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें संस्कृत के बजाय एक स्थानीय भाषा में लिखने का निर्देश दिया। तो चलिए इस पावन माह में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव रुद्राक्ष स्तोत्र से शुरुआत करते हैं। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा जी, संजय फड़के जी, संजय हरने जी, एस महर्षि जी, ललिता कृष्णमूर्ति और स्वयं।

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो। मित्रों, कहते हैं कि तुलसीदास जी जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि राम शब्द का उच्चारण किया था और इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास जी रामानंद वैष्णव संप्रदाय के वंशज थे, जिन्होंने खुद को भगवान राम की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। भगवान राम जी उनके व्यक्तित्व में इतने सम्मिलित थे कि तुलसीदास जी ने एक गीत की रचना की मानो जैसे वे खुद वहां उपस्थित थे। वह दृश्य था भगवान राम का जन्म और उनकी बाल्यावस्था। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेतु दशरथ की रानिया, ठुमक चलत रामचंद्र। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रेरणा जकादार, शोमा चटर्ज रॉय और दीपा गणेश।

मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से एक विनय पत्रिका है। कई देवी देवताओं के स्तुति गीत इसमें शामिल है, हालांकि प्रमुख स्थान भगवान राम जी को दिया गया है। इस दिव्य रचनावली से एक मशहूर भजन सुनते हैं, जिसे मूल रूप में लता मंगेशकर जी ने प्रस्तुत किया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं विद्याशंकर, गायत्री जगन्नाथन, आभा माथुर, शर्मिष्ठा सारंग।

यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर डंडे पर, गोबर से लीपी आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, माँ के मुंह में रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गांठे खोले। ये पंक्तियां हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता आओ मन की गांठे खोले में से हैं। मित्रों, हम और आप एक पल हमारे अतीत में जाए तो एक चीज हमारे बीच स्वरूप होगा और वह है रामायण। हम सभी ने हमारी दादी नानी से रामायण की कहानियां जरूर सुना है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत में मूल रामायण के लेखक थे, उनका अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी पर एक अति प्रिय भजन है। उत्तर भारत में अधिकांश घरों में इसका रोजाना पाठ होता है। नियमित रूप से इसका जाप करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे तनाव से मुक्त होना, हमारे सभी प्रयासों में बाधाओं को दूर करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आइए सुनते हैं भगवान राम जी के भक्त हनुमान जी को समर्पित 40 चौपाई की यह माला। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा, ललिता कृष्णमूर्ति, मुकेश चोपड़ा, संजय हरने, एमडी त्यागी, चारुल सक्सेना, तनुजा मुंद्रा, रमावी और मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: सियावर रामचंद्र की जय।
1: जय
2: पवन सुत हनुमान की जय।
3: तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा से ये सात गुण आपको बचाएंगे। विद्या विनय विवेक साहस आपके भले कर्म, सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति आपका विश्वास। आइए हम इन सभी सकारात्मक विचारों का अनुभव करें। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।
0: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आपकी सखी तनुजा मुंदड़ा पुनः उपस्थित है एक भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव है शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न तो कोई आरंभ है और न कोई अंत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं शिव स्तुति के साथ। शिव भक्त वीरेंद्र मिश्रा जी की इस प्रार्थना के साथ भोर भई अब जागो।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। दोस्तों, सतयुग द्वापर युग में ईश्वर प्राप्ति के लिए तप, तपस्या, अनुष्ठान, आराधना की जाती थी, लेकिन कलयुग में ईश्वर नाम मात्र से ही मानव जीवन तर जाता है। इसलिए हमें जहाँ भी मौका मिले ईश्वर सुमिरन का मौका चूकना नहीं चाहिए। कबीरदास ने भी क्या खूब कहा है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंतमति सोधियो, आदि अंतमति सोधियो, दूजा देखा काल। यानी ईश्वर का ध्यान सुमिरन ही मुख्य है, बाकी सब तो मोह माया है, जंजाल है। शुरू में, अंत में और मध्य में यदि जांच परख कर देखा जाए तो सुमिरन के अलावा बाकी सब कुछ दुख मात्र है। अगली प्रस्तुति नाम की महिमा को बताती हुई, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय हरने जी, नाम हरि का जप ले रे।

दोस्तों, हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जिस भी भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से भी की जाती है। दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती है। माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना करने हमारे समक्ष आ रहे हैं मुकेश चोपड़ा जी।

देखो दोस्तों, आदिशक्ति को सनातन निराकार परब्रह्म जो कि ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। ये शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर जो न स्त्री है न पुरुष ने जब सृष्टि की रचना की तो इस आदि पराशक्ति को बल से भरपूर बना दिया। हमारी अगली प्रस्तुति एक भक्त की गुहार जो पग पग ठोकर खाने के बाद आदि शक्ति से मांग रहा है, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। प्रस्तुत करने आ रहे हैं महेश साठे।

आदिशक्ति से प्रार्थना, इस कठिन समय में जो भी लोग मझधार में डूब रहे हैं उन्हें अपनी शक्ति से उबारे। दोस्तों, प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और उतना ही उलझा हुआ भी। जी हाँ, बुद्धि से चलें तो बहुत उलझा हुआ और भक्ति से चलें तो बहुत सीधा, विचार से चलें तो बहुत दूर और भाव से चलें तो बहुत पास, नजरों से देखें तो कण कण में और यदि अंतर मन से देखें तो जन जन में। देरी है तो सिर्फ सुमिरन की, उसको पुकारने की। तो हमारा अगला भजन लेकर आ रही हैं चारुल, प्रभु तेरो नाम।

बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, आप सभी के जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा क्षण अवश्य आया होगा जब आपने अपने अंतर्मन के तार उस अलौकिक आदर्श शक्ति से जुड़े हुए महसूस किए होंगे। कुछ ऐसे ही अनुभूति ये भजन सुनकर आपको अवश्य होगी, जिसे लेकर आ रहे हैं संजय गुप्ता जी।

जी हाँ, सत्य ही तो है, ईश्वर सदा हमारे साथ। ईश्वर वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और निकट ले जाने का। फिर उपस्थित होंगे एक और भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। तब तक जपते रहिए हरि का नाम और सुनते रहिए जयपुर रेडियो।

नमस्कार मित्रों, भजनों की सरिता में मैं लक्ष्मी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। चलिए इनकी आराधना में इस गीत को सुनते हैं, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गंगा की लहरें फिल्म के लिए गाया है। इस गीत के लेखक थे मशरू सुल्तानपुरी और इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रही है।

वाह ललिता जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। मित्रों, विश्व माता जगद्धात्री ही जगदम्बा माता है। देवी महात्म्य अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई का वर्णन करता है, जहां देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ सद्गुणों का नेतृत्व करती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए सुनते हैं जगदम्बे माँ की गुणगान इस भजन में, जिसे मूल रूप से अनूप जलोटा जी ने गाया है। इसके लेखक हैं राजेश जौहरी और जयपुर रेडियो के लिए

आपने तो एकदम से माहौल ही भक्तिमय बना दिया है। मित्रों, संतोषी माता या संतोषी माँ, इन्हें संतुष्टि की माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं करती हैं। संतोषी माँ व्रत महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार करने से ऐसा माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती सुनते हैं, जिसे मूल रूप से उषा मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत के लेखक थे कवि प्रदीप और इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मुंबई से विद्याशंकर जी।

बेहद खूबसूरत विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुराणों में दुर्गा देवी को पुरुष देवताओं की सहायता करने, राक्षसों को मारने के लिए सक्रिय करने के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा देवी अपने आप में भी सक्रिय है महिषासुर के साथ उसकी लड़ाई में। दुर्गा माता को कई भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक हथियार है और एक भयंकर सिंह की सवारी भी है। हालांकि एक विजयी योद्धा दुर्गा जी को एक सुंदर रूप में भी चित्रित किया जाता है और कभी कभी उन्हें माँ भी कहा जाता है, जो इस देवी के बहुआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं इनकी आराधना में एक और भजन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं।

0: वहाँ संजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दास, शोमा रॉय और तनुजा मुंद्रा।
1: बोल साचे दरबार

0: बहुत ही मधुर और भक्तिमय प्रस्तुति मोनिका जी, लवलेश जी, शोमा जी और तनुजा जी। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आओ झूमे गाय समूह की ओर से आप सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
1: नमस्ते।

0: जय माता दी,
1: जय माता दी। आपने सुना संवेद स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ, इसे स्वर दिया स्वर परिवार के इन सदस्यों ने। आदेश शर्मा शामली यूपी से, अंजू गौड़ मुंबई से, योगेंद्र गौतम यूएसए से, शुभी श्रीवास्तव रायबरेली से, तरुण खोटियान, अमृता, अनीता जी, कविता, सचिन अरोड़ा, निश्चल श्रीवास्तव और उनके सभी साथियों ने। और अब समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये स्तुति।

आपने सुना समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये भक्तिमयी प्रस्तुति देवी माता की स्तुति के रूप में, और अब समीर सुना रहे हैं ये भजन।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। प्रस्तुत है प्रोग्राम सुपर सिंगर और सुपर सिंगर प्रोग्राम में आज की सुपर सिंगर आई है पुणे महाराष्ट्र से श्वेता नायर त्रिवेदी। वेलकम, स्वागत, अभिनंदन आपका। आपकी आवाज आपकी पहचान।

लेकिन हम जानते हैं, आप सुन रहे हैं श्वेता नायर त्रिवेदी की आवाज और जयपुर रेडियो की जानी पहचानी आवाज, आपकी आवाज आपकी पहचान। वेरी प्रिय

बड़ा बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने कैसे कहूं कैसे कहूं। और ये कह रही थी अपनी सिंगिंग के माध्यम से श्वेता नायर त्रिवेदी। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, और आज इस मंच पर जिसका नाम है सुपर सिंगर्स, और आज की सुपर सिंगर मेहमान है श्वेता नायर त्रिवेदी, पुणे महाराष्ट्र से। आपकी आवाज आपकी पहचान।

समय का ये पल थम सा गया है। सच में श्वेता, आपके गीतों को सुनने के लिए शायद समय भी कुछ देर के लिए रुक गया है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, और हमने तो गीत से पहले कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन हमारे जो लिसनर्स हैं वो अपने फीडबैक दे रहे हैं और कह रहे हैं आप बहुत ही शानदार गा रही हैं, आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम सुपर सिंगर, और आज की मेहमान सुपर सिंगर श्वेता नायर त्रिवेदी।

अपनी आवाज की नूर की रोशनी लेके इस मंच पर आज उपस्थित हैं श्वेता नायर त्रिवेदी। आपकी आवाज आपकी पहचान। पुणे महाराष्ट्र से हमारे संग आज की मेहमान सुपर सिंगर श्वेता नायर को आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम सुपर सिंगर में हमारे संग हमारे साथ इस मंच पर श्वेता नायर त्रिवेदी अपने सुरीले गीतों के साथ। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

अभी तो हम ये कहेंगे कि अभी आप गाओ और अभी हम सुने, हमारे श्रोता सुने कि आपके गीतों ने हमारा दिल जीत लिया। आपकी आवाज, आपकी पहचान सुपर सिंगर जयपुर रेडियो की श्वेता नायर त्रिवेदी अपने खूबसूरत गीतों के साथ। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। अगले गीत में फिर एक बार श्वेता नायर।

ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान, और हम ये कहेंगे कि ये दिल सुन रहा है आपके सुरीले गीतों की जुबान। हमारे संग हमारे साथ श्वेता नायर त्रिवेदी, आपकी आवाज आपकी पहचान अपने सुरीले सॉन्ग्स के साथ। अगले गीत में फिर एक बार श्वेता नायर।

बहुत सच कहा आपने, आपकी आवाज में जादू भी है और नशा भी है और ये चीज हमारे श्रोता महसूस भी कर रहे हैं। सुरीली आवाज की धनी हमारी आज की सुपर सिंगर श्वेता नायर त्रिवेदी को सुन रहे हैं आप। आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: और हमारे श्रोता और हम कहेंगे कि श्वेता तू थोड़ी देर और ठहर जा, तो आप ठहर जाएंगी। और यदि समय होता तो सच में आप ठहर जाती और हमें और गीत सुनाती। आपने सुना जयपुर रेडियो का प्रोग्राम सुपर सिंगर, और आज की सुपर सिंगर रही श्वेता नायर त्रिवेदी। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए आप सुनते हैं एक कहानी, सुगिया फुलवा। कहानीकार हैं विद्या सिंह।
1: कहानी का शीर्षक है सुगिया फुलवा। ध्यान नहीं आता पहले पहल उसे कब और कहां देखा था, किंतु जब से होश संभाला कभी इसके कभी उसके और अपने घर नियमित रूप से देखा। उसके चेहरे के वर्णन के लिए कुरूप शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे सीमित शब्दकोश में दूसरा शब्द है भी नहीं। मोटी मोटी झुर्रियों से भरा लंबोतरा चेहरा, दांत इक्के दुक्के, मिचमिचाती आंखें, थोड़ी थोड़ी देर में वह निचले होंठ को अंदर खींचती जैसे मुंह से गिरती लार को रोकने की कोशिश करती हो। गोद के बच्चों को डराने के लिए माएं कहती, सो जाओ नहीं तो अभी सुगिया से पकड़वा दूंगी। इस तरह सुगिया दिन रात सेवा में हाजिर रहती, दिन में साकार और रात में निराकार रूप में। 2 जून की रोटी जुगाड़ने में उसे न जाने कितने दरवाजे अगोरने पड़ते। उसकी रिरियाती हुई आवाज न मालूम प्राकृतिक थी या निरीहता वश वैसी हो गई थी, अनुमान से परे है। कुछ भी बोलने में वह अत्यंत संकुचित हो जाती। संभवतः उसे कोई बीमारी जरूर रही होगी, उसकी लार उसके वश में नहीं थी। एक बार तो उसकी इस आदत ने एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। हुआ यों कि वह पीतल के गगरे में पानी लेकर मेरे ओसारे में गोबर डाल रही थी। गोबर को गगरे के पानी से पतला करती और ओसारा लीपती हुई पीछे ही पीछे खिसकती जाती। अचानक लार गगरे में टपक पड़ी। चश्मदीद गवाह बने राघव भैया, उन्होंने गगरा भुसौरे में छिपा दिया। शाम को पानी भरने के लिए जब मनई कहार ने गगरा ढूंढना शुरू किया तो हड़कंप मचा। अड़ोस पड़ोस में पूछने पर भी कुछ पता नहीं चला। अंततः भैया ने गगरा भुसौरे से निकालकर प्रत्यक्ष कर दिया, साथ ही एक विस्फोट भी किया कि अब यह गगरा कुएं में डालने लायक नहीं है, इसमें सुगिया का लार गिर गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। स्थिति भांपते हुए माँ ने भैया को आंखें तरेरी, ये तो है धोखा भयल हो, इतना छोट मुंह के गगरा में लार कैसे गिर जाई। भैया अपनी बात पर अड़े रहे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। खैर, दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है। माँ रसोई से उपली के ऊपर रखकर जलते हुए अंगारे ले आई और उन अंगारों को गगरे में डाल दिया। आग सब कुछ के पवित्र कह दे ले, मने ही लिया एके माज के भरा पानी, अब गगरा फेंक थोड़े जाइए। अति की हद तक छुआछूत मानने वाली माँ का सहज समाधान उसकी प्रत्युत्पन्न मति की गवाही दे रहा था। दोबारा वह प्रसंग किसी की जवान पर नहीं आया, सुगिया का आना पूर्ववत बना रहा। उसकी आदत थी या तो वह कहीं काम कर रही होती या मेरे घर के ओसारे में उकड़ू बैठी आदेशित होने का इंतजार करती रहती। गांव में सभी जानते थे सुगिया कहाँ मिलेगी, जिसे जब जरूरत होती आकर बुला ले जाता। उसका बेटा फुलवा भी उसके साथ आता और ठाकुरों के घर के छोटे मोटे काम कर देता। किसी के पशु को चारा डाल देता या गोबर साफ कर देता। स्कूल का मुंह तो उसने शायद ही कभी देखा हो। दोपहर में माँ बेटे मढ़ई में चारा काटने की मशीन के बगल में बची थोड़ी सी जगह में कपड़े में बंधी रूखी सूखी रोटी पानी से निगलते। माँ दयावश अक्सर उसे कभी अचार कभी गुड़ दे देती, लेकिन वसूली करना भी न भूलती, ले रोटी खाए के उसरसो पीट दे। मौसम के अनुसार काम लेने में माँ माहिर थी। आबनूसी रंग की सुगिया का गोरा चिट्टा बेटा देखकर यकीन नहीं होता था यह सुगिया के कोख में पला होगा। सुगिया कभी ससुराल भी गई होगी, नहीं तो उसका बेटा कहाँ से आता। वह इतनी समर्थ तो थी नहीं कि जमाने को ठेंगा दिखाकर कुंवारी माँ बन जाती। वह बहुत पहले की बात होगी, मेरे होश संभालने से बहुत पहले की बात। मैंने कई बार देखा फुलवा अरंडी के पत्ते पर रखकर बासी रोटी को नमक प्याज से खा रहा होता। सुगिया टुकुर टुकुर उसे खाते हुए निहारती रहती, जैसे निवाला फुलवा के मुंह में नहीं खुद सुगिया के मुंह में जा रहा हो। उस समय सुगिया और उस गौरैया में कोई फर्क न लगता जो चोंच में दाना भरकर अपने चूजे को खिलाती है। माँ के ही मुंह से कभी सुना था, फुलवा 2-3 साल का था जब सुगिया के पति ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। विवाह के इतने दिनों बाद क्यों निकाला, आज सोचती हूँ। एक कोठरी उसके माँ बाप ने उसे दे दी थी जिसमें दोनों महतारी पूत रहते थे। जब तक माँ बाप रहे तब तक तो ठीक था, उनके आंख मूंदते ही भाई भौजाई तरह तरह से तंग करने लगे कि किसी तरह कोठरी खाली कर दे। यह भी पक्की जान, कितनी बार उसके बर्तन चोरी गए, पकती दाल में भौजाई नमक झोंक देती, पर कोठरी नहीं छोड़ी तो नहीं छोड़ी। हार कर भाई ने घर के पिछवाड़े की खाली जमीन पर एक छप्पर डलवा दिया और सुगिया ने मिट्टी खोद खोद कर 4 कच्ची दीवारें भी खड़ी कर ली। इस तरह बन गया था माँ बेटे का आशियाना। भौजाई को फिर भी चैन कहाँ था, वह सुगिया को निकालने के नए नए तरीके आजमाती, लेकिन सुगिया मोर्चे पर डटी रही, उसने हार नहीं मानी। अब फुलवा भी कुछ बड़ा हो गया था, काम भी उसे मिलने लगा था। कभी पहलवान मामा की हलवाही करता, कभी चिरकुट नाना के खेतों में हल के पीछे पीछे बीज डालता, कभी मोटक भैया की भैंस नहलाने नदी ले जाता। गरज यह कि साल भर उसके काम की जुगत भिड़ ही जाती, पूरा गांव उसका ननिहाल था। उम्र के हिसाब से मामा, नाना, भैया, नानी, मामी, भौजी, बहन का संबोधन वह स्वयं चुन लेता। फुलवा जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका रंग रूप और निखरता गया। ठाकुर टोले का शायद ही कोई लड़का इतना हृष्ट पुष्ट हो जितना फुलवा। नहीं बदली तो उसकी आवाज, उसकी उम्र के लड़कों की आवाज में भारीपन आ गया था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी बारीक लड़कियों सी थी। बच्चे उसका खूब मजाक बनाते और बात बेबात तरह तरह से छेड़ते। कई बार तो सुगिया चिढ़कर उन्हें गालियां तक दे देती, लेकिन बच्चे मुफ्त का मनोरंजन कहाँ छोड़ने वाले थे। अब फुलवा की उम्र शादी लायक हो गई थी। जहाँ उसके हम उम्र ठाकुरों के सौदे लड़कों के लिए देखुए मोटी रकम के साथ कन्या देने को उतावले रहते, फुलवा की उसकी बिरादरी का कोई लड़की देने को राजी नहीं था। सुगिया आए दिन गांव में नई नई बहुओं को देखती तो उसके दिल में अरमान मचलने लगते। अरमान बेटे के सिर पर सेहरा देखने का, अरमान आंगन में बहू के पैरों की रुनझुन सुनने का। कई साल इंतजार करने पर भी जब देखुए उसके दरवाजे पर नहीं आए तो वह निराश होने लगी। अब गांव के शरारती तत्वों की बन आई, वे सुगिया से कहने लगे, हम तोरे सुगवा का ब्याह कराए दे, लड़की वालन के 1500 देवे की पड़ी। माँ बेटे अपना पेट काट काट कर बचाते, इधर उधर से कुछ उधार बाढ़ी करते और रकम बड़ी उम्मीद से ब्याह कराने का भरोसा देने वाले हाथों को सौंप देते। इंतजार में सुगिया की आंखें पथरा जाती, रकम लेने वाले कोई न कोई बहाना बना देते और अंत में हजम कर जाते। एक बार तो गांव के दुधुआ नाई ने, जो खुद 40 की उम्र में कुंवारा बैठा था, उसे वचन दिया कि वह फुलवा का ब्याह कराएगा। दुधुआ अपने अजीबो गरीब कारनामों से हमेशा गांव की चर्चा में बना रहता। एक बार तो जिद पर अड़ गया कि गांव की पोखरी के किनारे किनारे जो बिजली के खंभे गड़े हैं, जिनसे होकर कई तार जा रहे हैं, वह उन्हीं में से किसी एक खंभे पर बैठकर सुतली काटेगा। उन दिनों गांव में बिजली नहीं थी। समझदार लोगों ने रोका कि इन तारों से बिजली का करंट पास होता है, यह उसी की लाइन जा रही है, लेकिन वह कहां मानने वाला, करंट होता तो दिखता नहीं, मैं नहीं मानता करंट वरंट। और उसने लोगों की बात अनसुनी कर दी। एक दिन उसने घोषणा की, आज हम सुतली काते जाओ, जेके देखे के होए चले हमरे संगे। फिर क्या था, देखते देखते बच्चों की टोली दुधुआ के पीछे। वह बच्चों का हीरो बना, सन बगल में दबाए, सुतली कातने की चरखी हाथ में लटकाए चल पड़ा। औरतों ने सुना तो उसकी किस्मत पर तरस खाकर रह गईं। आज कोई आगे पीछे होता तो जरूर रोकता। दुधुआ बड़ी सावधानी से खंभे पर चढ़ रहा था। नीचे से सांस रोके बच्चे उसे ऊपर और ऊपर चढ़ता देख रहे थे। उसने ज्यों ही ऊपर पहुंचने के लिए एक हाथ से तार पकड़ना चाहा, उंगलियां तार से चिपक कर रह गईं। थोड़ी देर में उसे ऐसा जोर का झटका लगा कि वह धड़ाम से नीचे जमीन पर आ पड़ा। बच्चे सहम गए। पास ही जुलाहों के घर थे। हल्ला सुनकर बहुत से वहां इकट्ठा हो गए और चारपाई पर लाद कर उसे उसके घर पहुंचाया। पड़ोसियों ने गरम राख से न जाने कितनी देर तक उसके तलवे हथेलियां मली, तब जाकर उसके अचेत शरीर में चेतना लौटी। तब से उसकी एक हथेली हमेशा हमेशा के लिए मुट्ठी की शक्ल में बदल गई। फुलवा का विवाह कराने का वचन देकर एक बार फिर वह चर्चा में आ गया था। सुगुआ ने दुधुआ नाई की राय से साड़ी, पेटीकोट, जम्पर, चप्पल, क्रीम, पाउडर और तमाम बहुओं के इस्तेमाल में आने लायक सामान खरीद कर उसे दे दिया। उसे नकद पैसे भी दिए। एक दिन अचानक लोगों ने देखा दुधुआ की कोठरी में ताला लटक रहा था। अकेले आदमी का क्या, जहाँ चाहे वहाँ चल दे। लेकिन जब महीना भर हो गया और ताला नहीं खुला, तब गांव वालों को खटका हुआ। सुगिया के मन में उम्मीद जगी कि इस बार तो वह जरूर फुलवा के लिए लड़की ढूंढ कर लौटेगा। दुधुआ लौटा, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ उससे कम से कम 20 साल छोटी लड़की थी, जिसे वह न मालूम कहां से भगाकर लाया था। एक दिन उसने गांव भर में न्योता भिजवाया कि वह अपनी रिश्तेदारी की एक अनाथ लड़की से शादी कर रहा है और गांव के लोग मुंह जुठारने जरूर आए। गांव में यह बात फैलते देर नहीं लगी कि जो साड़ी उसने सुगिया से हथियाई थी, वही साड़ी उसकी होने वाली बीवी ने शादी की रात पहनी थी। असल में वह साड़ी सुगिया ने रवि पंडित से मंगाई थी और उन्होंने ही दुधुआ की शादी के मंत्र पढ़े थे। सुगिया ने जब यह सुना तो वह कट कर रह गई। उसने रवि पंडित को भी जी भर कर सरापा, जिन्होंने दुधुआ का सहयोग किया था। गांव के शरारती लड़के उसे अलग छेड़ते, फिल्मी हीरोइनों की तस्वीरें दिखाकर पूछते, इस लड़की से करोगी सुगवा का ब्याह? धीरे धीरे सुगिया सबकी मंशा भाप गई। वह समझ गई कि बेटे के सिर पर सेहरा देखना उस जैसी माँ के नसीब में नहीं होता। इस बीच फुलवा को न जाने कौन सी बीमारी लगी कि उसकी कुंदन सी चमकती रंगत नीली पड़ने लगी। शरीर भी दिनों दिन गिरने लगा। देखते देखते वह सूख कर कांटा मात्र रह गया। सिर के घने काले काले बाल इस तेजी से झड़ने लगे कि उसकी खोपड़ी जगह जगह से गंजी हो गई। सुगिया ने उसके बाल घुटवा दिए। अब तो वह एकदम पहचान में नहीं आता था। बच्चे अब दूसरी तरह से सुगिया को छेड़ने लगे थे। एक बार मेरी सहेली ने कहा, ए सुगिया, तोर फुलवा मर गयल, हम अपने आँख से देख ली है। तू मर जा तो हर महतारी बाप भाई बहन मर जाए, हमार फुलवा कहे के मरी? फिर मेरी ओर देखकर अत्यंत कातर स्वर में उसने कहा, देखा था बहनी, हमरे फुलवा के का कहत आई, ओकरे मरले ई का पई है। ऐसे न जाने कितने क्रूर मजाक उसे सहन करने पड़ते। गांव में यारू साई ने, जिसके अपनी कोई आस औलाद नहीं थी और बीवी भी वर्षों पहले गुजर गई थी, चंदा मांग कर अपनी कब्र बनवा ली थी। कब्र के चारों ओर उन्होंने पक्की दीवारें चिनवा दी थी। बाकी पैसा गांव के प्रधान के पास जमा कर दिया था कि जब वे मरे उनका शरीर उसी में दफनाया जाए और उनकी कब्र पक्की करा दी जाए। बिगड़ाए लड़के सुगिया को चिढ़ाते, जब यारूसाई मरी है तब का तब देख जाई, अब ही चल तू दोनों महतारी पूत के दफनाए दिहल जाए। दोनों के लायक काफी जगह हुई। सुगिया की बड़बड़ाहट चालू, तू जा कबर में तो हर महतारी बाप जाए, हम फुलवा कहे के जाए। आखिरी बार मैंने जब उन्हें देखा, फुलवा आगे आगे मटमैली अंगोछी से सिर ढके, अपने नाप से दुगनी ढीली ढाली कमीज पहने, लाठी पर अपना भार संभाले, धीरे धीरे अपनी बस्ती की ओर जाने वाली पगडंडी पर चला जा रहा था। उसके पीछे पीछे सुगिया चल रही थी। न मालूम कब बेटे को उसकी जरूरत पड़ जाए। दोनों खुसर पुसर करते जा रहे थे। मेरी जिज्ञासा ने सिर उठाया और मैं अपने को पूरी तरह कान में परिवर्तित हुई, कब उसके पीछे पीछे चलने लगी मैं खुद नहीं समझ पाई। फुलवा, तू पहले मर जाते बचवा, तो तुर तेरे ही कही के हम आराम से मरित, कम से कम तू भगवान के पास शांति से रहते। जवाब में फुलवा का स्वर उभरा, नहीं माई, महतारी बाप को तेरे ही करे का फर्ज लड़का का होला, पहले तू मर जाती तो तोड़ते रही हम खूब धूमधाम से करी। जिस सहजता से माँ बेटे मौत की बातें कर रहे थे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस दशा को माँ बेटे पहुँचे थे क्या उसमें सिर्फ उन्हीं का दोष था? यह प्रश्न मुझे आज भी कचोकता है। फुलवा की हंसी और उसकी बातें मेरे कान में आज भी कैद हैं। और इतु मौत की बात कहाँ से ले आईली, अभी तो हम 100 वर्ष जी अब, और फुलवा चेष्टा पूर्वक हंसने लगा था। सुगिया फुलवा जब न तब मेरी चेतना के चौखट पर दस्तक देते हैं, इसे उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि समझी जाए। धन्यवाद।
0: आपने सुनी कहानी सुगिया फुलवा। कहानीकारां रही विद्या सिंह। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा?
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
4: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
5: भक्ति प्रभा भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
6: नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम

भजनों की सरिता में लक्ष्मी का सादर प्रणाम। मित्रों, भक्ति गीत प्रार्थना की एक विशेष अंश है, भगवान के साथ एक मिलाप का समय है। प्रार्थना में हम अपने आप को एक ऐसी शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करते हैं

मित्रों, भारतीय परंपरा के कई महान संत थे, जैसे रामानुजाचार्य, संत रविदास, कबीर आदि, जिन्होंने हमें धार्मिकता का सही मार्ग दर्शाया। इनमें से एक थे गुरु अर्जन, जिन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ को संकलित किया, जिसमें पिछले कई गुरुओं के गुरुवाणी शामिल थे। गुरु ग्रंथ साहिब में आधे से अधिक शब्द गुरु अर्जन द्वारा रचित हैं। चलिए एक शब्द सुनते हैं ललिता कृष्णमूर्ति की मधुर वाणी में।

वाह ललिता जी, अति मधुर प्रस्तुति। मित्रों, भक्ति संगीत में ऐसी शक्ति है कि वह सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। संगीत ऐसा सात्विक आनंद है जो जाति, धर्म, लिंग, आयु, वर्ग सभी से परे है। संगीत सबके लिए है। संगीत को न सीमाओं से बांधा जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ये आबाद धारा सबके लिए सर्वत्र सुलभ है। हमारा अगला गीत फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए इंदिवर जी ने लिखा था और इसे संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है और जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं विद्या शंकर जी।

वाह विद्या जी, इस सुमधुर प्रस्तुति से मन प्रफुल्ल हुआ। मित्रों, हमारे देश के संतों ने समय समय पर यह शिक्षा दी है कि वास्तव में भगवान और उनके नाम के बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम का नाम भगवान राम से भी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में ये कथा है कि कलयुग में श्री हरि के नाम के जाप से ही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सब में राम और राम में है सब। तुलसी का प्रभु भी वही, नानक का रब भी वही। नाम भजन में ज्योति असीमित। पेश है एक राम धुन जो मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है प्रसिद्ध एल्बम राम श्याम गुण गान में। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं स्वागता पॉल और संजय हर।

संजय जी हम मन विभोर हुए। मित्रों, भगवान राम एक अवतार पुरुष थे, असाधारण पुरुष थे, करुणा मूर्ति थे। ये सभी के प्रति स्नेह और अपनापन का सामान्य भाव रखते थे, चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन हो। वह तो ऐसे करुणा मूर्ति थे जो उनके शत्रु के प्रति भी स्नेही और दयालु थे। चलिए सुनते हैं एक भजन जो श्री अरबिंदो सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा रचाया गया है। इस भजन को स्वरबद्ध किया था जगजीत सिंह जी ने। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय फड़के जी और मैं लक्ष्मी बालचंद्र।

0: बेहद खूबसूरत संजय जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा साथ दिया। मित्रों, सुविचार, सत्संग और निरंतर भगवान के जाप से सकारात्मक ऊर्जा निर्मित होती है। हम आशा करते हैं आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से प्रकाशित हो।
1: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
0: मित्रों, ये एक सामान्य बात है कि संकट के समय हम भगवान की ओर रुख करते हैं। हम घोर विनम्रता और प्रत्याशा दोनों के दोहरे रवैया के साथ आते हैं। हम परमेश्वर को आदेश तो नहीं देते, लेकिन हम साहसपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उनके सिंहासन के सामने आते हैं, ये कहते हुए कि मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। नक्शलियालपुरी की ये पंक्तियां फिल्म राम नगरी के लिए लिखा गया था। इसे संगीत से सजाया था जयदेव जी ने। इस गीत को मूल रूप से हरिहरन जी और नीलम सानी जी ने गाया है। आपके लिए इस गीत को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय फड़के जी।